0: नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज
1: मेजर वेव
0: सोमवार है,
1: 406.6 मीटर
0: 1948 के भाद्रपद मास
1: पर
0: की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 सितंबर 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से भी आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं, समाचार थोड़ी ही देर में अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स देशों में सहयोग की प्रेरणा हो और मानवता की प्रगति के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधान के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। देशभर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और 6 अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गया पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

वंदन वार, सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

प्रथम पूज्य जो हरते हैं इस दुनिया के विघ्न कलेश, कोटि कोटि नमन हे शंभु सुताय श्री गणेश।

अपने अनोखे रूप और गुणों से श्री गणेश देते हैं जीवन के अनमोल सूत्र। मन में विश्वास की ज्योत जले तो जीवन पथ उजला ही दिखता है।

बस यही है प्रार्थना, सभी के मन के विश्वास और आस्था की डोर को स्वयं से बांधे रखना और इस जीवन के हर विघ्न को हरना। श्री गणेश।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

झरोखा के तुरंत बाद 6:35 से आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस। आज सुनिए 311वां भाग। सुबह 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। 14वीं कड़ी आज सुन सकते हैं। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत, हम है राही प्यार के कार्यक्रम सुन सकते हैं 7:30 से। 8 से सुनिए समाचार प्रभात त्रिवेणी कार्यक्रम का समय 8:15 का और 8:30 से नए जमाने की गीत चित्रलोक कार्यक्रम के साथ। सुबह 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है फिल्मकार जीपी सिप्पी पर और 10 से सुनिए उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। फिल्मकार विमल रॉय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत सुन सकते हैं। सुबह 11 से रंग तरंग, 12 से हिंदी में समाचार, 12:05 से यादों की महफिल। दोपहर 1 से सुरीला सफर और 2 से त्रिवेणी का पुनः प्रसारण। दोपहर समाचार का समय 2:15 का है और दोपहर 2:30 से आप सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। 3 से सखी सहेली और शाम 4 पिटारा के अंतर्गत आज सेहत की बातें सेहतनामा कार्यक्रम के अंतर्गत पोषण इस विषय पर बातचीत सुनिए। आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी कड़ी। शाम 5 छाया गीत का पुनः प्रसारण और 5:30 से तराने नए पुराने। शाम 6 से हिंदी में समाचार और 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम 6:35 से संध्या रंजन में सुनिए भक्ति संगीत। 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आज सुनिए 14वीं कड़ी। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। फौजी साथियों की सेवा में प्रस्तुत होगा कार्यक्रम जयमाला शाम 7 से और 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है

वजूद। नाटिका दीपशिखा आप सुन सकते हैं रात 8 बजे से हवा महल में। लेखन गिरीश का, निर्देशन डॉक्टर अचला नागर का।

आज के फनकारी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 9:30 से भी। फिल्मकार जीपी सिप्पी पर केंद्रित है आज का ये कार्यक्रम। रात 10:00 से छाया गीत और 10:30 से ढलती जाए रात। 11:00 से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का पुनः प्रसारण। ये थे आज के मुख्य कार्यक्रम जिनका विवरण आपने सुना झरोखा में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस आज 311वां भाग।

अंगद के मुख से कई रावणों के उपहास की कथाएं सुन रावण तिरस्कार भरे स्वर में बोला, मूर्ख वानर, मैं वही रावण हूं जिसकी भुजाओं का बल कैलाश पर्वत को ज्ञात है, जिसका पराक्रम स्वयं महादेव जानते हैं, जिसने अगणित बार अपने सिर काट और चढ़ाकर उनकी पूजा की थी, दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथियों के विशाल काय दांत मेरी छाती से टकराकर गाजर मूली की तरह टूट गए थे, मेरे चलने मात्र से पृथ्वी ऐसे डोलती है मानो भूकंप आ गया हो, मैं वही जगत प्रसिद्ध रावण हूं। क्या ये सब तूने अपने कानों से नहीं सुना, जो मुझे छोटा समझ एक मनुष्य की बड़ाई करता है? तू कितना अज्ञानी है अब मैं समझ गया। रावण के वचन सुन अंगद श्री राम की महिमा और अनंत शक्ति का बखान करते हुए कहते हैं, तू मूर्ख है जो श्री राम को साधारण मनुष्य, हनुमान को वानर, कामदेव को धनुर्धर, कल्प वृक्ष को एक सामान्य पेड़, गरुड़ को मात्र एक पक्षी और शेषनाग को एक मामूली सर्प समझता है। यदि तूने श्री राम से वैर मोल लिया तो ब्रह्मा और रुद्र भी तेरी रक्षा नहीं कर सकेंगे।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की 14वीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं जाने माने शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी। शकुंतला जी, किराना घराने के बहुत से गायकों ने सुबद्ध संगीत या उपशास्त्रीय संगीत जिसे कहते हैं लोकप्रिय किया है गा करके, तो खास तौर से ठुमरी और दादरा जो हम सुनते अलग अलग गायकों की आवाज में, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे।
2: जयंत जी, जी किराना घराने की ठुमरी है
1: जी,
2: जो ठुमरी बाकी नॉर्मल ठुमरी से थोड़ी अलग है।
1: अच्छा,
2: वैसे डायरेक्ट ठुमरी अगर आपने बोला तो उपशास्त्रीय अथवा सुगम शास्त्रीय संगीत में राग और शब्द को समान महत्व आता है। और इस घाट में विशिष्ट स्वर वाक्य में बंदिश के शब्दों में सौंदर्यपूर्ण गुंफन करके शब्द का अर्थ और उसका भाव अधिक स्पष्ट करना और उसका जो गान प्रकार है उसका यही उद्दिष्ट है। और राग तो दिखाई देता है लेकिन कभी कभी उसके अर्थ के कारण राग का नियम एकदम काटेकोर ऐसा पालन नहीं जाता है,
1: सटीक तरीके से उसका पालन नहीं होता।
2: शब्दों का भावनिक आशय समृद्ध करने के लिए
1: जी, जी।
2: राग के बाहर के स्वर लाए तो उसमें कुछ हमने गैर किया ऐसा नहीं होता है।
1: अच्छा,
2: उपशास्त्रीय गान में शब्दों को भी महत्व है उतना ही जितना स्वर को भी है
1: जी।
2: स्वर वाक्य शब्दों का हाथ पकड़ के ही आता है। बोल बनाओ और बोल बाट
1: जी,
2: ये इस स्वर वाक्य का एक अलग विशिष्टता है। बोल बाट यानी क्या, लय के अंग से जो आती है ठुमरी वो बोल बाट। बोल बनाओ यानी स्वर के अंग से आती है ये ठुमरी।
1: अच्छा,
2: ठुमरी है तो थोड़ी संत गति भारदस्त उसका स्वर लगाओ, और दादरा अगर है तो थोड़ा सा चंचल और खेल करी ऐसा होता है
1: जी। जी,
2: इस घाट के एक प्रस्तुति में आलाप के माध्यम से शब्दों को पकड़ के
1: जी,
2: उसको पकड़ के आने वाले स्वर वाक्य और इस्तेमाल हम करते हैं, इसके कारण तान सरगम इत्यादि प्रकार को यहाँ कुछ भी वाव नहीं है।
1: अच्छा,
2: राग जब दूसरा स्वर ठुमरी में आता है राग का अलग का स्वर
1: जी,
2: तो हम धीरे से इसको अंदर आने देते हैं।
1: अच्छा,
2: और उसको हम मिश्र कहते हैं, मिश्र गारा ऐसा करके वो उसको अंदर लेता है और
1: जी, जी, जी, जी।
2: उस अंग से अंदर आता है। सुगम और शास्त्रीय प्रकार सादर करते समय आवाज का जो पोत ढंग जो हमें बदलना पड़ता है
1: जी, जी।
2: शब्द फेंक विशिष्ट पद्धति में करनी पड़ती है। स्वरोच्चार और स्वर बांधनी ये भी अलग ढंग से करनी पड़ती है। इसीलिए आलाप ख्याल का और ठुमरी का ये बात सुनने वाले के समझ में आते है ठुमरी है या आलाप है। ये नॉर्मल ठुमरी

0: का यही जो हो गया।
1: जी जी जी
0: अभी किराना वाली ठुमरी और इसमें क्या फर्क है, ऐसा आप अगर पूछे, भाव प्रधानता स्वर प्रधानता ये किराने घराने की ठुमरी की एक अभिव्यक्ति दिखाने की विशेषता है।
1: जी जी
0: शुद्ध मधुर और सुरीले स्वरों का प्रयोग जो होता है इसी घराने के प्रमुख विशेषता से ये भाव आया हुआ है।
1: अच्छा,
0: धीमी गति से प्रस्तुत की गई ठुमरी
1: जी,
0: उसका गायन अपेक्षाकृत शांत संयमित शैली में किया जाता है जिससे भाव स्पष्ट रूप से उभरते हैं। कर्ण स्वरों का प्रयोग, मींड स्वर, कर्ण स्वर, मुरकी तथा सूक्ष्म स्वर लगाव, जो सब हमारे किराने घराने की शैली है।
1: जी,
0: किराना घराने में मुख्यतः बोल बनाओ की ठुमरी यानी गायन के साथ, जिसका अर्थ के साथ, भाव के साथ इसका विस्तार होता है।
1: जी,
0: और ठुमरी में गीत के बोलों का भाव जो विस्तार पूर्वक और भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अभी हम खास ठुमरी सुनेंगे खान साहब अब्दुल करीम खान की, और ये बहुत ही गारा राग में है
1: जी।
0: जादू भरे ने वो बहुत पॉपुलर है और बहुत ही अच्छी ढंग से गाई है।

0: जयंत जी
1: जी,
0: ठुमरी की प्रस्तुति अत्यंत मधुर, कोमल और भावपूर्ण होती है। आपने तो अभी सुन ली
1: जी।
0: इस घराने की ठुमरी में मुख्यतः श्रृंगार और भक्ति रस की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है, वो किराना घराना है।
1: वाह।
0: प्रमुख कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां, पंडित भीमसेन जोशी, डॉक्टर प्रभात रे, विदुषी माणिक वर्मा, पंडित फिरोज दस्तूर, पंडित सवाई गंधर्व आदि कलाकारों ने किराना घराने की ठुमरी और उसकी विशिष्ट पहचान लोगों तक पहुंचाई है। विशेष रूप से डॉक्टर प्रभा अत्रे ने ठुमरी के सौंदर्य और भाव पक्ष को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्हीं ने गाया हुआ एक बहुत ही अच्छा दादरा है, लेकिन उसका थोड़ा ढंग बदल के मैं गाती हूँ।

0: किराना घराने की ठुमरी में
1: जी
0: तकनीकी चमत्कारी की अपेक्षा स्वर सौंदर्य, भाव अभिव्यक्ति और मधुरता को अधिक महत्व दिया जाता है।
1: जी जी जी,
0: ये तो इसका थोड़ा अनुभव अगर आपको अभी इस दादरा में आया तो पावन हो गई मैं।
2: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 14वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

करण अडे और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे संगीत सम्राट तानसेन। फिल्म का ये गीत स्वामी हरिदास ने इसे लिखा, एसएन त्रिपाठी का संगीत। आइए अब सुनते हैं शैलेंद्र का लिखा ये गीत, जिसे लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से सजाया। आम्रपाली फिल्म के इस गीत में संगीत शंकर जयकिशन का।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि
2: प्रस्तुत है हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का संदेश।
3: प्यारे देशवासियों, हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत शुभकामनाएं। हमारा देश भारत भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि की अनुपम भूमि है। सब लोग कहते हैं कि हमारी भाषाएं अलग अलग है, वो हमारी कमी है, मगर मैं मानता हूं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत इतनी सारी भाषाएं होना है। अपने साथ हर भाषा एक इतिहास, लोक परंपरा और जीवन दृष्टि को लेकर चलती है, जो हमारी नई पीढ़ी के संस्कार को भी आगे बढ़ाती है। यही भाषाई बहुलता भारत की विविधता में एकता की भावना को सशक्त बनाती है। भाषा केवल संवाद का साधन नहीं होती है, वह किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब वह सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े। हिंदी किसी भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं के बीच आत्मीय संवाद और राष्ट्रीय एकात्मता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस सत्य का सबसे सुंदर प्रमाण हमारा अपना इतिहास है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मातृभाषा गुजराती थी, फिर भी इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। महात्मा गांधी ने 1918 में मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बांग्ला भाषी थे, पर उन्होंने आजाद हिंद फौज की संपर्क भाषा हिंदी को बनाया और देश को जय हिंद का नारा दिया। यानी हिंदी को सभी लोगों ने जन संवाद की भाषा बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिनकी अपनी मातृभाषा हिंदी कभी नहीं थी। मेरी अपनी मातृभाषा भी गुजराती है, पर जब मैं देश में किसी भी कोने में जाता हूं तो जो भाषा मुझे वहां के सामान्य जन से सीधा जोड़ती है वह हिंदी है। हिंदी की यात्रा को देखिए तो उसमें पूरे भारत की यात्रा दिखाई देती है। आदिकाल में विद्यापति की पदावली, पृथ्वीराज रासो की वीर गाथाएं, फिर भक्ति काल का वह अद्भुत युग जब तुलसीदास जी ने राम कथा को घर घर पहुंचाया और सूरदास जी ने वात्सल्य को स्वर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा के विचारों ने राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अनुभव किया था कि स्वभाषा और स्वाभिमान के बिना स्वराज की संकल्पना अधूरी ही होती है। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय भाषाएं ही राष्ट्र निर्माण का, प्रशासन का और जन जन तक विकास को पहुंचाने का माध्यम बनी। हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं ने जन जागरण, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के विचार को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी विरासत के साथ संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। पर स्वतंत्रता के बाद एक विडंबना भी पनपी। राजनीतिक स्वाधीनता तो मिली, पर स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वाभिमान के विषय को हाशिए में डाल दिए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से गुलामी की इस मानसिकता से मुक्ति का आह्वान किया और इस मुक्ति में भाषा की भूमिका केंद्रीय है। राजपथ का कर्तव्य पथ बनना केवल नामकरण नहीं था। अंग्रेजों के बनाए दंड आधारित कानूनों की जगह जन केंद्रित तीन कानून बनाए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये केवल शब्दों का बदलाव नहीं था, यह आत्मगौरव की पुनर्स्थापना है। आज नई शिक्षा नीति मातृभाषा को शिक्षा के केंद्र में रखती है। इंजीनियरिंग और चिकित्सा की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में हो रही है। प्रतियोगी परीक्षाएं अनेक भारतीय भाषाओं में हो रही है। इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से विकसित भारत के लिए शक्ति की सप्त धारा का आह्वान किया। इसकी सातवीं धारा है भारत का सॉफ्ट पावर। किसी भी राष्ट्र के सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा वाहक उसकी भाषा ही होती है। योग, आयुर्वेद, साहित्य, सिनेमा, हमारी सांस्कृतिक शक्ति, ये सब दुनिया तक हमारी भाषाओं के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। एक आशंका थी कि तकनीक के युग में भारतीय भाषाएं कहीं पिछड़ तो नहीं जाएगी, लेकिन मोदी सरकार में हिंदी सहित सभी भाषाएं तकनीकी विकास का स्वर्णिम युग देख रही है। राजभाषा विभाग द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भारतीय टूल आज भारतीय भाषाओं के बीच संवाद को सहज बना रहा है। 8,27,000 से अधिक प्रविष्टियों वाला हिंदी शब्द सिंधु डिजिटल शब्दकोश ज्ञान साझाकरण का समृद्ध माध्यम बन चुका है। 2024 में स्थापित भारतीय भाषा अनुभाग प्रशासनिक संवाद को भारतीय भाषाओं में सुगम बना रहा है। AI और अनुवाद तकनीक ने भाषा की दीवारें गिरा दी हैं। अब कोई भी भारतीय अपनी भाषा में सोचकर पूरी दुनिया से संवाद कर सकता है। साथ ही मोदी सरकार के कार्यकाल में संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के 4 नए खंड राष्ट्रपति जी को सौंपे हैं। अंत में युवाओं से एक बात मैं करना चाहता हूं, दुनिया की जितनी भाषाएं सीख सके जरूर सीखे, पर अपनी भाषा को छोड़िए मत। मैं देश के सभी अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बात करने का आप आग्रह रखिए। मैं अपनी भाषा में बोलूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, इस लघुता ग्रंथि से बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। भाषा ही हमें अपनी माँ से, अपने मिट्टी से, अपने इतिहास से और अपनी संस्कृति से जोड़ती है। यह वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना का 150वां वर्ष भी है। वह गीत जिसने भाषा को स्वाधीनता का शस्त्र बना दिया था। आइए इस अवसर पर संकल्प ले कि हिंदी और सभी भारतीय भाषा को हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की इस यात्रा का सशक्त माध्यम बनाएंगे। आप सभी को पुनः राजभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम।
2: अभी आप हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का संदेश सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ।

आशा भोसले और साथियों की आवाज में तुलसीदास फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। जीएस नेपाली के बोल चित्रगुप्त का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में पटरानी फिल्म का गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: गीता दत्त की आवाज में शर्त फिल्म का गीत आपने सुना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। आइए सुनते हैं गीता दत्त को श्रीमती 420 फिल्म के इस गीत में, जानिसार अख्तर ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत।
1: आप छोड़ के कहां जाओगे?

0: महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे बंधन फिल्म का ये गीत। इसे लिखा इंदिवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। और अंतराल में जाने से ठीक पहले हमने आपको सुनवाया मेरे सनम फिल्म का गीत, जिसमें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें आपने सुनी। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं फिल्म ब्रह्मचारी से।

0: सीता और गीता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, हम है राही प्यार के। और अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में अंदाज फिल्म से ये गीत, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: दिल

अंदाज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसके साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। धीरज बोमा देवरा ने मैक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनकर इतिहास रचा। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। दो दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत ने 12-13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम तीन दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
0: श्री शाह ने कहा कि तीन तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35A हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
0: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सल

0: कलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा, एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देश भर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, बड़नगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा चे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलालाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडुमरु मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है।
4: एकदंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि।
5: गणेश चतुर्थी का त्योहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में

0: भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरया के जय घोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
2: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331-04-81 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मैक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से सैफ अली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
1: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेचिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार न बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्य ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमरीका, यूके, कनाडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, निबिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल, प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार

सभी साथियों को सलमा का सप्रेम नमस्कार। कोटि कोटि कंठों की भाषा, जन जन की अभिलाषा, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी हम सबकी परिभाषा। आज संसार में करीब 7,000 भाषाएं और अनगिनत बोलियां हैं, जिसमें हिंदी संसार की दूसरी बड़ी भाषा है, जिसका उपयोग हम सब करते हैं। हिंदी अपने विपुल वैभव और समृद्ध शब्दकोश के कारण राजभाषा के पद पर सुशोभित है। इसमें अपनेपन की सुगंध, सरलता और मधुरता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। साथियों, जयशंकर प्रसाद का हिंदी भाषा और साहित्य में अतुलनीय योगदान है। उन्होंने हिंदी को किताबी रूप से मुक्त कर आम आदमी की भाषा बनाया। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की लिखी एक रचना।

भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, वो हमारी भावनाओं की आवाज होती है। किसी भाषा का विस्तार तभी होता है जब वो लोगों के दिलों तक पहुंचती है। हिंदी भी ऐसी ही भाषा है, सरल, सहज और अपनापन लिए हुए। देश में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं और बोलियों के बीच हिंदी संवाद का एक सुंदर सेतु बनकर सामने आती है, और जब कोई भाषा सहजता से हमारे मन की बात कह देती है तो वो अपनी सी लगती है। दिलों को जोड़ने वाली सरल भाषा हिंदी का प्रचार प्रसार किसी दूसरी भाषा को पीछे करना नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं की समृद्ध परंपरा के साथ हिंदी को भी आगे बढ़ाना है। भारत अनेकताओं का देश है। यहाँ भाषाएं, बोलियां, पहनावे अलग अलग हैं, लेकिन इन विविधताओं के बीच एकता की जो डोर हमें बांधती है उसमें भाषाओं की भूमिका बहुत अहम है। हिंदी ने देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों को एक दूसरे से संवाद करने का अवसर दिया है। ये संवाद आगे चलकर अपनापन बनता है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। साथियों, अमृता प्रीतम की प्रसिद्ध कविता अंबर की एक पाक सुराही उनकी अत्यंत भावपूर्ण और रोमानी रचनाओं में से एक है। तो आइए सुनते हैं यही सुंदर गीत।

हिंदी को संविधान ने राजभाषा के रूप में स्थान दिया है। साथ ही भारत की हर भाषा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हिंदी का सम्मान तभी पूरा होगा जब हम भारत की सभी भाषाओं का सम्मान करें, क्योंकि देश की असली सुंदरता यही तो है, अनेक स्वर लेकिन भावना एक। हिंदी की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी सहजता है। उसमें संस्कृत की गरिमा, उर्दू की चाशनी, लोक भाषाओं की मिट्टी की खुशबू और बोलचाल की आत्मीयता है। यही कारण है कि हिंदी में प्रेम भी बड़ी सुंदरता से व्यक्त होता है और जीवन दर्शन भी। हिंदी को केवल बोलने की भाषा नहीं बल्कि जोड़ने, समझने और दिल से दिल तक पहुंचने वाली भाषा बनाएं। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का एक विशेष स्थान है। आइए सुनते हैं उनकी एक रचना।

हिंदी की सरलता को अपनाएं, उसकी सुंदरता को महसूस करें और हिंदी भाषा के माध्यम से भारत की एकता के स्वर को और मधुर बनाएं। अब आज की त्रिवेणी होती है संपन्न। अब दीजिए सलमा को आज्ञा। नमस्कार।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही विविध भारती परिवार की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।

कण में रण में कण कण में कर में तण में गज में गण में मोरिया है हर मन में रंग की धार।

ABCD फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और विशाल ददलानी की आवाजों में, मयूरपुरी के बोल सागर जिगर का संगीत। और हर वर्ष जब हम गणेश जी की प्रतिमा विसर्जित करते हैं तो यही चाहते हैं, यही कामना करते हैं कि अगले बरस वो जल्द से जल्द आए। और आज से गणेश चतुर्थी शुरू है, आज है गणेश चतुर्थी और अब 11 दिनों तक ये त्यौहार गणेश पूजा का मनाया जाएगा। देश भर में ऐसा मनाया जा रहा है ये त्यौहार, और ऐसा लगता है कि हर साल जब श्री गणेश को हम विराजमान करते हैं तो हम सभी अपने जीवन को एक नई ऊर्जा, नई गति और नए उत्साह से भरते हैं, जो साल भर हमारे जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने में हमें बल देता है। तो बस इस उत्सव में रंगने का माहौल तो शुरू हो ही चुका है, इसका पूरा आनंद लीजिएगा।

विशाल ददलानी और साथियों की आवाज में बैंजो फिल्म का गीत आपने सुना। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, विशाल शेखर का संगीत। और जबकि गणेश पूजा का माहौल है और उत्सव का जब भी माहौल होता है तो सबसे ज्यादा मिठाई भी गणेश जी के बहाने ही हम खा लेते हैं कि भाई प्रसाद है, खाते जाएं। लेकिन नई ऊर्जा इस उत्सव से तो हमारे मन में भरी रही है, किंतु अपने मन और सेहत का ख्याल रखना भी हमारे लिए जरूरी है, तो बस इसका भी ध्यान रखिएगा।

शाशा तिरुपति की आवाज में आप सुन रहे थे ओके जानू फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा गुलजार ने, ए आर रहमान का संगीत। आज है 14 सितंबर और आज के दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस। 14 सितंबर 1949 में को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और पहली बार 1953 में 14 सितंबर

ये दिन आधिकारिक रूप से हिंदी दिवस मनाया गया। तो एक ऐसी भाषा है हिंदी जिसमें संसार की कई भाषाओं का सहज समावेश हमें मिलता है, और हम ये कह सकते हैं कि हिंदी भेदभाव नहीं मिलकर चलना सिखाती है। तो बस अपनी भाषा पर गर्व करें और हिंदी पढ़ना लिखना न जानने पर नहीं बल्कि जानने पर गर्व करें।

0: मीरजा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में, प्रसून जोशी के बोल, विशाल खुराना का संगीत। वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
2: बिल्कुल।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज

0: के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। और उत्सव का माहौल है तो मन का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी तो ये सबके साथ मिलकर झूमता है लेकिन कभी कभी गुमसुम हो जाता है। किसी ने पूछा नहीं, बुलाया नहीं या मान सम्मान में कुछ कमी रह गई, तो न जाने ऐसी कितनी बातें होती हैं इस बीच में जो मन को विचलित कर सकती है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए तो सोचेंगे, पर पहले तो एक गीत सुन लेना चाहिए।

जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में आप सुन रहे थे जुनैद वसी का लिखा ये गीत, चिरंतन भट्ट ने संगीत से सजाया था जॉली एलबी 2 फिल्म के इस गीत को। और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का, बस अभी हाजिर होते हैं।

0: चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। चिन्मयी श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और हम बात कर रहे थे कि उत्सव में खास तौर से मन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, ढेर सारी तैयारियां होती हैं और किसी किसी के घर भी जाना होता है, सबसे मिलना होता है। लेकिन माहौल जो भी हो, सबसे जरूरी है अपने मन का ख्याल रखना, क्योंकि अगर आपका मन खुश है, हल्का है, तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है।
3: One more time.

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए गौरैया और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योगदान देने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अर्चना शुक्ला के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रही है सोनू सूद।
1: नमस्कार, प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के नए प्रसंस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रसंस्करण बहुत ही विशेष है क्योंकि हम एक ऐसी शिक्षिका से आज बात करने वाले हैं जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया है बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने का, और इसके लिए उन्हें हाल ही में टीचर्स डे के दिन राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर शुक्ला। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, ये जो आपको पुरस्कार सरकार की तरफ से मिला है, और आप हमें बताएं कि कैसा आपको महसूस हुआ और कौन सा ऐसा प्रमुख कार्य रहा है जो आपको लगता है कि को सम्मानित किया गया है।
2: यह मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे विद्यालय के लिए, मेरे विद्यार्थियों के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए। यदि हम कार्य की बात करें कि किस लिए अवार्ड दिया जा रहा है, तो जब हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है और शासन को लगता है कि उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए या उस कार्य से दूसरे टीचर भी इंस्पायर हो सकते हैं, तो आपको अवार्ड दिया जाता है। यदि मैं बात करूं कि ऐसा क्या विशेष किया है, तो मुझे लगता है कि मेरा जो विज्ञान पढ़ाने का जो ढंग है वो थोड़ा सा, उसकी विधि जो है वो दूसरे शिक्षकों से विभिन्न है। तो इसमें मैं अपने विद्यार्थियों को विज्ञान जो है सिर्फ किताब के माध्यम से पढ़कर या प्रश्नों के उत्तर देकर ना सिखाकर उनको उसे महसूस कराती हूँ। तो जो मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। इसमें मेरे विद्यार्थी अलग अलग तरह की परियोजनाएं करते हैं, और उन परियोजनाओं को करते समय हमारी सरकार जो कह रही है कि विद्यार्थी NEP 2020 में 21st सेंचुरी स्किल्स पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि विद्यार्थियों में 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, तो मुझे लगता है इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही है।
1: सो आपने जैसे कहा कि

0: को करते समय हमारी सरकार जो कह रही है कि विद्यार्थी एनईपी 2020 में 21st सेंचुरी स्किल्स पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि विद्यार्थियों में 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, तो मुझे लगता है इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही है।
1: सो आपने जैसे कहा कि

0: के पक्षियों को, पशु को, इंसेक्ट्स को, ट्रीज को जब तक आप पहचानेंगे नहीं, तो आप कंजर्व कैसे करेंगे, तो उनका संरक्षण कैसे होगा? हमारे आसपास इतनी सारी जैव विविधता थी, लगातार कई जीव जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, और जब कोई बड़ी विपदा आती है तब हमें लगता है कि हमने ऐसी क्या गलती की। तो यहाँ पर मुझे लगा कि विद्यार्थियों को प्रकृति से जोड़ना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन।
1: बहुत ही आपने खूबसूरती से बताया कि आइडेंटिफिकेशन यानी जागरूकता सबसे पहला स्टेप है। जो आपने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात की, उसमें प्रमुख सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स आप जो आपको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका बहुत प्रभाव हुआ बच्चों पर और उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, उसके बारे में बताएं।
0: मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इस बात को कहा है कि विद्यार्थियों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करिए। तो विद्यार्थियों में साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे डेवलप होगा? सिर्फ बायोलॉजी को क्लास में पढ़ लेने से डेवलप नहीं होगा। तो इसी तरह से एक बार मैं अपने 11th बायो के बच्चों को कंजर्वेशन पढ़ा रही थी, तो मैंने विद्यार्थियों से पूछा, क्या आपको लगता है कि हमें किसी जीव को कंजर्व करने की जरूरत है? तो मेरे एक विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा कि मैम, पहले एक छोटी चिड़िया आया करती थी, गौरैया। तो जब मैं नानी के घर जाता था, बहुत सारी गौरैया आती थी, हम बहुत चावल खिलाया करते थे, आजकल वो दिखती नहीं है। तो मैंने कहा, ओके, क्या कारण है कि वो खत्म हो गई? तो किसी एक बच्चे ने रैंडम कहा कि मैम, रेडिएशन। तो ऐसे आपने कहाँ पढ़ा कि रेडिएशन कारण है? तो बोले, नहीं मैम, सब जगह आ रहा है सोशल मीडिया पे कि रेडिएशन के कारण बर्ड्स खत्म हो रही हैं। तो मैंने कहा, ऐसे नहीं, यू फाइंड आउट द रिसर्च पेपर्स और फिर कारण पढ़िए, देर आर मेनी रिसर्च पेपर ऑन स्पैरोज। तो हमने एक साल सिर्फ यही काम किया कि हमने रिसर्च पेपर्स निकाले और उसका मुख्य कारण खत्म होने का जानने की कोशिश की। तो बच्चों ने कंक्लूजन में लिखा कि गौरैया की नेस्टिंग साइट खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है वो गौरैया को कहीं भी अंडे रखने की जगह नहीं दे रहा है। तो जो आज हम मॉडर्न बिल्डिंग बना रहे हैं, जो आज हम अपने घर बना रहे हैं, उन घरों में कहीं भी गौरैया के अंडे रखने की जगह ही नहीं है। जबकि पहले जब हमारे खपड़े के घर होते थे, अर्थन टाइल्स होती थी, तो वहां कई जगह जगह होती थी जहां पर वो अंडे अपने रख पाती थी। गौरैया एक ऐसा जीव है, जब हमने खेती शुरू की वो हमारे साथ चला आया और जंगलों से हमारे साथ आके हमारे घरों में रहने लगा। धीरे धीरे उसकी जो नेस्टिंग की कला थी वो खत्म हो गई। अब वो प्रॉपर नेस्ट नहीं बनाता है, वो कहीं पर भी जहां जगह होती है वहां पर अंडे रख देता है। तो थोड़ी सी घास रखता है और अंडे रख देता है। तो फाइनली ये निकला कि भाई, हमें गौरैया के लिए नेस्टिंग साइट बनानी पड़ेगी। तो फिर ये हुआ, कैसी नेस्टिंग साइट बनाई जाए? 2021 में और 20 में जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किए थे, उस समय कहीं पर भी प्रॉपर स्पैरोज के लिए नेस्टिंग बॉक्स नहीं थे। तो मैंने बच्चों से कहा कि आपको जैसा लग रहा है वैसे बनाइए। तो बच्चों ने इतनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाई, मतलब भूसे से घर बनाए, मिट्टी से बनाए कि ठंडा रहेगा, फिर उसमें जो है शू बॉक्स से घर बनाए। तो मैंने उनसे कहा कि जो भी आपने घर बनाया इसको अपने घरों में लगा दीजिए और देखिए गौरैया इसको अडॉप्ट करती है कि नहीं, क्योंकि रहना तो उसी को है। तो हमने देखा कि जो शू बॉक्स थे उसमें गौरैया आके रहने लगी। तो वो पहली बार जब किसी बच्चे ने मुझे बोला कि मैम, वो वेंटिलेटर के ऊपर जो मैंने शू बॉक्स रखा था उसमें गौरैया ने बच्चे दिए हैं, अंडे हैं उसके अंदर, तो वो जो खुशी थी, मतलब आई हैव गॉट गूज बम्स। तो वो मतलब कि यस, दिस इज वर्किंग एक्चुअली। फिर ये हुआ कि ठीक है, तो इस तरह के बॉक्सेस होने चाहिए, और फिर हमने उन बॉक्सेस को बनाना शुरू किया। तो पहली बार जब लकड़ी के बॉक्सेस हमने बनाए, तो हमने रियलाइज किया कि उसके अंदर दूसरी बर्ड्स एंटर कर रही थी। तो हमने देखा कि मैगपाई रॉबिन एंटर कर रही है, ब्राह्मणी स्टर्लिंग एंटर कर रही है, तो कुछ गड़बड़ है। तो देन वी रियलाइज कि होल साइज बहुत बड़ा है, तो हम इसका होल साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो हमने होल साइज छोटा किया। देन वी रियलाइज कि उसकी छत के ऊपर कबूतर बैठ जाता है, और कबूतर जो गौरैया है वो शाय बर्ड है, तो कबूतर आके अंडे दे देगा तो वो अंदर आएगी नहीं। तो फिर हमने उसकी जो रूफ है वो स्लैंटिंग कर दी, ताकि उसके ऊपर जो है वो कबूतर ना बैठ पाए। देन वी रियलाइज कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, फिर हमने उसके दोनों तरफ होल कर दिए। देन वी रियलाइज कि अंडे कई बार फूट जाते हैं, उसमें चींटियां लग जाती है, तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि नीचे भी होल होना चाहिए ताकि वो पानी नीचे से निकल जाए। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली 4 ईयर्स कंटिन्यूअस जब मेरे बच्चों ने वर्क किया, तो हमने इंडिया के फर्स्ट साइंटिफिकली प्रूवन स्पैरो बॉक्सेस बनाए। आप कोई भी नेस्ट बॉक्स लेने जाएंगे उसमें हमेशा स्टिक होती है, पर हमने एक्सपेरिमेंट करते समय ऑब्जर्व किया, यदि घोंसलों में आगे स्टिक लगी होती है तो उसमें दूसरी बर्ड आकर बैठती है, बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं माँ आई है, और वो बाहर फेस निकालते हैं और वो खा जाती है, तो इसलिए हमने इससे स्टिक हटा दी। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली, दिस इज व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरे बच्चों ने 4 साल में प्रॉपर नेस्ट डेवलप किए। और अगर हम अचीवमेंट की बात करें, तो अचीवमेंट ये है मैम कि आज इसको हम डिफरेंट स्टेट्स में डिलीवर कर रहे हैं, इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। हमने इसको मुंबई भेजा, जयपुर भेजा, पुणे भेजा, कई जगह से डिमांड आती है, नोएडा भी भेजा, और नोएडा में 1.5 साल के बाद अभी हमें पता चला कि गौरैया आने लगी। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, फिर इस प्रोजेक्ट को अभी हमने जून में 42 कंट्रीज से कंजर्वेशनिस्ट आए थे, एशिया कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस जो काठमांडू में हुई है नेपाल में, वहां पर हमने इसको प्रेजेंट किया। 42 कंट्रीज से जो लोग आए थे, जो प्रॉपर साइंटिस्ट है, कंजर्वेशन का काम किया हुआ है, उन्होंने जब इस वर्क को देखा तो दे सेड कि इस तरह का वर्क अगर हम करते हैं तो इसमें में बहुत सारा फंड चाहिए होता है एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड. हाउ इज इट पॉसिबल दैट द स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 11th क्लास आर डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क? सो दे

0: वी गॉट लॉट्स ऑफ एप्रिशिएशन फ्रॉम देयर.
1: सो बहुत ही मतलब कहें कि आपने जो अचीव किया वो एक कम लागत पे भी किया, और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट आप बता रही हैं बच्चों की, क्या बच्चों के द्वारा और कम्युनिटी लेवल पर भी इसका इंटरेस्ट जागा लोगों का?
0: जब हमने परफेक्ट मॉडल्स डेवलप कर लिए तो हमें ये रियलाइज हुआ वी नीड फंड फॉर इट सो दैट वी कैन ऑल्सो इलैबोरेट दिस वर्क. तो हमने फिर मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी को अप्रोच किया, और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों ने प्रेजेंट किया उनके सामने, और हमने उनसे कहा कि बिकॉज गौरैया जो है वो भी वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आती है तो इसलिए वी नीड फंड्स फॉर इट. एंड लकली वी गॉट 1 लाख रुपीज फंड फ्रॉम देम. एंड जब हमने जो बॉक्सेस बनाए उस 1 लाख रुपीज से, वो हमने हमारे अवधपुरी के पूरे टेम्पल्स, गुरुद्वारे और जितनी रिलीजियस प्लेसेस थी वहां पर लगाए. तो वहां पर लगाने का एक बेनिफिट ये था कि जो बर्ड है उसको आसानी से दाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, और अगर नेस्टिंग साइट भी मिल जाती है तो उनका नंबर आसानी से इंक्रीज हो सकता है. और उसके बाद मेरे बच्चे इसको कंटिन्यूसली अब ऑब्जर्व करते हैं, तो दे यूज टू से कि मैम अभी उसमें 3rd टाइम नेस्टिंग हो रही है और इसमें इतने अंडे हैं, इतने बच्चे उड़ गए. तो दिस होल ऑब्जर्वेशन दे आर राइटिंग एंड वी हैव पब्लिश्ड आवर वर्क नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली.
1: सो एवरेज एडॉप्शन रेट क्या है, और कोई जो हमारे श्रोता अगर वो भी प्रेरित होकर पहल करना चाहे, कैसे वो बना सकते हैं और वो भी दे सकते हैं ये घर एक आशियाना गौरैया को?
0: तो हमारा जो मिशन है वो है कि हर घर गौरैया घर होना चाहिए, क्योंकि आप जहां आज अपने घर बना रहे हैं वो जीवों के ही थे. तो बेसिकली आज हम कहते हैं ना कि लेपर्ड हमारे घरों में घुस गया, टाइगर हमारे घरों में घुस गया, ये उल्लू हमारे घरों में आ रहे, हमारे घरों में नहीं आ रहे, हम उनके घरों में चले गए हैं. तो इसलिए उनका भी आशियाना बना रहे ये जरूरी है. तो जब हम इसके डिजाइन की बात करते हैं, जो होल साइज है वो हमने 1.5 से 2 इंच रखा है. इससे बड़ा होल साइज करने पर बड़ी बर्ड्स इसके अंदर जाने लगती है. दूसरा, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हमने होल बनाए हैं ताकि हवा जो है प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके. इसमें नीचे होल्स हैं ताकि कभी अगर पानी इकट्ठा हो तो वो पानी निकल सके. इसका जो रूफ है वो हमने स्लैंटिंग बनाया है ताकि कोई पिजन्स वगैरह इसके ऊपर ना बैठ पाए. और कोशिश ये करनी है कि इसको विंडो या वेंटिलेटर के पास लगाएं या जहां पर आपका एसी लगा हुआ है. दूसरी, हमें ये कोशिश करनी है कि जहां पर भी आप इसको लगाएं उसके ऊपर रूफ होनी चाहिए ताकि पानी इसके ऊपर ना गिरे. और दूसरा, आप जो गौरैया है वो हमेशा वेंटिलेटर से एंटर करने की कोशिश करती है. आजकल हमने अपने रोशनदान में भी जाली लगा दी है, सब चीजों में जाली लगी है, तो गौरैया अंदर आ ही नहीं सकती है. तो इसके लिए सबसे अच्छी जगह वो है. दूसरा, इस पर हम किसी भी तरह का पेंट यूज नहीं करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन से या रोड पर जो बॉक्सेस मिलते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं. हम भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को देते हैं, इसका जो एडॉप्शन रेट है वो 86% है मैम. तो हमने कई बार देखा कि जब हमने इसको दिया तो लोगों ने इसका होल साइज बड़ा कर दिया, ये सोच के कि इतनी छोटे में कैसे एंटर करेगी. और दूसरा, कई बार लोग इसको येलो ऑरेंज कलर का पेंट कर देते हैं, इसमें ग्लासेस लगा देते हैं, क्योंकि ह्यूमंस लाइक एवरीथिंग टू बी ब्यूटिफुल, उनको हर चीज ऐसा सुंदर चाहिए. जबकि कोई भी बर्ड्स मैम कभी ये नहीं चाहती कि उनका
1: ये ज्यादा नेचुरल हैबिटेट से
0: कि उनका नेस्टिंग साइट कहाँ है ये किसी को भी पता चले. तो अक्सर इसको छुपाकर लगाना चाहिए, और हम इसका कलर ऐसा रखते हैं मुल्तानी मिट्टी या गेरू से, ताकि ये कैमोफ्लाज कर जाए वॉल के साथ आसानी से. तो ये दिखना नहीं चाहिए, कोई बर्ड ये नहीं चाहती कि उसका नेस्टिंग साइट किसी को भी पता हो. दूसरा, इसमें दाना पानी नहीं रखना है. इसमें कहीं पर भी अगर आप पानी के लिए बनाते हैं, बैठने के लिए बनाते हैं या दाने के लिए बनाते हैं, तो इसमें दूसरे जो बर्ड्स हैं वो आकर बैठते हैं और उसके वो प्रेडेटर्स हो सकते हैं, उसको चिक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं.
1: जी, तो बहुत ही आपका सराहनीय ये प्रोजेक्ट है, एंड आई एम श्योर कि बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि गौरैया तो हमारे जीवन का बहुत एक इंपॉर्टेंट, उसको कहा ही कॉमन हाउस स्पैरो जाता है.
0: आई वुड लाइक टू ऐड जस्ट वन थिंग इन दिस. क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हमें लगा कि गौरैया को बचाना जरूरी है, गौरैया हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये हमें सोचना बहुत जरूरी है. तो गौरैया जो है मैम ये ह्यूमंस के साथ रहती है, बहुत कम ऐसी बर्ड्स हैं जो ह्यूमन कम्युनिटी के साथ रहती है, गौरैया उनमें से एक है. और ये क्या करती है कि जब इसके बच्चे अंडा फोड़कर बाहर आते हैं तो उनको हाई प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और उस हाई प्रोटीन के लिए ये हमारे बगीचे में जितने भी लार्वाज हैं, जो हमारी नालियों में है, जो हमारे पौधों में है, जो हमारे गमलों में है, उससे लार्वा को चुन चुन के अपने बच्चों को खिलाती है. और ये वही लार्वाज हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारी फूड चेन में एंटर करते हैं. तो यानी यदि आप एक छोटा सा गौरैया घर नहीं लगाते हैं तो आप हर महीने किसी न किसी रोग या बीमारी की वजह से डॉक्टर को विजिट करते हैं. क्योंकि जो कम्युनिकेशन, जो आपके डिजीज हैं जो आसानी से फैल सकते हैं, उन डिजीजेस को रोकने का एक ही तरीका है कि जो आपके पास लार्वाज हैं आसपास, जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको आप खत्म करें. तो खत्म करने का ये नेचुरल तरीका है, ये बायोपेस्टिसाइड्स हैं, बायो इंसेक्टिसाइड्स हैं, और दूसरा तरीका है आप केमिकल्स डालेंगे.
1: तो आप जो कह रही हैं कि इतने सारे आपने छात्रों को इसमें इन्वॉल्व किया है, जो खुद उन्होंने अपने आप रिसर्च की और बहुत एक कहें कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रही उनकी, तो उनके जो आसपास के जो उनका घर वाले हैं या उनके फ्रेंड्स हैं, उनमें भी वो जागरूकता फिर एक तरह से एक डोमिनो इफेक्ट होता है.
0: यस, ऑफ कोर्स मैम. जब मैं किसी बच्चे को कुछ सिखाती हूँ तो वो बच्चे से अभी अभिभावक और अभिभावक

0: से कम्युनिटी में जाती है। तो जब ये स्पैरो बॉक्सेस मेरे बच्चे घर में बनाते हैं या लगाते हैं तो सबकी नजर जाती है, और जब उसमें चिड़िया आती है या अंडे देती है तो सिर्फ वो नहीं देख रहे हैं, इवन उनके दादा दादी बताते हैं कि हमारे यहाँ पहले बहुत आया करती थी। तो इस तरह से एक पूरा घर, एक पूरा समुदाय, एक पूरी कम्युनिटी धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो हमने एक दिया, बाद में वो 10 बनाते हैं, तो अब उनको ये पता है कि मेरे घर में अगर सोफा का कुछ लकड़ी बच गई है या डोर बनाते समय कुछ बच गया है तो उसको काट कर हम स्पैरो हाउस बना सकते हैं।
1: तो ये लकड़ी से ही बनता है या गत्ते से भी या किसी और मटेरियल से भी?
0: अगर आपको सिर्फ एक सीजन के लिए लगाना है तो आप गत्ते से भी बनाकर लगा सकते हैं। स्पैरोस आसानी से आ जाती हैं अगर आप एक नॉर्मल शू बॉक्स लेते हैं और उसमें होल कर देते हैं। जो सबसे बड़ा डर है मैम वो ये है कि उसमें पानी एब्जॉर्ब करेगा और वो फूल जाएगा, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार चींटियां आ जाती हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं, कई बार वो वीक हो जाता है और टूट जाता है, गिर जाता है, कई बार हवा से गिर जाता है। तो इसलिए हम एक सेफ नेस्टिंग जो है उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं।
1: और एक और जो आपकी पहल जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, जो पेड़ों को लेकर आपने जो जागरूकता बच्चों में जो QR कोड सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस किया है, थोड़ा सा ये बताएं।
0: मैम सेम आई वुड लाइक टू मेंशन, कोरोना के बाद जब बच्चे मेरे पास आए, कोरोना में हम लोगों ने ही सभी बच्चों को इंसिस्ट किया कि स्मार्टफोन्स खरीदिए, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। तो ऑनलाइन क्लासेस लगभग 1.5 साल चली और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे बच्चों को सोशल मीडिया की आदत पड़ गई। तो जब पेरेंट्स मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि मैम हमारे बच्चे जो है वो मोबाइल ही हाथ से नहीं छोड़ते हैं। तो मुझे ये लगा कि वो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, अब उस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जा सकता है दैट आई हैव टू सी, बिकॉज उनके हाथ से मोबाइल छुड़ाना इज नॉट द सोल्यूशन, बट मोबाइल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, ये एक समस्या थी मेरे साथ। मैं एज अ क्लास टीचर आई वॉज फेसिंग दिस। एंड दूसरी तरफ मेरे बच्चों को मैं बायोडाइवर्सिटी पढ़ा रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे ही स्कूल में जो लगे हुए पेड़ है बच्चे उनके भी नाम नहीं बता पा रहे, मतलब वो सिर्फ कुछ पेड़ों के नाम जानते हैं, वो पीपल और बरगद में अंतर तक नहीं जानते हैं। तो मुझे लगा कि अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने एक दिन 9th क्लास में बच्चों से पूछा कि क्या हम पेड़ों को कैसे पहचान सकते हैं, तो एक बच्चे ने कहा कि मैम जैसे हम अपना नाम बताते हैं यदि वो भी अपना नाम बता दें खुद ही तो हम पहचानने लगेंगे। तो मैंने कहा इसके लिए क्या किया जाए, तो देयर वाज अ स्टूडेंट चाहत मिश्रा इन द 9th क्लास, सो ही सेड कि मैम QR लगा देते। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड कि QR लगा देते हैं, कैसे QR लगाओगे? तो बोले मैम आप देखिए ना आपके लैपटॉप में QR लगा है, ये पेन में लगा हुआ है, हर चीज में, बुक्स में QR लगे हुए हैं, पेड़ों पे QR क्यों नहीं लगा सकते, 2021 की बात है ये। तो मैंने कहा लगाते हैं फिर, तो चलिए आप लोग QR बनाइए फिर बना लोगे? तो दे सेड यस। बच्चे कभी ना नहीं कहते मैम, कुछ भी कहिए तो दे लाइक हाँ कर लेंगे ना मैम, दे नेवर से कि नहीं होगा, इवन आई वाज ब्लैंक कि कैसे होगा। तो अगले दिन 5 QR कोड बन के पेड़ों पे लग गए मैम, और हमने उन सबको स्कैन किया, देयर वर ग्लिचेस, उनमें से एक भी चल नहीं रहा था लेकिन QR बन गए थे। तो उससे एक होप डेवलप हुआ कि हम बना सकते हैं। फिर बहुत सर्च किया तो इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिल रहा था जिन्होंने ये काम पहले किया हो, इंडिया के बाहर एक दो जगह मिला पर वो जिस तरीके से लगा रहे थे वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर हमने कहा कि ठीक है QR बनाते हैं। तो QR बनाने के लिए सबसे पहले आपको बॉटनिकल सर्वे करना पड़ेगा कि आपके स्कूल में कौन से पेड़ हैं, कितने प्रकार के हैं और कितने नंबर में हैं। तो ये एक बॉटनिकल सर्वे शुरू हुआ, तो हमने फाइंड आउट किया कि हमारे स्कूल में टोटल इतने पेड़ हैं और इतने प्रकार के हैं। तो शुरू किया कि इस पेड़ का QR बनाना है। अब ये काम जो है वो काफी डेप्थ में जा रहा था और इतना टाइम आप स्कूल में दे नहीं सकते क्योंकि स्कूल में बच्चों के फिक्स पीरियड होते हैं, क्योंकि जूम मीटिंग हम पहले सिखा चुके थे बच्चों को, तो हमने उसको यूटिलाइज किया और हम डेली 8 से 9:30 नाइट में बच्चों के साथ मिलने लगे। ऑलमोस्ट 50-55 स्टूडेंट्स 9th के सभी सेक्शन के मिला,
1: बच्चों में बहुत उत्साह था।
0: तो वो बच्चे कनेक्ट होते थे और हम डिस्कस करते थे कि क्या क्या लिखना चाहिए, QR में क्या क्या होना चाहिए। तो फाइनली 1.5 साल की मेहनत के बाद हमने प्रॉपर QR बनाया जिसमें इंग्लिश नेम, उसका हिंदी नेम, साइंटिफिक नेम होता था, और हम ये चाहते थे कि आप जिस जगह रहते हैं उस भाषा का भी विवरण उसमें होना चाहिए क्योंकि कम्युनिटी अगर स्कैन करे तो उसको पता हो। तो हम सिर्फ इंग्लिश नहीं चाहते थे, हम उसको हिंदी में भी चाहते थे, बाद में कई लैंग्वेजेस में बने ये। तो हमने उसको बनाया और उसमें इंफॉर्मेशन दी कि ये पेड़ आपको कितना ऑक्सीजन देता है, इसका मेडिकल यूज क्या है, और इसके अलावा ये सब तो हमें नेट से मिल रहा था लेकिन उसके बाद ये आया कि हमारी कम्युनिटी में इसका कैसे यूज करते हैं। तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो गांव से आते हैं, तो वो कई तरह से, जैसे अमलतास की फली है वो अपने गाय भैंस को खिलाते हैं डाइजेशन के लिए, और आज इसको हम पढ़ रहे हैं रिसर्च में कि अमलतास की फली इस तरह से यूज हो सकती है। कदम का जो फूल होता है हम कभी नहीं जानते थे उसके फल को खाया जाता है, पर मेरे बच्चे ने बताया कि मैम इसकी तो हम चटनी बना के खाते हैं, तो हमने उसमें विधि लिखी अगर आपको इसको खाना है तो चटनी कैसे बनाई जाए। तो जब आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फ्रूट की चटनी कैसे बनाई जाती है। फिर हमने साइंटिफिकली पढ़ा तो पता चला कि अगर अक्टूबर नवंबर में जब ये फल आता है यदि आप इसे खा लेते हैं तो दिसंबर जनवरी में आपको सर्दी खांसी बुखार कुछ नहीं होगा।
1: कोई भी जो विजिटर है जो भी वहां से गुजर रहा है स्कैन करिए और आपको
0: यस यू डोंट नीड एनी ऐप फॉर इट, सिंपली विद द QR स्कैनिंग आप उसको स्कैन कर सकते हैं। फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे वहां कमिश्नर मैम थी तन्वी हुड्डा, शी केम टू नो अबाउट इट, तो शी कॉल्ड अस कि कैन वी डू इट इन ऑल द पार्क्स ऑफ आर एरिया। तो शी गेव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 72 पार्क्स, तो हमने 72 पार्क्स में QR कोडिंग की मैम। प्रोग्राम और हर बच्चा

0: जो है जो उस पार्क के पास रहता था वो वहां जाता था सुबह वॉक करने अपने पेरेंट्स के साथ, वहां के जो लोग थे उनसे पूछता था कि इस पेड़ का नाम क्या है, और वो लिखता था कि ये पेड़ इतने हैं, ये पेड़ इतने हैं, और फिर हमने QR कोड्स लगाए। मोर देन 4,000-5,000 ट्रीज अभी तक हम QR कोडिंग कर चुके हैं। फिर हमने पन्ना टाइगर रिजर्व में लगाए, फिर हमने मुकुंदपुर में लगाए, ऐसे कई टाइगर रिजर्व में हमने QR कोडिंग की, एंड फिर पुणे में किया, हमने सिखाया इसको, बैंगलोर में सिखाया। तो वो एक छोटे से जिले से जो काम शुरू हुआ था वो पूरे इंडिया में फैल गया, और फाइनली मिशन लाइफ के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लिया, और लास्ट मार्च में सभी इंडिया के स्कूल्स में इस प्रोजेक्ट को मस्ट कर दिया गया। अब सभी स्टेट ICSE और CBSE बोर्ड के स्कूल्स में ये हो रहा है।
1: बहुत ही मतलब एक इनोवेटिव पहल है जिससे एक इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चों का। और जो दूरगामी फायदे क्या हैं, क्या आपको पता लगता है कि कितनी बायोडायवर्सिटी है, नहीं है, किस तरह के सजेशंस या पॉजिटिव आउटकम्स क्या आती हैं?
0: अगर हम पॉजिटिव आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें मैं देखती हूँ। एक कम्युनिटी की तरफ से अगर हम देखें तो जब मेरे बच्चों ने ये डेटा निकाला, मैम बॉटनिकल सर्वे किया, तो जब हमारे पास रिजल्ट आया कि किस पार्क में कितने पेड़ लगे हैं, और उसको जब हमने एनालाइज किया, दिस इज व्हाट इज रिसर्च, तो हमने देखा कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज है हमारे एरिया में वो रॉयल पाम था। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि मेरा एरिया जेरोफाइटिक एरिया है नहीं, तो ये रॉयल पाम का नंबर सबसे ज्यादा कैसे हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि प्लांटेशन में आप रॉयल पाम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब आप महुआ काटते हैं, शीशम काटते हैं, आम, बरगद, नीम, महानीम, कहां गए सब? ये सब कहां गए? जंगल जलेबी कहां गया? आपने इन सबको काट के और प्लांटेशन में क्या लगा दिया? रॉयल पाम। क्यों लगा दिया रॉयल पाम? क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कम है। तो इस तरह से क्या हुआ कि मेरे नेटिव पेड़ सारे गायब हो गए, और अगर नेटिव पेड़ गायब हो जाएंगे तो पूरी बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाएगी। उस पेड़ से जो मेरे इंसेक्ट्स रिलेटेड है, जो मेरे बर्ड्स रिलेटेड है, जो मेरी बटरफ्लाईज रिलेटेड है, एक पेड़ के खत्म होते ही वो सब खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे उस एरिया की पूरी बायोडायवर्सिटी खत्म हो जा रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है हम ये सोचे कि यदि हम कोई पेड़ काट रहे हैं, यदि हम शीशम काट रहे हैं, महुआ काट रहे हैं, बरगद काट रहे हैं, हम लगा क्या रहे हैं? क्या हम वहां उस एरिया के नेटिव पेड़ लगा रहे हैं? सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, यदि आप QR कोड या PBL का इंपैक्ट की बात करें कि इसके रिजल्ट्स क्या है, तो आज से 4-5 साल पहले एक स्टूडेंट था युवराज, वो मेरे साथ QR कोडिंग करता था। उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसके फादर नहीं थे, तो कई बार ऐसा होता था कि युवराज से जब बात करो तो वो रोने लगता था अचानक से। बाहर से जब लोगों से इंटरेक्ट करके आता था तो कहता था मैम वो तो ऐसा कह रहे हैं, और बहुत जल्दी हार जाता था। पर वो प्रोजेक्ट करते समय मैंने उसमें देखा कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, और फिर जब वो कमिश्नर सर से मिल रहा है, कलेक्टर सर से मिल रहा है, जब उसकी फोटो न्यूज़पेपर में आ रही है, तो इससे कॉन्फिडेंस उसमें धीरे धीरे डेवलप हुआ। और फिर उस बच्चे को क्योंकि QR कोड बनाना था तो उसको टैब मिल रहा था, उसको मेरा लैपटॉप मिल रहा था, तो उसको धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। और अभी जुलाई में मुझे पता चला कि उस बच्चे ने IIT रुड़की ज्वाइन किया है।
1: कितना मतलब एक एक्सपैंड होता है आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है जो छात्रों का। और कोई ऐसा एग्जांपल आप बता सकें कि जो उन्होंने ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के दौरान सीखा उसको आगे जाके उनको उसकी हेल्प हुई हो?
0: एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है मैम, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट ही किया था तो आई यूज टू गिव दिस प्रोजेक्ट टू माय स्टूडेंट्स। तो 9th क्लास में देयर वर स्टूडेंट, बच्चों को मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था कि आपको अपनी सिटी में जो बर्ड्स मिलती हैं उन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, और उन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कि उनका नाम क्या है, उनकी फोटोग्राफ्स आपको लेनी है। तो उस बच्चे ने वो प्रोजेक्ट किया, एंड देन कुछ साल पहले दिल्ली से मुझे एक कॉल आया, और वो बच्चा मुझे कॉल करके बोलता है कि मैम मैं विनायक बोल रहा हूँ, मैम आपने मुझे 9th में साइंस पढ़ाई थी, ओके, तो ही सेड कि आज मैं UPSC का इंटरव्यू देके आया हूँ। तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, एंड देन ही वाज लाइक मैम आपको पता है आपने 9th में मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था जो बर्ड्स के ऊपर, तो आज मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपने कोई भी ऐसा काम जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है प्रैक्टिकली किया है? तो बोलता मैम वो 9th में जो मैंने बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन किया था, मैं सुबह कैमरा लेके जाता था, बर्ड्स की फोटो खींचता था, गूगल से मैच करता था, और कितना डिफिकल्ट होता था उस काम को करना, वो सारा मैंने आज डिस्क्राइब किया। एंड देन आफ्टर फ्यू डेज आई सॉ इन द न्यूज़पेपर दैट इज UPSC ranking was 47.
1: Wow.
0: So that is an achievement, ma'am.
1: Yes, yes. आपको लगता है कि ये जो experience इनको मिलता है project based learning में, जैसे आप कह रही हैं कि वो research जो stage है उसमें भी involved होते हैं, और जिस तरह से धीरे धीरे dynamic changes होते हैं project में, उसको एक success तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से involved रहते हैं बच्चे, तो आपको लगता है कि पूरा उनका जो mindset है for life, ता उम्र के लिए वो एक जो conservation है, हमारी प्रकृति के प्रति प्रेम है, उसके संरक्षण के प्रति जो जागरूकता है, वो आपको लगता है कि उन्हें हमेशा वो रहेगी, उनका पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी बन जाती है?
0: जो 40 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट मेरी क्लास में आज बैठते हैं, मेरा ये मानना है कि कल समाज वही बनाएंगे। आज जो समाज हम देख रहे हैं, यदि हम उसमें कुछ बुराइयां देख रहे हैं या कमियां देख रहे हैं, ये समाज कभी किसी दिन किसी टीचर की क्लास में बैठा होगा, और आज जो मेरी क्लास में बैठा है ये आने वाली पीढ़ी है, ये कल समाज की नींव रखेगी। जरूरी नहीं है कि मेरे क्लास में जितने विद्यार्थी बैठे हैं वो सभी के सभी डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बन जाएं। तो यहां पर मेरा उद्देश्य सिर्फ सीखना है कि मैं अपने विद्यार्थियों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाऊं, मैं उन्हें इस चीज के लिए समझा पाऊं, सेंसिटाइज कर पाऊं कि प्रकृति हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना आप प्रकृति से लेते हैं कुछ तो उसके बदले में उसे दीजिए। हमें प्रकृति को बचाने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। तो ये जो सेंसिटाइजेशन है, यदि हम इस कच्ची उम्र में कर पाते हैं तो वो जीवन पर्यंत उनके साथ जाता है। जैसे मेरे एक विद्यार्थी है मैम, वो इंजीनियर है, तो वो बहुत पहले पढ़ाया था मैम, 2010-11 में पढ़ाया था, सबसे पहला बैच था मेरा। तो उस बच्चे को जब हम क्या करते थे, नेस्टिंग साइट ढूंढते थे कि चलो आज देखते हैं कहाँ कहाँ नेस्टिंग साइट्स हैं, गांव में जाते थे मेरे साथ और नदी के किनारे नेस्टिंग साइट ढूंढते थे। तो बड़ा मजा आता था कि ओपन बिल की नेस्टिंग साइट है, ये ईग्रेट्स की नेस्टिंग साइट है। वो वहां पढ़ाया और खत्म हो गया और बच्चे ने मैथ्स ले लिया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मुझे उसका मैसेज आता है कि मैम मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की लाइन डाल रहा था तो मैंने वो ना डायरेक्शन चेंज करा दिया मैम। आई सेड क्यों, क्या हुआ? तो ही वाज लाइक मैम वहां पे तो नेस्टिंग साइट है, तो ईग्रेट्स की और ओपन बिल्स की नेस्टिंग साइट है, तो वो पेड़ नहीं काटना मैम, बिकॉज दे नो कि ऐसी कई माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कई हजार किलोमीटर उड़कर बार बार इंडिया आती है, और जब वो इंडिया आती है तो वो उसी पेड़ को ढूंढती है, उसी एरिया को ढूंढती है। तो इन एरियाज को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। यदि वो पेड़ वहां पे नहीं है और बिल्डिंग बन गई है, क्योंकि वो उसका ब्रीडिंग सीजन है, वो ब्रीडिंग सीजन मिस आउट हो जाएगा। तो इसलिए इन नेस्टिंग साइट्स को पहचानना बहुत जरूरी है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा किस फील्ड में है, लेकिन नेचर से कनेक्ट होना तो सभी के लिए जरूरी है मैम।
1: बिल्कुल जरूरी है, हमारे खुद के भविष्य के लिए भी। सो डॉक्टर शुक्ला, जैसा आप कह रही हैं कि हर एक जो नागरिक है वो आगे चलकर किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन जो पर्यावरण का संरक्षण है वो तो हम सभी के भविष्य के लिए, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां उनके भविष्य के लिए भी बहुत ही जरूरी है, जैसा हम देख ही रहे हैं। एक और जो आपकी पहल है बीजों को लेकर, सीड बिन्स को लेकर, उसके बारे में आप हमें बता सकती हैं, उसका क्या है ये पहल और उसका क्या उद्देश्य है?
0: मैम इसकी कहानी भी इसी तरह से शुरू हुई थी कि एक बार मैं थर्ड फ्लोर पे खड़ी हुई थी और मैंने देखा कि नीचे से जो गार्बेज व्हीकल थी वो निकल रही थी और लोग क्या कर रहे थे, आम के बीज को काली पन्नी में बांधकर और उसमें डाल रहे थे। तो मैंने अपने विद्यार्थियों को यही समझाया कि बीज कचरा नहीं है, क्योंकि बीज को जो आप कचरे की गाड़ी में डाल रहे हैं वो कचरा है ही नहीं। दूसरा, बीज का जो मौलिक अधिकार है उसको मिट्टी पानी मिल सके, आपने वो भी खत्म कर दिया। तो और वो बीज का एक पोटेंशियल है कि हर बीज जो है या तो 40 दिन में या 1.5 महीने में वो उगाता है, अगर उतने दिन में उसको मिट्टी पानी नहीं मिला तो बीज खत्म। इस तरह से लाखों बीज हम भारत में हर साल बर्बाद कर। तो इस यहां से ये मुहिम शुरू हुआ कि हम जो बीज है उसको गार्बेज व्हीकल में नहीं डालेंगे। तो फिर इसको लेकर हमारी नगर निगम कमिश्नर मैम से बात हुई कि मैम क्या हम बीज को अलग से इकट्ठा कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने गाड़ियों में थैलियां डलवाई और पूरे एरिया में लोगों से रिक्वेस्ट किया कि बीजों को अलग से दीजिए, और इन बीजों को हमने बोरियों में कलेक्ट किया। तो जब ये काम कौन कर सकता था, मेरे विद्यार्थी पूरे शहर में फैले होते हैं तो वो हर जगह अपने अपने एरिया में बता रहे थे, और इस तरह से हमने बीजों को कलेक्ट किया। और यहाँ पर ये हुआ कि स्कूल में कैसे कलेक्ट करेंगे, तो हमने स्कूल में डस्टबिन के साथ सीड बिन्स रखे। तो मेरे विद्यार्थी जो सीताफल खाते थे वो सीताफल के बीज लाके उसमें अलग से डालते थे, जो आम खाते थे वो आम लाके अलग से डालते थे। तो यहाँ से सीड बिन्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, और इस मुहिम के चलते हम नगर निगम के साथ मिलकर आम के उस साल लगभग 6,000 बीज और सीताफल के लगभग 10,000 बीज बचा पाए थे, और वो 6,000 में से 2,500 पेड़ हमने डेवलप किए थे।
1: तो बहुत ही मतलब एक नेचुरल रिसोर्स है देखा जाए तो। ये एक और जो आपका कॉन्सेप्ट है प्लांट्स में इमोशन है, ये क्या तथ्य है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और इसका क्या फायदा है?
0: एक बार क्लास में ही पढ़ाते हुए मैंने जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में जब अपने विद्यार्थियों को बताया तो मैंने कहा था कि वो कहते हैं कि उनमें फीलिंग्स होती हैं, उनमें भावनाएं होती हैं, वो फील करते हैं। तो मेरा एक बच्चा खड़ा होकर कहता है कि मैम सच में फील करते हैं क्या, क्या वो हमारी बात समझते हैं? तो मैंने कहा करके देखते हैं। तो विद्यार्थी बड़े एक्साइटेड होते हैं, यस मैम कर सकते हैं क्या? मैंने कहा करते हैं। तो हम दो पौधे लाए और दोनों पौधे जो है वो बराबर साइज के थे, एक जैसी मिट्टी थी, एक जैसे गमले थे, एक जैसे सूरज की रोशनी मिल रही थी, और हम नाप कर दोनों में पानी डालते थे, बराबर खाद डालते थे। बस एक डिफरेंस जो था, हमने 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जो पेड़ों से बात करता था। तो एक ग्रुप जो है वो उस पेड़ को ग्रेटिट्यूड शो करता था, अप्रिशिएट करता था, और जो दूसरा ग्रुप है वो थोड़ा क्रिटिसाइज करता था। तो उसकी जो लैंग्वेज होती थी वो रफ होती थी और क्रिटिसाइजिंग होती थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप बात करिए इनसे, लेट्स सी कि कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो जब बच्चों ने बात किया, 1 महीने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट थे, तो जिससे हम नेगेटिवली बात कर रहे थे उसकी ग्रोथ ज्यादा थी। तो मुझे लगा कि शायद हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ तो है जो हम गलत कर रहे हैं। तो फिर दे सेड कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा लेट्स कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट, अभी रोकते नहीं है इसको। हमने अगले महीने फिर उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया, तो मैम इसकी जो ग्रोथ थी जिससे हम नेगेटिवली बात कर रहे थे उसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक गई, और इसमें नई पत्तियां निकलने लगी। तो हम नोट करते थे कि इसमें नई लीफ आ रही है, स्केल से नापते थे कि कितनी बड़ी होगी। 3 महीने आते आते मैम जो पौधा जिसको क्रिटिसाइज करते थे वो मर गया, और जो दूसरा वाला पौधा था वो हरा था। तो मतलब अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो जिन बच्चों ने ये प्रोजेक्ट किया, जब उन्होंने पीपीटी प्रेजेंटेशन इस प्रोजेक्ट का दिया, तो वो बच्चे जितनी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे उतने अच्छे से तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो अब मेरे बच्चे सुबह आते हैं तो पेड़ों से हेलो करते हैं, मैं खुद हेलो करती हूँ, बात करती हूँ।
1: तो बहुत ही कहें कि दूरगामी इसके प्रभाव है और

0: लगता है कि ये विन विन सिचुएशन है। एंड बच्चों के लिए भी उनकी जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है उसमें आपको लगता है कि इसका बहुत अहम भूमिका है।
1: यस मैम, हमने एक और मूवमेंट शुरू किया है जिसमें हम बच्चों को पेड़ों को हग करने के लिए कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज हग अ ट्री मूवमेंट। तो जब वो पेड़ों को हग करते हैं, देयर इज अ साइंटिफिक रिपोर्ट जो ये कहती है कि अगर आप सिर्फ 28 सेकंड्स तक अगर किसी पेड़ को हग करते हैं तो आपके अंदर एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और ये वही हार्मोन है जो मदर को हग करने से रिलीज होता है। और मैंने बच्चों के फेस पे एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखे हैं।
0: डॉक्टर शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई आकाशवाणी स्टूडियोज में और आपने इतने विभिन्न पहलुओं पर इतने विस्तार से बताया, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपको सम्मानित किया है भारत सरकार ने उसके लिए।
1: थैंक यू सो मच मैम मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ एक लाइन आखिरी में बोलना चाहूंगी, महात्मा गांधी ने कहा था बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द सोसाइटी, और मुझे खुशी है कि हम वह परिवर्तन है। धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे गौरैया और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योगदान देने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अर्चना शुक्ला के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमारे ईमेल podcast.airnews@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: और बहुत ही कामयाब निर्माता निर्देशक पर जिनका नाम है GP Sippy।
5: हवा के साथ साथ,
6: अरे रे रे।
5: घटा के संग संग,
6: संभालना।
5: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग।

0: रेशमी जुल्फे लहराने दे
1: जी पी सिप्पी का नाम हिंदी सिनेमा उद्योग के इतिहास में केवल एक फिल्म के लिए याद किया जाएगा, लेकिन उस फिल्म का पता तो आपको भी है और वो फिल्म है 70 mm वाली शोले। लेकिन जीपी सिप्पी ने सिर्फ शोले ही

नहीं बनाई, और वो सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं थे बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत बतौर डायरेक्टर हुई थी, और वो भी साल 1955 में। फिल्म थी मरीन ड्राइव।

उसके बाद उन्होंने एक बड़ी ही कामयाब फिल्म का निर्देशन किया। इस फिल्म के गाने आज तक संगीत के कदरदान गुनगुनाते हैं। ये फिल्म थी अदले जहांगीर।

साल 1956 में जीपी सिप्पी की निर्देशित फिल्म आई श्रीमती 420। साल 1959 में उन्होंने बनाई भाई बहन, इस फिल्म के निर्देशक थे वो। अब जरा आपको ये भी बता दिया जाए कि जीपी सिप्पी प्रोड्यूसर बने थे सन 1951 में फिल्म सजा के जरिए। फिल्म सजा के गाने हम आज भी गुनगुनाते हैं।

सन 1958 में उन्होंने एक सस्पेंस फिल्म बनाई, 12 o'clock। उसके बाद सन 1955 में आई गुनगुनाती हुई कामयाब फिल्म मेरे सनम के प्रोड्यूसर भी जीपी सिप्पी ही थे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में हम आज आपको निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी के बारे में बता रहे हैं, जिनका जन्म 14 सितंबर 1914 को हुआ था और वो दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जाने जाते हैं। ज्यादातर लोगों को उनकी फिल्म शोले का पता है, इससे आगे या पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। फिल्म शोले के निर्देशक तो थे उनके बेटे रमेश सिप्पी, लेकिन जीपी सिप्पी ने शोले के पहले और बाद में कई नामी फिल्में बनाई हैं। शोले से पहले ही वो सन 1968 में ब्रह्मचारी जैसी कामयाब फिल्म बना चुके थे।
1: चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी।

दूसरी तरफ सन 1971 में उन्होंने बनाई थी फिल्म अंदाज, सन 1975 फिल्म शोले, और शोले के ठीक बाद सन 1980 में आई थी फिल्म शान। सन 1985 में रमेश सिप्पी के निर्देशन में जीपी सिप्पी की प्रोड्यूस फिल्म आई थी सागर।

सन 1985 के बाद से जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस का ग्राफ थोड़ा सा नीचे हुआ था। दरअसल इसके बाद आने वाली फिल्में कामयाबी की वो कहानी नहीं रच पाई जो शोले या उसके पहले और बाद की फिल्मों ने रची थीं, और जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस को फिल्म संसार का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनाया था। सन 1991 में सलमान खान के अभिनय वाली पत्थर के फूल फिल्म आई।

सन 1992 में आई राजू बन गए जेंटलमैन, यहाँ से शाहरुख खान की कामयाबी की कहानी शुरू होती है। संघर्ष के दौर में शाहरुख खान जीपी सिप्पी के दफ्तर में अपनी तस्वीरें लेकर बैठे हुए थे और राजू बन गया जेंटलमैन के निर्देशक अजीज मिर्जा ने जीपी सिप्पी से कह रखा था कि इस लड़के में हीरो बनने का जबरदस्त पोटेंशियल है। जब जीपी सिप्पी ने शाहरुख खान को देखा तो उन्होंने फौरन ये फैसला किया कि उनकी इस अगली फिल्म में राजू शाहरुख खान ही बनेंगे।

0: इसके बाद आई आतिश, सन 1997 में जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस की आखिरी बड़ी फिल्म आई थी हमेशा। आपको बता दें कि जीपी सिप्पी के बेटे रमेश सिप्पी एक कामयाब निर्देशक के बाद एक कामयाब प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं। रमेश सिप्पी के बेटे रोहन सिप्पी परिवार में सिनेमा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये फिल्म है दम मारो दम।
1: तेरी बातों की शराब, तेरे पापों के हिसाब, तेरे स्विस बैंक अकाउंट खोल खोल मोल काउंट, तेरे गली गली यार पूरी गोली बार बार, पहले यारी में मिली फिर बिकी बार बार, तेरी होगी सरकार तेरा होगा दरबार, पर रहेगी नहीं कमजोरी हर बार, जाएंगे जाएंगे जाएंगे बारी बारी,
2: आपकी सेवा में जनहित में जा रही है।
0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अजीमुशान निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
3: आज के फनकार।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की।

0: दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों विविध भारती की टीम फिल्मकार विमल रॉय के सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य के घर गई, रिकॉर्डिंग की उजाले उनकी यादों के। तो चलिए सुनते हैं आज वही कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं फिल्मकार विमल रॉय के सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिनके लिए सिनेमा सिर्फ एक पेशा या कला नहीं बल्कि परिवार की विरासत भी है। यानी आज हम बातचीत करने जा रहे हैं महान फिल्मकार विमल रॉय की बेटी रिंकी भट्टाचार्य से। वो विमल रॉय जिन्होंने भारतीय फिल्मों को अलग अर्थों में गढ़ा। तो रिंकी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते, मैं बहुत खुश हूँ।

0: जी
1: मेरे मेरे से जो भी होगा पिताजी के बारे में मैं वह कहूंगी
0: जी
1: आपको।
0: बिल्कुल। तो रिंकी जी, हम आपकी आंखों से देखने की आज कोशिश करेंगे महान फिल्मकार बिमल रॉय साहब को। हम बिमल रॉय को एक महान फिल्मकार के रूप में जानते हैं, लेकिन आप उन्हें एक पिता के तौर पर जानती हैं। तो
1: जी
0: सबसे पहले हम सभी का यही सवाल होगा कि कैसे थे पिता के रूप में बिमल रॉय साहब।
1: मैं तो बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ,
0: जी
1: क्योंकि पिताजी का जैसा पिताजी मिलना ये छोटी बात नहीं है। और हम लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा महान का वो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। एकदम घर में जैसे साधारण हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में सब बड़े हुए हैं
0: जी
1: उनके साथ, उससे हमको पता ही नहीं चलता था कि पिताजी बाहर उनका एक रूप है, बाहर उनका कोई स्टेटस है। और चाइल्डहुड मेरा हमारा चाइल्डहुड बहुत ही एकदम सुखदायक था,
0: जी
1: बहुत ही
0: जी
1: बहुत खुश। हम लोग सब बहुत खुश थे, फैमिली मैन थे वो, फर्स्ट फैमिली मैन थे वो।
0: जी
1: घर में आके उनका पूरा यही बदल जाता था,
0: एक रूप ही बदल जाता
1: हाँ
0: था।
1: रूप ही बदल जाता था।
0: मतलब आपके पिता घर पर फिल्मकार नहीं होते थे, एक पिता ही होते
1: जी
0: थे।
1: सही बात है।
0: जी, तो आपको ऐसा कब महसूस हुआ कि आपके पिता बाकी लोगों से कुछ अलग हैं, बाहर उनका बहुत बड़ा रुतबा है, या वो इतने महान फिल्मकार हैं?
1: ये हमको पता ही नहीं चला कि बाहर उनका क्या रूप है, क्या
0: जी
1: स्टेटस है, क्योंकि पिताजी को जो उनका बिहेवियर था घर में तो वो एकदम साधारण जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली में होता है। पिता पुत्री का जो रिलेशनशिप होता है एकदम सहज सरल। हम लोग जो बड़े हुए हैं हम बहुत ही, इस वेले मैं तो एक ही अंग्रेजी शब्द बोलती हूँ, ब्लेस्ड,
0: जी
1: ट्रूली
0: जी
1: ब्लेस्ड।
0: जी जी तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए, कितने भाई बहन आप लोग थे, और आपकी माता जी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, वो किस तरह से उनकी फिल्मों से जुड़ी रही, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी रही?
1: जी लेकिन मेरी माँ जो थी वो एकदम अलग थी, और उनका जो खुद आइडेंटिटी एक था,
0: जी
1: शी वॉज ए फोटोग्राफर। और उनके बारे में सब लोग आजकल जानते हैं, उनका जो फोटोग्राफी है वो बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े व्यक्ति के फोटोग्राफ लिया है, जैसे टैगोर का लिया है, और नेहरू का लिया है, इंदिरा गांधी का लिया है। मैंने मेरी माँ का जो पोर्ट्रेट्स हैं उसमें इन इन सब लोगों को नाम जुड़ता है।
0: जी
1: तो पिता, और वो बहुत पिताजी के साथ बहुत ही उनका एकदम बहुत सुंदर रिश्ता था,
0: जी
1: बहुत सुंदर रिश्ता था।
0: क्या नाम था आपकी माँ का?
1: मेरी माता का नाम था मनोबीना रॉय।
0: जी,
1: जी
0: तो वो एक बहुत बड़ी फोटोग्राफर थी और उनका एक
1: हाँ
0: व्यक्तित्व था। आपके और भाई बहन भी हैं जो
1: जी
0: उनके बारे में भी हम जानना
1: हाँ, मैं
0: चाहेंगे।
1: सबसे बड़ी हूँ। मैं बाद में दो सिस्टर्स हैं और एक भाई है जॉय, जो अभी देखभाल करता है अपना, मेरा पिताजी का जो लेगेसी है उसके साथ हम लोग सब सभी मिलकर काम करते हैं एक साथ।
0: जी। तो रिंकी जी, आपको पहली बार उनकी फिल्मों से जुड़ना आपका कैसे हुआ? किस तरह से आप उनकी फिल्मों से जुड़ी? क्या बचपन में आप अपने पिता के साथ उनकी फिल्में देखने जाया करती थी, या उनकी जो फिल्म बनाने की प्रक्रिया थी उनसे वाकिफ थी, या उनके साथ जाया करती थी, ऐसा कुछ हुआ
1: नहीं,
0: कभी?
1: पिताजी हमेशा पिताजी का एक कोशिश ये रहता था कि वो फिल्मी दुनिया से हम लोग को अलग रखे। और
0: अच्छा।
1: हम कभी हमको अगर बुलाते थे शूटिंग देखने के लिए तो कोई गाना वाना शूट होता है तो हमको बुलाते थे, जो बच्चों को जो अच्छा लगता है उसके लिए बुलाते थे, नहीं तो हम कभी स्टूडियो में जाते ही नहीं थे। उनका अलग ही था कि वो दोनों दोनों जो दुनिया है ना, फिल्म का दुनिया और घर का दुनिया अलग था हमारे घर
0: जी
1: में।
0: जी
1: और वो बहुत एडुकेशनिस्ट थे पिताजी। मैं तो बॉम्बे चली आई, मेरा तब 9-10 साल होगा, तो लेकिन उन्होंने ऐसे कोशिश किया कि मैं बंगला सीखूं, क्योंकि मेरा मातृभाषा बंगाली है।
0: जी
1: तो उन्होंने मेरे लिए सब बंगाली किताब मंगाते थे घर कलकत्ता से, और हमको देखते थे कि हम करते हैं कि नहीं। उनका उत्साह था कि हम बंगला सीखें, बंगला बंगाली कल्चर को भी अपनाएं। ये सब उनका बहुत बहुत उनका देन ये है मेरे जिंदगी में, कि पिताजी के लिए मैंने ये सीखा है, नहीं तो मैं शायद नहीं तो करती थी।
0: पिता का प्रभाव बहुत ज्यादा
1: बहुत
0: रहा।
1: प्रभाव, हाँ
0: तो एक बेटी होने के नाते रिंकी भट्टाचार्य पर क्या प्रभाव था, कितना प्रेशर था, कितना दबाव था, तो आप क्या कहेंगी?
1: नहीं दबाव तो मैं नहीं कहूँगी, पिताजी का जो पूरा कल्चर था उससे हमने बहुत कुछ सीखा है, कि पिताजी को खाली घर के लिए नहीं, पिताजी को इंडियन कल्चर से बहुत प्राउड थे वो। इंडियन कल्चर,
0: जी
1: कोई भी
0: जी
1: कल्चरल कोई भी कल्चरली होता था, वो नेहरू को जानते थे पर्सनली, इंदिरा गांधी

0: को जानते थे पर्सनली,
1: जी
0: तो ऐसे जो जिंदगी जिसके ये होता है तो उनके लिए तो अलग ही होता है
1: बहुत
0: ना
1: एथिक्स
0: एटीट्यूड। हाँ,
1: थे उनकी।
0: उनका एटीट्यूड ही अलग था इन सबके बारे में, और हम लोग ने वही सीखा है पिताजी। वो बहुत जल्दी चले गए, पिताजी की उम्र बहुत कम था जब
1: जी
0: चले गए,
1: जी
0: तो इसीलिए उनका सबसे बड़ा फिल्म एक जो बनने वाला था वो नहीं बनी, और हमको इसका बहुत दुख है। और जो जो, जो लिखा था गुलजार लिख रहे थे उसको, तो उसका नाम था अमृत कुंभ।
1: अच्छा
0: अमृत कुंभ के ऊपर एक रियल लाइफ स्टोरी था,
1: जी
0: उसको उन्होंने लिया कि उसको वो था, लेकिन उसका शूटिंग करते करते पिताजी का ये हो गया, उस कैंसर में भुगते थे, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते थे। हाँ,
1: जी
0: उनका हाथ में हमेशा सिगरेट होता था, और उनका ये जो सामने का उंगलियां है ना उसमें से सिगरेट निकोटिन के दाग हो गया था इतना। हाँ, तो उससे उनको दुख भरी बात ये है कि
1: जी
0: उनको वो कोई हम नहीं छोड़ा सके उसको।
1: जी जी

0: बिमल रॉय एक महान फिल्मकार के रूप में उन्होंने इतनी कालजयी फिल्में हमें दी और गुरु के रूप में उन्होंने एक नई श्रृंखला बनाई, उनके जैसी फिल्मों का आगे निर्माण किया लोगों ने। तो एक फिल्मकार के रूप में या एक गुरु के रूप में आप क्या मानती हैं, वो किस तरह से रही होंगी?
1: पिताजी ने जो उनके उनके साथ जो जो काम किया, जैसे गुलजार है, ऋषिकेश मुखर्जी है, आशीष सेन है, इनको सबको उनका प्रभाव से बहुत उत्साहित किया था फिल्म बनाने के लिए, और उनको उत्साह देते थे और उनको चांस भी मिलता था कि हमारा प्रोडक्शन बिमल रॉय प्रोडक्शन में उनका फिल्म भी बनती थी। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि असली गुरु का हिसाब, जो गुरु गुरु दक्षिणा इनको देना चाहिए
0: जी,
1: सबको
0: जी। उनकी कालजयी फिल्में हैं जैसे दो बीघा जमीन है, देवदास है, परिणीता है, मधुमती है, सुजाता है, परख है और बंदिनी। इन मतलब एक एक फिल्म पर अगर हम चर्चा करें तो शायद कितने एपिसोड निकल सकते हैं, कितनी लंबी विस्तृत चर्चा हो सकती है।
1: जी,
0: तो रिंकी भट्टाचार्य उस उम्र में उन फिल्मों को देखकर क्या सोचती थी?
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी,
1: सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से,
0: बिल्कुल
1: हाँ। तो इसलिए ना पिता खाली दो बीघा जमीन को लिखा था सलील चौधरी ने, तो वो फिल्म के लिए लिखा था, पिताजी के लिए लिखे थे। तो उसको जो फिल्म बनाए पिताजी, उसका कोई लिटरेरी वर्शन नहीं था,
0: नहीं था जी।
1: हाँ, उनको लिखा था पिताजी के लिए सलील चौधरी ने, और उनको जो फिल्म है आज तो दो बीघा जमीन को सबसे बड़ा मान्यता मिलती है,
0: बिल्कुल
1: यहाँ यहाँ फॉरेन कंट्रीज में सब में दिखाया जा रहा है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो जब बात चली है दो बीघा जमीन की, तो कैसे इस महान फिल्म की रचना हुई होगी, किस तरह के घटनाक्रम में फिल्म बनी होगी उस जमाने में?
1: ये मुझे कभी कभी लगता है कि दो बीघा जमीन तो से उनका जिंदगी इसका बहुत असर है
0: जी,
1: क्योंकि पिताजी भी जब छोटे थे उनको घर से उनका जो जमीन था ईस्ट बंगाल, हम लोग ईस्ट बंगाल के हैं ढाका के,
0: जी
1: तो वहाँ से उनको निकाला गया था। तो वो भूल वो उनका जो वो दर्द था, वो ट्रेजेडी था, हाँ, तो वो भूल नहीं सके थे। तो मुझे लगता है इससे दो बीघा जमीन में और बहुत बहुत इंटेंसिटी हो गया है। इसके लिए ना पिताजी के लिए वो जो वो दुर्घटना थी कि उनको घर से निकाला गया था,
0: जी
1: वो
0: जी
1: भूल नहीं पाए कभी भी। हमेशा चाहते थे कि जाएं, हम जब ईस्ट बंगाल चलेंगे सोचते थे कि हम जाएंगे वहाँ पे। तो उसका वो ट्रेजेडी जो था वो जिंदगी भर उन्होंने उसका ये किया
0: मन
1: है,
0: में रहा
1: वहाँ मन में रहा।
0: और उसी पीड़ा का परिणाम दो बीघा जमीन के रूप में उतरा।
1: जी जी
0: जी, तो जब हम उस फिल्म को देखते हैं तो बलराज साहनी और बिमल राय की जोड़ी ने जिस तरह से यथार्थ को पर्दे पर उतारा वो अद्भुत था। तो उस वक्त उस फिल्म की सफलता को घर में आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया होगा?
1: नहीं, हमारे घर में ऐसे सेलिब्रेशन कोई नहीं होते थे फिल्म विल्म को लेके, लेकिन पिताजी का ये जो दो बीघा जमीन है ना, ये मैं कहूँगी कि पिताजी का श्रेष्ठ है, लोग सोचते हैं, लेकिन मैं तो बोलूँगी सब फिल्म सुजाता, बंदिनी, सबको लेके जब लोग देखते हैं ना, तभी बोलते हैं कि कैसे कहाँ से आया स्टोरी, हाँ। उनको लिटरेचर पे बहुत ये था, बहुत वो ये थे प्रभावित थे लिटरेचर, बंगाली लिटरेचर के।
0: जी जी जी, तो फिल्म दो बीघा जमीन के जो शंभू की पीड़ा थी वो आज भी कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में व्याप्त है।
1: जरूर, मैं तो बोलूँगी ये बहुत सच बात है। हमने जो फिल्म दिखाई थी वेनिस फेस्टिवल में लास्ट ईयर, तो वहाँ सब लोग खड़े होते हैं, जैसे ही फिल्म खत्म हुई सब लोग रो रहे थे
0: जी,
1: इतना उसका प्रभाव था।
0: हाँ,
1: एक इंडियन फिल्म, कोई स्टार नहीं उसमें, हाँ, फिर भी वेनिस फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल में उसका क्या भूमिका थी तो मैं आपको बता ही नहीं सकते। आप वो देखने वाली एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं गई उनके साथ, वहाँ फेस्टिवल मैंने एक अटेंड किया, और हम लोग जब वापस आए तो मुझे बहुत बहुत बहुत मुझे प्राउड फील रहा कि इतना बड़ा काम हम लोगों ने किया है, हासिल किया है, बहुत बहुत ही बढ़िया बात है ये।
0: जी, तो रिंकी जी, जब बात दो बीघा जमीन की चल रही है तो क्यों ना इसी फिल्म का एक गीत हम सुन लें। आप बताएंगे कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: जो लोरी है जिसमें मीना कुमारी ने एक छोटा सा भूमिका किया है।
0: हाँ।

0: बहुत सुंदर लोरी है ये रिंकी जी, इस लोरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी आप?
1: जरूर मैं बताना चाहूंगी कि मीना कुमारी जो मेरे पिताजी के बहुत करीब थे
0: जी
1: और पिताजी उनको बहुत स्नेह करते थे,
0: जी
1: तो उन्होंने बोला कि दादा आपने फिल्म तो बनाई लेकिन मुझे आपने रोल नहीं दिया कुछ। तो पिताजी ने बोला कि उसमें तो तुम्हारे लिए लायक कोई रोल नहीं था,
0: हाँ।
1: लेकिन ठीक है हम एक गाना डालेंगे तो उसमें तुमको मैं ले लेती हूँ।
0: जी
1: तो इसीलिए मीना कुमारी ऑन स्क्रीन मीना कुमारी सिंगिंग द लोरी।
0: और ये लोरी
1: और
0: बहुत, हाँ आप बता
1: ये
0: रही
1: लोरी
0: थी।
1: बहुत हम लोग सब गए थे रिकॉर्डिंग के लिए
0: जी
1: कहाँ मुझे पता नहीं कौन सा स्टूडियो, शायद दादर में कोई स्टूडियो था, वहाँ बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हुए और ये लोरी का रिकॉर्डिंग हुआ 4 बजे सुबह
0: सुबह 4 बजे
1: सुबह 4 बजे रिकॉर्डिंग।
0: तो लता मंगेशकर की गाई हुई लोरी है ये, तो सुबह 4 बजे इसकी रिकॉर्डिंग हुई।
1: सुबह 4 बजे रिकॉर्डिंग
0: जी जी
1: और तब तक लता जी वहीं पे बैठी थी।
0: अच्छा,
1: नेचुरली
0: हाँ
1: उनका ही गाना है ना,
0: तो बहुत टेक रिटेक हुई होंगी मतलब?
1: नहीं नहीं बहुत टेक नहीं, वो तो एक स्पेशलिस्ट थी।
0: इस तरह के बहुत सारे गीत पर हम बात करेंगे। फिल्म देवदास पर हम आना चाहेंगे। एक ऐसी फिल्म है देवदास जो अमर हो गया ये किरदार।
1: और एक चीज, आप फर्स्ट टाइम साहिर लुधियानवी ने गाना लिखा था उसमें।
0: हाँ जी जी,
1: और एस डी बर्मन
0: साहब का संगीत है और इतना यूनिक संगीत है और गाने के बोल जो है आज भी मतलब
1: मुझे तो एक सीक्वेंस बहुत अच्छा लगता है, मितवा करके गाना है, गीत तो पसंद है और ऑन स्क्रीन मीना कुमारी बहुत सुंदर लग रही है
0: जी जी,
1: उनका जो ये है ना वो सीक्वेंस बहुत सुंदर है।
0: तो फिल्म देवदास की जैसे हमने बात की कि ये एक ऐसा कालजयी फिल्म और एक ये जो पात्र है ये भी अमर हो गया, और क्या उस वक्त जब ये फिल्म बनाई गई थी तो क्या ये सोचकर बनाई गई थी कि ये प्रेम और विरह की कहानी है, आप क्या सोचती हैं?
1: नहीं, देवदास का क्या है, फर्स्ट देवदास जब बनी थी पिताजी उसके कैमरामैन थे।
0: अच्छा,
1: हाँ बड़ुआ के देवदास का।
0: जब केएल सहगल साहब जिसमें
1: केएल सहगल थे, पिताजी उसका मेन ये थे, कैमरामैन थे।
0: अच्छा,
1: तो उनको तब से उनको लगता है, और पिताजी का सबसे मुझे अजीब लगता है कि पिताजी तो घर में हमारे घर में दारू शारू का कुछ ये ही नहीं था, लेकिन पिताजी ने फिल्म बनाई एक पियक कड़के ऊपर। लेकिन ये आज भी देवदास के लिए लोग बोलते हैं कि कितना अच्छा, और गाने भी बहुत सुंदर,
0: बहुत शानदार,
1: बहुत सुंदर गाने हैं।
0: हालांकि देवदास के आज तो कई फिल्मी संस्करण निकल गए, कई फिल्में कितनी बार बन चुकी है, लेकिन बिमल रॉय की जो देवदास है वो आज भी बिल्कुल अलग लगती है।
1: जी मैं आपसे बहुत सहमत हूँ इसके बारे में।
0: बिल्कुल, तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए कि क्या बिमल रॉय ऐसा मानते थे कि उस वक्त सिनेमा समाज को बदल सकता है? आप उस वक्त कितनी उम्र की थी और आपने क्या समझा होगा, क्या जाना होगा उस वक्त?
1: मेरा उम्र तो कुछ ज्यादा नहीं था तब, 15 साल की थी। तो जब देवदास बनी, देवदास का जो ये खास बात मुझे बोलना है कि देवदास के पारो का अभिनय जो है सुचित्रा सेन
0: जी,
1: उसको पिताजी ने पहले रिजेक्ट कर दिया था।
0: अच्छा।
1: दूसरा, हाँ वो आई थी, वो हमारे घर की बहू समझा जाती थी, उनका शादी हुआ था।

0: हमारे घर में।
1: जी
0: तो जब एक दफे वो उनको फिल्म में उतरना था तो पिताजी के पास सबसे पहले आए, तो पिताजी ने बोला तुम घर की बहू हो, तुम कैसे फिल्म में काम करोगे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसी को पिताजी ने बुलाया देवदास के लिए, तो हम लोग
1: जी
0: बहुत हंसते थे कि पिताजी
1: हाँ
0: को और फिर से दोबारा उनको बुलाना पड़ा, क्योंकि उससे बढ़िया तो कोई नहीं। पारो
1: हाँ
0: का ये जो किया
1: जो
0: था,
1: अभिनय था
0: हाँ
1: वो कोई और कर ही नहीं
0: नहीं
1: सकता था,
0: कोई
1: ऐसा
0: नहीं
1: बिमल रॉय साहब का
0: कोई
1: मानना
0: कर नहीं
1: था।
0: सकता था।
1: और वो अद्भुत सुंदर लगी हैं उसमें, और ये
0: हाँ
1: पात्र कितना जीवंत हो गया, पारो की भूमिका कितनी मतलब कालजयी एक भूमिका हो गई है, आज
0: जी
1: भी याद की जाती
0: जी
1: है।
0: जी
1: जी, लोगों का रिएक्शन क्या रहा होगा उस वक्त देवदास फिल्म को देखने के
0: नहीं
1: बाद?
0: लोग लोग तो एकदम पूरा हाउसफुल जाता था, पूरा हाउसफुल जाता था। लेकिन मेरा हिसाब से कि पिताजी का देवदास जो इतना बड़ा बना है, क्योंकि उससे पिताजी उसको समझते थे, वो सामाजिक जब ये है ना समस्या
1: जो
0: है,
1: व्यवस्थाएं थी उस
0: हाँ
1: वक्त।
0: उनको
1: हाँ
0: समझते थे, इसीलिए उसका इतना प्रभाव आज भी है। आज भी कोई मैं तो आज भी देवदास देखने में मुझे डर लगता है कि इतना इसका इसका जो ये है ना माहौल जो है वो बहुत बहुत एक इम्प्रेस करता है बहुत
1: जी
0: ज़्यादा।
1: जी
0: और आई थिंक मुझे लगता है कि वैजयंती माला भी जस्ट उसके पहले बंद होते किया था उन्होंने, क्योंकि वो डांसर भी थे ना, इसलिए उसमें देवदास में डांस तो है, इसीलिए
1: बहुत सुंदर है।
0: बहुत। हाँ
1: तो इस फिल्म को जब निर्माण किया जा रहा था, इस फिल्म का जब निर्देशन कर रहे थे बिमल रॉय, तो उनकी दिनचर्या क्या रहती थी, और आप परिवार वालों की दिनचर्या क्या उस वक्त थोड़ी बदल जाती थी?
0: नहीं, पिताजी जो काम करते काम काम को अलग ही रखते थे वो घर से, हमारा घरेलू जो ये है ना
1: वो अलग था।
0: अलग था एकदम, और काम का ये बहुत ही अलग था, तो कभी नहीं मिक्स करते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। पिताजी बहुत डिसिप्लिन थे एज ए डायरेक्टर, और फिल्मी दुनिया में तो ऐसा इतना डिसिप्लिन मैं देखा नहीं किसी को आज
1: जी
0: तक,
1: जी
0: कि इतना डिसिप्लिन थे, उनको कहाँ पे कब जाना है क्या करना है सब उनको बहुत पता था। हाँ तो इससे हमको हमारा भी बहुत प्रभाव हुआ कि हमको भी पिताजी का सब शायद समय बिताने को मिला। हाँ तो इसीलिए ना कि हमको कोई ये नहीं है, कोई कंप्लेन ही नहीं है कि देवदास बनाते थे या कोई बंदिनी बनाते थे। बंदिनी तो उनकी लास्ट फिल्म है, बंदिनी के बाद तो उनका बंद ही हो गया
1: जी
0: काम।
1: जी
0: हाँ तो ये बहुत बहुत अहम बात है कि पिताजी कभी दोनों को मिक्स नहीं करते थे।
1: जी तो आप लोग क्या फिल्म हॉल में जाकर इस फिल्म को देखा था?
0: नहीं जाते थे देखते थे, हम लोग हॉल में भी जाते थे, लेकिन जो एडल्ट फिल्म है जैसे देवदास तो एक एडल्ट फिल्म है, तो
1: जी
0: देवदास के लिए हमारा हम लोग को जाना ठीक नहीं लगता था, तो पिताजी ने हमको देवदास हमने हॉल में कभी नहीं देखा।
1: अच्छा।
0: हाँ उसमें एडल्ट सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन मैं बोलती हूँ कि उसका स्टोरी का तो
1: जी
0: एडल्ट
1: जी
0: उसका एडल्ट इंटरप्रिटेशन है, तो इसीलिए उनके लिए जो रिलीज हुई थी मुझे तो याद नहीं कि मैं हॉल में जाके कभी भी देवदास देखा, मैंने फर्स्ट देखा दूरदर्शन में।
1: अच्छा, दूरदर्शन में आपने ये फिल्म देखी
0: हाँ
1: होगी।
0: जी
1: तो इस फिल्म के गानों के बारे में तो हम क्या ही आपसे कहें, एस डी बर्मन साहब का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल हैं। कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी जो आपकी खास पसंद होगा?
0: मेरा खास पसंद है आगे तेरी मर्जी।
1: आगे तेरी मर्जी। जी बिल्कुल।
0: हाँ

0: आपके घर में बराबर पढ़ाई का माहौल रहता था,
1: एकदम
0: बच्चे घर में पढ़ाई करना
1: पूरा। पिताजी का ये भी था कि हमको ऑक्सफोर्ड में ले जाए पढ़ाए।
0: अच्छा।
1: हमको लेके भी गए थे लंदन
0: जी
1: दिखाने के लिए, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा कि हम परिवार से इतना दूर रहेंगे, इसलिए मैंने हाँ नहीं किया। नहीं तो आज मैं ऑक्सफोर्ड रिटर्न होती थी
0: जी,
1: अगर मैंने उनका इस पर
0: बात को माना था। घर से दूर जाना आपको पसंद नहीं था। तो घर में एक आपसी सब में एक तारतम्य था, सामंजस्य था, प्रेम की भावना, सब एक दूसरे से गूंथे हुए थे।
1: एकदम।
0: बहुत बड़ी बात होती है कि सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं और
1: फिल्मी दुनिया में
0: रहकर एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करना और मिलजुल कर रहना, विश्वास करना, सबसे बड़ी बात ये रही थी।
1: और हमारे सामने हम दूसरा फिल्मी दुनिया देखते थे, फिल्मी घर आना देखते थे। मुझे लगता था कि हमारा घर इतना अलग क्यों है, क्योंकि हमारे घर में कोई माहौल ऐसा नहीं था, कोई भी माहौल नहीं था कि हम लोग कुछ पढ़ा लिखा ये सब हमको उत्साह करना। पिताजी का बहुत अहम बात था, पिताजी बहुत मानते थे, ही वॉज एक्चुअली एजुकेशनिस्ट। आपने देखा है ना पिताजी, हमारे विमल रॉय में विमल रॉय फिल्म्स का जो लोगो है, कौन सा है आपको मालूम है? कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे।
0: जी जी,
1: बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जो ये है टावर है, हाँ। वो उनका फिल्म का ये है
0: लोगो,
1: तो ये भी कोई सोचने लायक बात है ना।
0: जी जी, हाँ। जब विमल रॉय की बात हो और सुजाता फिल्म की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम बात करते हैं सुजाता फिल्म की। आपको अपने पिता विमल रॉय की फिल्म जो है सुजाता के बारे में सबसे खास बात तो क्या लगती है?
1: जैसे मैंने बोला कि पिताजी तो लिटरेचर बेस्ड थे ना
0: जी,
1: हमेशा फिल्म बनाने के पहले वो सोचते थे कहाँ से लाए, बंगाली लिटरेचर से। सुजाता के बारे में मैं ये बताऊंगी, एक फेस्टिवल में मैं गई थी, फॉरेन फेस्टिवल, जहाँ पे सुजाता, पिताजी का सब फिल्म से उन्होंने सुजाता को चूज किया। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे यूरोप में कौन जात पात का कोई ये करेगा, लेकिन मैं एकदम बुद्धू बन गई सोच के। लोग बाहर आ रहे थे सब रोते रोते सुजाता देख के, उनको जो मदर डॉटर का जो है ना, मदर एंड डॉटर का जो ये है रिलेशनशिप है, उसको लेके वहाँ यूरोप में तो एकदम, और सब जो आए थे सबको सब रो रहे थे देख के। तो मुझे ये भी खुलासा मिला कि देखो ये भी हमने सोचा नहीं था पहले।
0: इस विषय को उठाने का, सुजाता फिल्म को बनाने के पीछे क्या विचार रहे होंगे आपके पिता के?
1: ये तो मैं नहीं कह सकती, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन चूज किया उन्होंने, जरूर अच्छा लगा होगा इसीलिए चूज किया है।
0: उस समय बहुत बड़ी समस्या थी, आज भी ये समस्या है, लेकिन उस वक्त इसको उठाना, इस विषय को, बहुत ही बोल्ड विषय था और बहुत ही निर्भीक होकर उन्होंने इस बात को आवाज दी कि किस तरह से माँ और बेटी की किरदार को जीवंत किया। और इस फिल्म में उन्होंने नूतन को चुना, इसके पीछे क्या कुछ खास कारण?
1: नूतन पिताजी के सबसे फेवरेट एक्ट्रेस थे
0: जी।
1: नूतन की जो खास फिल्म है सुजाता और बंदिनी, तो पिताजी ने जब बंदिनी पिताजी ने सोचा बनाने का, तो वो नूतन को साइन करने को गए। तो नूतन ने बोला, दादा मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छा लगा, लेकिन शायद मैं आपके साथ नहीं कर सकूंगी। तो पिताजी ने बोला कि

0: क्या बात है।
1: जी
0: तो बोले हम प्रेग्नेंट हैं, तो मैं अभी कैसे, मैं प्रेग्नेंट तो मैं फिल्म में काम नहीं करूँगी। तो पिताजी ने बोला कि तब मैं नहीं बना सकूँगी बंदिनी। तो उनका हस्बैंड जो थे उन्होंने उनको उत्साह दिया, बोला विमल दा आप जरा जल्दी जल्दी शूटिंग कर लीजिए तो फिर नूतन आपके साथ काम करेंगे। तो वही हुआ बात।
1: जी जी
0: शी वॉज प्रेग्नेंट मैं शी वॉज शूटिंग बंदिनी।
1: जी और उन्होंने क्या लाजवाब अभिनय किया है, अद्भुत अभिनय किया। और उसके बाद तो वो मतलब महान अभिनेत्रियों की एक लाइन में खड़ी हो गई। आप लोग गए इस फिल्म को देखने फिल्मी पर्दे पर?
0: हम लोग गए थे हॉल में देखने के लिए, मुझे याद है यहाँ पे जो ओपेरा हाउस है ना,
1: जी
0: ओपेरा हाउस में रिलीज हुई थी और सिल्वर जुबली किया था उसे।
1: तो चलिए इस फिल्म का कोई गीत सुन लिया जाए,
0: हाँ
1: बताइए।
0: श्योर जरूर।
1: चलिए तो फिल्म सुजाता का एक गीत सुनते हैं।
0: हाँ

0: जी कि अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर कितने जागरूक थे, क्या उनकी फिल्मों में गीत और संगीत भी उतना ही मायने रखता था जितनी फिल्म की कहानी या फिल्म का किरदार?
1: ऑफ कोर्स जरूर, क्योंकि पिताजी ने जो पिक्चराइजेशन किया है गाने को, जैसे मुझे तो अभी तक कोई इतना ये नहीं लगता है कि कोई दूसरा डायरेक्टर इतना ये करता है, मायने रखता है। बहुत ही अच्छा उन्होंने पिताजी का गाने गाने पिक्चराइजेशन एक स्पेशल ये था, उनका टैलेंट था।
0: उनकी पसंदीदा गायिका लता मंगेशकर और
1: हाँ
0: ये सभी रहे।
1: था, उनके पसंदीदा जो थे ना वो
0: संगीतकार भी एस जी बर्मन और सलील चौधरी साहब।
1: संगीतकार सलील चौधरी, एस जी बर्मन।
0: बहुत सारी फिल्में, ज्यादातर फिल्में सलील चौधरी साहब ने उनकी
1: हाँ,
0: जो है संगीत में ढाली हैं, और एस जी बर्मन साहब का तो खैर संगीत हम सुन ही रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म बंदिनी का जिक्र हम आपसे सुनना चाहते हैं। जब फिल्म बंदिनी उन्होंने बनाई तो आप क्या कहना चाहेंगी, फिल्म कैसे बनी और इस फिल्म की कोई शुरुआत कैसे हुई होगी, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने जब सुना कि पिताजी इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं, वो एक इससे था, एक लिटरी बंगाली लिटरेचर से था,
0: जी
1: तो मैंने जाके मैं उसको रीड किया पहले।
0: अच्छा,
1: हाँ, मुझे
0: इस कहानी को,
1: उस कहानी
0: उस
1: को,
0: किताब को।
1: उसकी कहानी को, तो मुझे लगा कि हाँ इससे अच्छा बढ़िया बन जाता है। ये कल्याणी का स्टोरी है, वो जो है ना, जो लिटरेरी जो ये है वो लिखा है जरा संध करके, जिनका नाम था जरा संध, पेन नेम। हाँ, तो उन्होंने लिखा था, तो उनको जो ये स्टोरीज कलेक्शन था उसमें कल्याणी का स्टोरी पिताजी ने चूज किया था।
0: तो उस वक्त तो उनको ये फिल्म बनाने का विचार इसीलिए आया क्योंकि उस समय एक एक कहानी थी, घटना थी। तो
1: हाँ,
0: आपके पिता जब कलाकारों के साथ काम करते थे तो उनके काम करने की प्रक्रिया क्या रहती होगी, कलाकारों के साथ क्या संबंध रहते होंगे, किस तरह का व्यवहार रहता होगा, किस तरह से समझाना होता होगा एक डायरेक्टर के तौर पर?
1: पिताजी कभी भी एक्टिंग नहीं दिखाते थे किसी को।
0: अच्छा,
1: जैसे राज कपूर है ना,
0: हाँ,
1: राज कपूर हर भूमिका को एक्टिंग करके अपना स्टार को दिखाता है। पिताजी ने बहुत बहुत डिस्टेंस से उनको ये था। उनका एक डायलॉग राइटर था जो बहुत हिंदी एंड बंगाली जो जानता था, उनको पिताजी ने बताया था कि तुम जाके बोलो एक्ट्रेस को, इस नूतन का है तो इतना इतना ये करे, हाँ ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो वो डिस्टेंस से करते थे, वो कभी एक्टिंग नहीं दिखाता था।
0: जी, तो बंदिनी फिल्म की जो कल्याणी किरदार था नूतन जी का, तो बिमल रॉय ने जिस गहराई से इसे पिरोया ये बहुत लाजवाब था।
1: हाँ, ऐसा हुआ कि गुलजार प्रोडक्शन में था, बिमल रॉय प्रोडक्शन में ऐसे असिस्टेंट था, तो एक गाने का कहीं जरूरत हुआ तो शैलेंद्र नहीं लिख पाए उसको, तो गुलजार ने उसको लिख दिया, ओपनिंग सॉन्ग ऑफ बंदिनी, मोरा गोरा अंगलेरा।
0: जी
1: अच्छा, तो फिर मैंने पिताजी ने बोला कि तुम गाना भी लिखते हो क्या, तो उन्होंने बोला ऐसे हाँ लिखता हूँ कभी कभी दादा, तो बोले अच्छा तुम एक काम करो, तो अभी उस सब जहाँ वो काम करते थे मैकेनिक गैराज, गाड़ी का गैराज में, तो बोले तुम गाड़ी का गाड़ी वो सब छोड़ो, तुम आ जाओ हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन में, तुम गाना लिखोगे। तो गुलजार का फर्स्ट गाना पिताजी हमारे प्रोडक्शन में था, हाँ वो था नॉट मोरा गोरा अंगले,
0: जी
1: वो गाना का रिकॉर्डिंग उन्होंने किया फिर है, दैट इज हिज फर्स्ट सॉन्ग फॉर विमल रॉय प्रोडक्शंस।
0: जी
1: हाँ, पिताजी का बोलने पर वो फिर वो छोड़ भी दिए, फिर एकदम एकदम से ज्वाइन कर लिए।
0: चलिए, तो बंदिनी फिल्म का गीत हम सुन लेते हैं।

0: मैंने जब ये चूज़ किया स्टोरी कल्याणी की स्टोरी बांधने के लिए, तब मैं पढ़ने को गई तो मुझे मुझे भी लगा कि हाँ ये बहुत अहम बात है कि ऐसा कोई एक स्टोरी है जिसमें किसी ने जेल से आके लिखा है, उसका केस, एक केस हिस्ट्री था ये, रियल केस हिस्ट्री। हाँ, तो इसीलिए बहुत इसका बहुत माने रखता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उस वक्त ये एक बहुत सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बनाई गई थी। तो वही हम मधुमति के बारे में भी बस यही जानना चाह रहे थे कि पुनर्जन्म से संबंधित ये फिल्म थी।
0: मधुमति का अलग ही बात है, क्योंकि मधुमति का जो मधुमति लिखा गया था खाली पिताजी को प्रोडक्शन के लिए लिखा गया था, वो कोई लिटरेरी नहीं था।
1: जी बिल्कुल,
0: उसको क्लेम करते हैं ऋतिक घटन ने लिखा था, पता नहीं, लेकिन वो लिखा था पिताजी के लिए।
1: लेकिन वो बहुत उस जमाने की सुपर डुपर हिट फिल्म थी।
0: वो तो है, बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, बिकॉज ऑफ ऑल द कास्टिंग, दिलीप कुमार, वैजयंती माला, प्राण, बहुत बढ़िया। ये पिताजी ऐसे बनाए थे क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हाउस तभी फाइनेंशियली थोड़ा डाउन था, तो किसी ने बोलता है कि दादा आप इतना फिल्म बना रहे हैं लेकिन आप प्रोडक्शन का नहीं देख रहे, तो प्रोडक्शन ये हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि आप इतना खर्चा, पिताजी खर्चे का देख नहीं थे, देख भी नहीं थे कि क्या था। तो जब उन्होंने बोला तो पिताजी ने बोला से ठीक है, मैं ऐसा फिल्म बनाऊंगा जिसमें सब कुछ है, कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, गाने हैं, डांस है, सब कुछ है, विलेन, हीरो, हीरोइन, हाँ
1: वो सब था जो एक फिल्म में होना चाहिए,
0: वो जो था वो सब फिल्म में होना चाहिए। तो मधुमति उसी हिसाब से बना गया
1: जी। तो वो जो गाने पूरे इतने सुपर डुपर हिट हुए, घर घर में वो गाने बजने लगे, क्या आपके घर में भी रेडियो था उस वक्त? आप गीत संगीत तो सुन सकते थे, ये माहौल तो था घर में। तो चलिए हमारे श्रोता उन्हें गीत हम सुना देते हैं, आप कहें।

0: बहुत ही सुंदर गीत हमने सुने। और रिंकी जी, आप उनकी बड़ी पुत्री हैं, आपने पिता को बचपन से फिल्मकार के रूप में देखा है, फिल्में बनाते हुए देखा है, एक पुत्री होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, इस विरासत को आप किस ढंग से संभाल रही हैं आज तक?
1: मैं इस तरह से संभाल रही हूँ कि मेरे पिताजी का जो फिल्म है उसको रीइशू
0: जी,
1: उसको रिस्टोर करना, तो मैंने काफी एक यहाँ पे है रिस्टोर कर रहे हैं, तो हमने 4 फिल्में तो अभी रिस्टोर करने के लिए दे दिया है, वो भी अभी न्यू DVD बन के आ जाएगी अभी। तो हो गया है 4 फिल्म की
0: जी
1: बात है।
0: कौन कौन सी फिल्में हैं वो?
1: मधुमती, देवदास
0: जी,
1: बंदिनी और 2 बीघे जमीन
0: जी,
1: ये 4। इधर है एक जो रिस्टोरर है शिवेंद्र डूंगरपुर करके,
0: अच्छा,
1: तो शिवेंद्र ने इसको किया है, रिस्टोर किया है 4 फिल्में। नेक्स्ट ईयर समटाइम ये सब फिर से दोबारा आ जाएगी, DVD नया DVD आ जाएगी।
0: अच्छा,
1: सबके सब। हाँ
0: जी, बहुत बड़ी एक इस विरासत को आपने संभाला है और इसे जीवंत बनाए रखा है आज तक। तो रिंकी जी, आपको अपने पिता की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी?
1: ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है
0: जी।
1: मुझे तो अभी भी मधुमती देख, कभी भी मैं देखती हूँ ना मधुमती, तो मुझे लगता है कि देखते ही रहूँ, यू नो, इतना उसका असर है, और एकदम मैं ऑडियंस ही बन जाती हूँ। हाँ, ये तो मधुमती के साथ है। दो बीघे जमीन देखने को थोड़ा कष्ट होता है क्योंकि ट्रेजिक है। हाँ, लेकिन जैसे ये दोनों फिल्म तो मुझे बहुत पसंद है, मधुमती और दो बीघे जमीन दोनों।
0: हाँ, तभी आपको लगा कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलती और आगे चलकर एक बहुत बड़ी फिल्मकार बनती और बहुत सारी फिल्मों का निर्माण या निर्देशन करती जैसे मेरे पिता ने उस वक्त किया?
1: नहीं, ये कभी नहीं आया, बल्कि मैंने सोचा ही नहीं था कि हम फिल्म बनाएंगे, इसीलिए इसी डर से कि मेरे को कोई कंपेयर करेगा पिताजी से।
0: अच्छा।
1: इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं बनाना है फिल्म, और जो बनी है वो एक्सीडेंटली बन गई है
0: जी। तो उन फिल्मों के बारे में आप हमें बताइए जो जो आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है आपने।
1: मैंने दो ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, एक है डोमेस्टिक वायलेंस पे, क्योंकि मैंने औरतों के साथ बहुत सारा काम किया है NGO के साथ
0: जी,
1: तो उसको बनाया है बिहाइंड क्लोज डोर्स करके, और बस ये एक फिल्म है मैं जिसके बारे में बोलना चाहूंगी
0: जी,
1: कि बिहाइंड क्लोज डोर्स है, वो वेरी बिग डॉक्यूमेंट्री, वो फेस्टिवल्स में भी गई है और इसको लेके लोग देखते भी हैं, अभी भी देखते हैं, DVD में है वो।
0: इस फिल्म में जो महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है उसके बारे में आपने काफी, और आपने बहुत सारी महिलाओं के साथ काम किया है, काफी लंबे समय तक आप सोशल वर्कर के रूप में काम करती रही हैं, बहुत सारी किताबों का लेखन भी किया है, तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे आपकी किताबें कौन कौन सी थी, आपने किन किन विषयों पर ये किताबें लिखी?
1: मैंने ज्यादातर किताबें लिखी और वुमेन्स इश्यूज को लेके, और दो एक पिताजी पे लिखे हैं, दो एक मेरे पास दो किताबें हैं, जो एक तो है मधुमती, खास मधुमती का क्या क्या

0: हुआ था, कैसे हुआ था, उसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी है,
1: जी
0: वो पब्लिश हुआ है। और एक किताब है जिसके डोमेस्टिक वायलेंस के बोला ना मैं, बिहाइंड क्लोज डोर, ये दोनों बहुत खास है।
1: इनका रिएक्शन आपको कैसा मिला जब ये किताबें दुनिया के समक्ष गई, लोगों की और खासतौर से महिलाओं का?
0: बहुत अच्छा, इट इज़ वेरी बिग, ये लोग पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन भी हो जाए इसका
1: जी, कई
0: हिंदी,
1: भाषाओं में।
0: हाँ कई भाषाओं में ट्रांसलेशन हो जाए।
1: आपको कहीं ना कहीं ये दबाव रहता होगा कि पिता से कंपेयर करेंगे, तो क्या ऐसी मानसिक स्थिति में भी आप दबाव में रही?
0: नहीं, मैं दबाव में नहीं थी, मैंने बोला ना, इसीलिए मैंने कॉन्शियसली मैंने ऐसे किया कि मैं फिल्म नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लोग तो मुझे कंपेयर करेंगे ही ना पिताजी से, इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए फिल्में। तो एक डोमेस्टिक वायलेंस पे था, मुझे करना ही था, क्योंकि उसको लिए मेरे फंडिंग मिली, गवर्नमेंट फंडिंग,
1: अच्छा
0: हाँ, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड, तो
1: जी,
0: इसीलिए मुझे पैसा भी मिला था बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने बनाया। और नहीं तो मैं फिल्म के लिए मैं कुछ आग्रही नहीं थी इतना। मैं कॉन्शियसली पिताजी का जो आइडियल्स है, उनका जो ये है फिलोसफी है, उसको फॉलो करने का मैं कोशिश करती हूँ।

0: अगर आपको अपनी पूरी रचनात्मक यात्रा, जिसमें पत्रकारिता है, किताबें हैं, सिनेमा है और बिमल रॉय की विरासत है, को एक वाक्य में देखना हो तो आप क्या कहेंगे कि आप वास्तव में किसकी आवाज दर्ज कर रही हैं? फिल्म की, स्त्रियों की, परिवार की, या उन लोगों की जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है?
1: आपने जो कहा ये बहुत सही बात है, जो जिसका आवाज दबा दिया गया है ना, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट देम, जो वॉइसलेस है उनके बारे में मैं, मेरा ये हमेशा कोशिश रहा कि मैं उसी को ये करूँ
0: जी। और उसमें आप लगी भी हैं आज भी, उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी आप लगातार अपनी इस यात्रा को बनाए हुए हैं।
1: जी।
0: रिंकी।

0: आचार्य जी, आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग मी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्मकार विमल रॉय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों के अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: उजाले उनकी याद।

0: मेरा सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
5: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
6: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता भगवान गणेश को नमन करते हुए हमने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की है इस गीत के साथ। फिल्म का नाम था दर्द का रिश्ता, आवाजें ए हरिहरन और साथियों की थी। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन।

आज का ये रंग तरंग कार्यक्रम गणपति बप्पा बोरिया मोरिया के नाम। कहते हैं जहाँ गणपति का स्मरण होता है वहाँ शुभता अपने आप चली आती है, और हर नई शुरुआत से पहले जिनका नाम लिया जाता है वे हैं हमारे प्रिय गणपति बप्पा। तो आइए भक्ति और श्रद्धा से भरे इस सफर में अब सुनते हैं कार्यक्रम का ही अगला गीत।

गाने वाले कलाकार हैं शंकर महादेवन और साथी। गीतकार और संगीतकार डॉक्टर विजय भावे। गणेश।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये आवाजें थी तृप्ति शाकिया और साथियों की। आपने इनकी आवाज में ये गणेश वंदना सुनी। आइए सुनते हैं अगला गीत।

समूह स्वरों में अभी आप सुन रहे थे ये स्तुति, गणेश स्तुति। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला भक्ति गीत। आवाजें हैं अभिजीत सावंत और राहुल वैद्य की।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाजों में अभी आपने ये गणपति वंदना सुनी। इसे चंद्रशेखर पांडे ने लिखा और धुन बनाई थी श्याम सागर ने। आइए सुनते हैं ये अगला भक्ति गीत, आवाजें जोनिता गांधी और साथियों की।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए अगला भक्ति गीत, आवाजें दिव्या कुमार और साथियों की। इसे मुकेश मिश्रा ने लिखा है और तर्ज बनाई है काशी कश्यप ने।

रंग तरंग कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर, सुरेश वाडेकर, शब्बीर कुमार और हेमलता की आवाजों में फिल्म मरते दम तक का ये गीत। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: इस गाने के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम गणपति बप्पा मोरिया को समर्पित था।
1: रंग तरंग,
0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। अच्छे स्वभाव और व्यवहार वाले लोगों की जगह इस दुनिया में प्राणवायु फैलाने वाले हरे वृक्षों जैसी होती है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल और दीपांजलि पटेल के साथ दीपक पटेल, टेकलाल पटेल जी लिखते हैं। विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। 19 अगस्त को सुनने को मिला नदी का सफर, हमें और हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए उमंग टीम को हम हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ज्ञान का खजाना है उमंग कार्यक्रम। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने लिखा है नमस्कार। ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत हमारी प्रिय हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों को जान सके जिनको सर्वसम्मति से पूरा विश्व ये मान्यता प्रदान करता है कि इन शब्दों की उत्पत्ति भारतीय है। जंगल, शैम्पू, पायजामा और अगले अंक में बंगला, खाकी, लूट, योग, गुरु शब्दों की मूल उत्पत्ति पर गहन साहित्यिक मालूमात हासिल हुई। कुछ दिनों पहले कुछ हिंदी शब्दों के अर्थ भी बताए गए थे, उसके लिए हम पूरी उमंग टीम का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल, बेंगलुरु से जगदम्बिका और हमसा वेनी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये और राधिका गजभिये, रेडमा डाल्टनगंज पलामू झारखंड से मिंटू दुबे, दिशानी दुबे, किसले और आनंद के साथ साथ प्रीति दुबे। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। हमारा पहला प्रश्न था, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है साथियों, साइकिल का आविष्कार जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल ड्राइस ने किया था। हमारा दूसरा प्रश्न था, महान पर्वतारोही

0: अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं। उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया। और हमने अगला प्रश्न पूछा था, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? इसका उत्तर है, उन्हें कुल 22 वर्षों का समय लगा। और हमारा अगला प्रश्न था, देश के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में शहीद हुए 3 युवा क्रांतिकारियों के नाम बताइए। उन शहीदों का नाम था बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। हमारा अंतिम प्रश्न था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का क्या नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का नाम था ठाकुरदास बंदोपाध्याय। तो ये थे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है बैंगनी जोजो। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम एक प्यारे डॉगी के बारे में बताता है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। पर क्यों, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम से।
1: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
2: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
2: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
1: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
2: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो पीला हूं।
2: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं।
4: गुब्बारे, गुब्बारे,
2: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो लाल हूं।
2: घास, घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, मैं तो हरी हूं।
1: बेचारा जोजो।
2: के किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
6: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
7: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए।
0: बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम मारिया मोंटेसरी। इस कार्यक्रम में विश्व की महान शिक्षाविद, चिंतक और शिक्षिका मादाम मारिया मोंटेसरी के जीवन और शैक्षिक जगत में उनके अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया है।
3: शिक्षा का उद्देश्य मात्र तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। ये कथन है 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का।
4: आज हम बात करेंगे एक महान विलक्षण स्त्री की, जिसने बाल मनों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा शास्त्र को एक नया आयाम दिया और शिक्षण प्रणाली में सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया।
3: उनका नाम है मारिया मोंटेसरी। वो इटालियन चिकित्सक और शिक्षाविद थी। मैडम मारिया मोंटेसरी को क्रिया प्रधान मनोवैज्ञानिक शिक्षण एवं खेल आधारित बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के विकास का श्रेय दिया जाता है।
4: उनका पूरा नाम था मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी।

0: मारिया का जन्म 31 अगस्त 1870 को चेरा वाले इटली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एलिसेंड्रो मोंटेसरी था, जो इतालवी सरकार के वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी थे।
1: उनकी माँ का नाम रेनिल्ड स्टोपानी था, जो बहुत ही सभ्रांत और सुशिक्षित घराने से आती थी। मारिया के जीवन पर उनकी विदुषी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो जीवन भर उनके साथ रहा।
0: जब वो मात्र 4 वर्ष की थी, उनका परिवार चेरा वाले से रोम आ गया। 6 वर्ष की आयु में मारिया ने स्थानीय राज्य पोषित विद्यालय में दाखिला लिया। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी।
1: उनके विद्यालय में सह शिक्षा थी। उन दिनों सामाजिक मान्यताओं के कारण ये स्वीकार करना आसान नहीं था कि लड़कियां लड़कों से अच्छा कर सकती हैं।
0: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 1886 में रेजियो इंस्टीट्यूटो टेक्निको लियोनार्डो दा विंची नामक तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने का मन बनाया। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण उन्हें बहुत हतोत्साहित किया गया
1: और आखिर आ ही गया 10 जुलाई 1896 का वो गौरवशाली दिन।
2: साथियों, आज का दिन रोम विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि मादाम मारिया टेक्ला आर्टेमिसिया मोंटेसरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करके इटली की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया। बधाई हो।
3: धन्यवाद।
0: बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। इटली की पहली महिला डॉक्टर, भाई वाह, कमाल है।
4: बहुत बहुत बधाई हो।
0: अठारह सौ 1897 में वो रोम विश्वविद्यालय के मनोरोग क्लिनिक द्वारा संचालित एक शोध कार्यक्रम में शामिल हुई और इस शोध कार्यक्रम के तहत वो रोम शहर और आसपास के पिछड़े इलाकों में बने बाल गृहों का दौरा करने लगी।
1: इन बाल गृहों में सामान्य बच्चों के साथ साथ आंशिक रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, लोकोमोटर बाधित और कुछ कुछ बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे भी शामिल थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके सोचने के तरीके में एक नया आयाम जोड़ दिया। एक दिन वो एक बाल गृह पहुंची। मिस्टर गैब्रियल उस बाल गृह की देखभाल करते थे।
5: आइए मारिया जी।
6: कैसे हो गैब्रियल? कैसा चल रहा है यहाँ? आप कुछ उदास लग रहे हो।
5: जी मैडम, अब आपको क्या बताऊं? मुझे तो लगता है कि इन दिव्यांग बच्चों की हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है।
6: और बुरी?
5: जी।
6: अब भला वो कैसे?
5: आज दोपहर के भोजन के बाद आप बच्चों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण कीजिएगा।
6: हाँ हाँ, जरूर।
5: जी
1: बच्चों की कक्षा का समय समाप्त हुआ और दोपहर के भोजन का समय हो गया। भोजन के बाद बच्चों को कुछ समय का अवकाश दिया जाता था। मारिया ने देखा कि भोजन के बाद कुछ बच्चों ने अपने बर्तनों को, भोजन की मेज की खुरदरी सतह को, खिड़कियों की जालियों को छूना और टटोलना शुरू किया।
7: देखा आपने मारिया जी, क्या ये असामान्य नहीं है? जब ये बच्चे छोटे थे तो इनकी इस तरह की गतिविधियां बहुत कम थी, लेकिन अब तो देखिए देखिए।

0: कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं, अभी वो सड़क की गिट्टियों से खेलेंगे। वो देखिए, वो बच्चा टूटी हुई दीवार से निकली ईंटों पर उंगलियां फेर रहा है। देखिए देखिए।
1: नहीं नहीं गैब्रियल, मुझे लगता है कि यह असामान्य नहीं है।
2: बाल गृह से बाहर आकर लौटते समय रास्ते में वो सोच रही थी,
3: शायद ये बच्चे चीजों को इसलिए बार बार छूते हैं क्योंकि उन्हें संवेदी उत्तेजना चाहिए, लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा करके शायद वो सीखना चाहते हैं, वो अवलोकन और निरीक्षण करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद इनके सीखने सिखाने का एक नया रास्ता मुझे मिल गया है।
4: उन्होंने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया और इस विषय पर अन्य शिक्षाविदों के विचार जाने। उन्होंने सीखने के प्रतिफल विषय पर जितना संभव हो सके पढ़ना शुरू किया और विशेष रूप से उन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरुआती फ्रांसीसी शिक्षाविद एवं बाल शिक्षा विशेषज्ञ एडवर्ड सेगुइन के अभूतपूर्व काम का 2 वर्षों तक गंभीर अध्ययन किया।
2: उन्होंने लोम्ब्रोसो और सर्गी जैसे विचारकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि की भी जानकारी प्राप्त की।
3: हाँ, मैंने अब महसूस कर लिया है कि इन बच्चों की बहुत सी समस्याओं का निदान चिकित्सा और दवा से अधिक शिक्षण विधि में निहित है। क्यों ना उनके लिए ऐसे खिलौनों और पाठ्यचर्या का विकास किया जाए जो उनकी संवेदना को उत्तेजित करे और उनमें उत्सुकता जगाए। खिलौनों को यदि एक समस्या की तरह उन्हें दे दिया जाए तो वो खिलौना ही उनका समाधान बन जाएगा।
2: बस फिर क्या था, उन्होंने बौद्धिक रूप से दिव्यांग और अन्य बाधित बच्चों की संवेदी धारणाओं और मोटर कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक उपकरण और खिलौने बनवाए, जिनमें ब्लॉक्स, छिद्रों वाला तख्ता, बीट्स, कंचे, माला, गीली मिट्टी, रंग, विभिन्न अलग अलग आकारों की खुरदरी आकृतियां, वाद्य यंत्र, लकड़ी के जोड़ने वाले ब्लॉक्स और पैटर्न्स वाले खेल मुख्य रूप से शामिल थे।
4: उन्होंने बाल गृहों के रखरखाव पर भी बहुत जोर दिया और सुनिश्चित किया कि इन गृहों के वातावरण को सुसज्जित और साफ सुथरा रखा जाए। दीवारों पर अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी समतल और खुरदरी आकृतियां बनाई जाएं। 6 जनवरी 1907 को कासा देई बम्बिनी यानी चिल्ड्रन हाउस खुला।
2: इन बाल गृहों में 3 से 8 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और शर्त ये थी कि बच्चों को साफ सुथरा बिना पुस्तकों के भेजा जाए। अब सीखने सिखाने के ये बाल गृह लोगों की उत्सुकता और आलोचना का केंद्र बन चुके थे। चाइल्डहुड हाउस के कुछ फर्नीचर ऐसे भी होते थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था, इससे मोटर ट्रेनिंग भी हो जाती थी।
4: एक दिन मारिया कक्षा में आई। नव सुसज्जित स्कूल का दृश्य ही अद्भुत था। हर बच्चा अपने अपने कार्य में लगा हुआ था, कोई ज्ञानेंद्रियों तो कोई कर्मेंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा था, कोई चित्र बना रहा था तो कोई कुछ और कर रहा था। सारा कक्ष रोचक गतिविधियों से भरा हुआ था।
2: उन्नीस सौ आठ की शरद ऋतु तक 5 बाल गृहों

0: का संचालन किया गया, 4 रोम में और 1 मिलान में। इन खेल आधारित बाल गृहों में आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने असाधारण प्रगति की और जल्द ही 5 साल के इन बच्चों ने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। मोंटेसरी के इस नए दृष्टिकोण की खबर सारे यूरोप में तेजी से फैल गई। शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और बच्चों के अभिभावक खुद ये देखने के लिए पहुंचे कि वो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम कैसे प्राप्त कर रहे हैं।
1: धन्यवाद डॉक्टर मारिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि मेरी बच्ची कभी नहीं सीख पाएगी, लेकिन अब वो लिखने और पढ़ने भी लगी है।
2: धन्यवाद
3: डॉक्टर मारिया, मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। वाह, मुझे धन्यवाद के शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपके पढ़ाने का तरीका कमाल है, बेमिसाल है।
2: धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने शिक्षा का कोई नया तरीका इजाद नहीं किया। मैंने तो बस कुछ छोटे बच्चों को उनके अनुसार जीने का मौका दिया है।
1: जी,
2: मैं सोचती हूँ कि यदि इसी खेल और अनुभव आधारित विधि का प्रयोग सामान्य बच्चों में भी किया जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे।
1: जी जी, धन्यवाद
2: धन्यवाद।
0: समावेशी शिक्षा की सफल शुरुआत शायद यहीं से होती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों के संदर्भ में सफलता मिलने पर मोंटेसरी ने इसी विधि का उपयोग सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी किया।
4: उनकी असाधारण सफलता को देखते हुए इटली की सरकार ने उन्हें बाल गृह संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मारिया मोंटेसरी ने बाल शिक्षा विषय पर अनगिनत लेख लिखे और एक पुस्तक भी लिखी, जिसे आज विश्व मोंटेसरी मेथड्स के नाम से जानता है।
0: 1939 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के निमंत्रण पर वो भारत आईं और देश भर में बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर व्याख्यान दिए। उन्होंने लगभग पूरे विश्व में जाकर मोंटेसरी शिक्षण विधि का प्रचार प्रसार किया।
4: आज पूरे विश्व में मोंटेसरी शिक्षण पद्धति पर आधारित अनगिनत विद्यालय हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित सीखने सिखाने के कार्य में जुटे हैं।
0: मोंटेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बच्चों का कार्य और ज्ञान में कुशलता प्राप्त करने के भाव को ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उनकी शिक्षण विधि के मूल स्तंभ हैं बच्चों की स्वतंत्रता, स्वशिक्षा, रोचक शिक्षण, संवेदी अनुभव, प्यार और सम्मान।
4: छह मई 1952 को इस महान शिक्षा शास्त्री का हॉलैंड में निधन हो गया। मारिया मोंटेसरी को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्हें फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा गया और दुनिया के कई महानतम विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। आधुनिक शोध भी उनके नवाचार और निष्कर्षों की मूलभूत भावना को मान्यता देता है।
0: विश्व शिक्षा के क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा।
5: चटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाए हम अक्षरों।

इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शनिवार, मंगलवार, गुरुवार शाम 6:50 से 7:20 तक।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अब आप सुनेंगे सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे वो गीत जो समय की सीमा से परे हैं और जिन्हें सुनकर आज भी हम थिरक उठते हैं। कार्यक्रम का आगाज करते हैं तीसरी कसम फिल्म के इसे गीत से, जिसे गाया है आशा भोसले ने, संगीत शंकर जयकिशन का, शब्द रचना शैलेंद्र की।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और कमल बरोट की आवाज में असद भोपाली के लिखे बोलों को, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आए दिन बहार के इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे गाया है आशा भोसले ने। बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
2: तुमने दी आवाज, दिलों में आ गया।
1: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्रेज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है किस्मत फिल्म से। आवाजें हैं आशा भोसले और शमशाद बेगम की, SH बिहारी के बोल, संगीत OP नैयर का।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने फिल्म शान का ये गीत सुना। इसे आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।

और ये है इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है पत्थर के फूल, आवाजें लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की।

इस युगलगान के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको फिल्मकार जीपी सिप्पी की फिल्मों से कुछ गीत सुनवाए।

तो प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी तो आज तो हमारे श्रोताओं ने हड़ताली का तीज, गणेश चतुर्थी और हिंदी दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं हमें भेजी है। आप सबको भी हमारी तरफ से इन सभी खास पर्वों की ढेरों शुभकामनाएं। हाँ, हमें उम्मीद है आज आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन ये भी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अपनी व्यस्तता के साथ साथ हमारे साथ इस सुरीला सफर पर भी आप निकलने के लिए तैयार हैं, क्यों है ना? चलिए तो आज के सफर में हम संगीत के लिए क्या लेकर जाने वाले हैं बताइए। जब सफर पर निकले हैं तो गीत तो गाएंगे ही, गीत सुनेंगे भी, लेकिन संगीत के लिए हमारे पास जरूरी नहीं कि सितार हो, तबला हो या बांसुरी ही हो। कभी कभी एक गिलास और एक चम्मच भी आपके गीत की धुन बना देते हैं। कभी घड़ी की टिक टिक, आपकी कदम ताल, आपकी चाल, आपकी हंसी, ट्रेन की छुक छुक, या जो पास पड़ोस में या आसपास में पेड़ पौधों की आवाजें हैं, पशु पक्षियों की आवाजें हैं, हवाओं की आवाजें हैं, वो भी हमारे संगीत का हिस्सा बन जाती हैं। तो आज के सुरीला सफर में सुनिए ऐसे ही कुछ गीत जहां आवाजें सिर्फ आवाजें नहीं रही बल्कि वे खुद संगीत बन गई है ना। तो हम तैयार हैं इस तरह के संगीत के लिए, क्यों आप भी तैयार हैं ना? तो आज की इबारत है हमारी कि क्या कभी आपने गौर किया कि कुछ गीतों में कभी घड़ी की टिक टिक, कभी किसी खेल की आवाज, कभी कदमों की आहट और कभी कोई साधारण सी ध्वनि भी उस गीत की धड़कन बन जाती है। फिल्मी गीतों के संगीतकारों ने अपनी कल्पनाशीलता से ऐसी ही आवाजों और बीट्स को गीत का हिस्सा बनाया और उन्हें संगीत में इस तरह ढाला कि वे उससे अलग महसूस ही नहीं होती, क्यों है ना? तो कहीं टिक टिक मेरा दिल बोले मैं आपको टिक टिक सुनाई देती है, तो कहीं ढल गया दिल में आपको रैकेट और शटल की आवाज गीत संगीत के साथ घुलकर एक अनोखा रंग भरती हुई दिखाई देती है, सुनाई देती है। यानी संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, कभी कभी वो हमारे आसपास की आवाजों में भी छुपा होता है। तो आज के सुरीला सफर में होगा ऐसे ही चुनिंदा गीतों का जिक्र जहां धुन के साथ साथ किसी खास आवाज को भी संगीत का हिस्सा बनाया गया उस संगीतकार के द्वारा जो गीतों को और भी यादगार बना गया। तो ये था हमारा आज का टेक्स्ट उन सभी लोगों के लिए जो हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि हमारे वो श्रोता जो फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं उन्होंने हमारे टेक्स्ट को पढ़कर बहुत सारे गीतों का जिक्र यहाँ पर किया है, क्योंकि हमने उन्हें दो उदाहरण ऐसे गीतों के दे दिए थे जहाँ वो इस बात से वाकिफ हो गए कि आज किस तरह के गीत हम इस कार्यक्रम में लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के बोल से, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम आराधना। आपको पता है इस गाने में हमें क्या सुनने को मिलने वाला है? ट्रेन की आवाज।

जी हाँ, इस गाने में राजेश खन्ना खुली जीप में चलते हैं और अभिनेत्री यानी शर्मिला टैगोर दार्जिलिंग की जो खूबसूरत टॉय ट्रेन है जो बहुत ही

प्रसिद्ध है, उसकी खिड़की से उन्हें देखती है। क्यों, याद है ना आपको ये सीन? और गाने की धुन और ताल कुछ इस तरह बनाई गई है जो टॉय ट्रेन की गति और उसकी पटरियों की आवाज के साथ बिल्कुल मेल खाती है, और पूरा गाना जो पर्वतीय वादियां हैं और चलती ट्रेन का जो सफर है उसका एहसास हमें इस पूरे गाने में मिलता है सुनने को, है ना? और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, लेकिन उससे पहले आपके संदेश आप तक पहुंचाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि संगीत केवल सुरों और शब्दों का नाम नहीं, वो तो हमारे आसपास बिखरी उन छोटी छोटी आवाजों में भी छुपा होता है जो अनायास ही मन के किसी कोने को छू जाती है। जब ये ध्वनियां किसी गीत का हिस्सा बनती हैं तो गीत केवल सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होने लगता है। शायद इसीलिए कुछ आवाजें कानों से नहीं सीधे दिल से सुनी जाती हैं। वे हमारे मन की स्थिति को बदल देती हैं। उदासी में उम्मीद, अकेलेपन में साथ और खामोशी में संवाद, तो कभी कोई मधुर आवाज बीते हुए प्रेम और यादों के दरवाजे भी खोल देती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी घड़ी की सुइयों की टिक-टिक, कभी मैदान में किसी खेल की गूंज, तो कभी सन्नाटे को चीरती कदमों की आहट, ये सब केवल ध्वनियां नहीं है बल्कि जीवन की लय हैं। भारतीय सिनेमा के जादुई दौर में फिल्मी गीतों के संगीतकारों ने अपनी अनूठी कल्पनाशीलता से इन्हीं साधारण आवाजों और बीट्स को गीतों का अहम हिस्सा बनाया। उन्होंने उन ध्वनियों को संगीत के ताने बाने में इस तरह पिरोया कि वे गीत में अलग महसूस ही नहीं होती बल्कि उनकी आत्मा बन जाती है। इन प्रयोगों से ये साफ होता है कि संगीत केवल बंद कमरों या स्टूडियो में तैयार नहीं होता बल्कि यह हमारे जीवन के हर हिस्से में सांस लेता है। कदमों की आहट से लेकर हवा की सरसराहट तक हर ध्वनि में एक लय है। जरूरत है तो बस संगीतकारों जैसी एक संवेदनशील सोच और पारखी कान की, जो शोर के बीच से भी एक सुरीली धुन को खींच लाए और उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दे। कितनी खूबसूरती से आपने अपनी बात रखी है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत फिल्म अलबेला से, जिसका जिक्र हमने अपनी इबारत में किया था। आवाजें लता मंगेशकर और चितलकर यानी सी रामचंद्र की, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, सी रामचंद्र का संगीत है। और इस गाने में क्या सुनाई देता है? हाँ, घड़ी की टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक, जो हमारे घर में भी हमें सुनाई देती है, और एक मधुर संगीत, खासतौर से रात के सन्नाटे में बहुत ही खूबसूरत संगीत हमें देती भी है ये घड़ी की टिक टिक।

लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजें थी, फिल्म का नाम था अलबेला। गाने के आरंभ में आपने घड़ियों की टिक टिक टिक टिक सुनी थी ना, सुनाई दी आपको। हाँ, कभी कभी इस संगीत को बहुत गहराई के साथ सुनना पड़ता है क्योंकि कुछ इफेक्ट्स बहुत ही हल्के से इस्तेमाल किए गए हैं। हाँ, कुछ का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है तो शायद उसे इतने गौर से सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ इफेक्ट्स बहुत ही गौर से सुनने पर पता चलते हैं कि हाँ, ये इफेक्ट हमने सुना। और अब दो सवाल हमेशा की तरह आपसे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद के वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। हो सकता है आप वाद्य यंत्र नहीं बजाते हो या नहीं शौक रखते हो, लेकिन फिर भी जब आप कोई गीत सुनते हैं, आपने कोई गीत सुना होगा तो आपको लगा होगा कि यहाँ सितार का प्रयोग बहुत अच्छा हुआ, तबले का प्रयोग हुआ, या गिटार बहुत अच्छा लगा, या जल तरंग बहुत अच्छा लगा, या जैसे कि आज हम विषय लेकर आए हैं कुछ ऐसे वाद्य यंत्र जो तबला, सितार, ढोलक इनसे अलग होकर बजाए जा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र आपको पसंद है, बांसुरी, हारमोनियम, जो आप बजाते भी हैं या पसंद करते हैं। कभी कभी ये होता है कि जब हम घर में गाना गाते हैं ना, या बाथरूम सिंगर बन जाते हैं, तो टीन, कनस्तर, बाल्टी, झाड़ू और भी न जाने क्या क्या चीजों को हम अपना वाद्य यंत्र बना लेते हैं, है ना। होता है ना ऐसा आपके साथ भी, कभी हुआ होगा जरूर। याद कीजिए वो दिन जब आपने टीन, कनस्तर, बाल्टी या किसी भी ऐसी चीज को, मेज को ही अपना वाद्य यंत्र बना लिया और गाना गाना शुरू कर दिया। और हमारा दूसरा सवाल कि आपको अपने आसपास की कौन सी ध्वनियां प्रभावित करती हैं, जो प्रकृति में हैं, या यूं कहूं कि ऐसी कौन सी ध्वनियां हैं जो आपको पसंद आती हैं या परेशान कर देती हैं। कम से कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को हम शामिल कर सकें उनके विचारों के साथ। और आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं। इस गाने में शंकर जयकिशन ने खास साउंड इफेक्ट्स का बहुत ही अनोखा और खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। आपने सुना है ना ये गीत, जब बिजली कड़कने की आवाज आती है तो वो सिर्फ एक इफेक्ट नहीं लगती, बल्कि गाने के जो शुरुआती बोल हैं जहां रफी साहब कहते हैं कि बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गई, और उसके साथ ही बिजली कड़कने की और तेज बारिश की आवाज आती है, और लगभग ये आवाज पूरे गाने में हमें महसूस होती भी है। तो आप भी महसूस कीजिए इस आवाज को।

0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम।

एक श्रोता ने लिखा है कि संगीत जो हमें एक दैवीय शक्ति से बांधता सा लगता है, जैसे ही किसी जंगल में आप प्रवेश करते हैं जंगल की आवाज अलग अलग संगीत पैदा करती है। नदियों के पानी में अलग संगीत होता है, कलकल का संगीत बहुत मीठी मीठी है संगीत बनने की कहानी। रात के बहते हुए खामोश दरिया में चांद की किरणें खिलती रहती हैं और मन के बियाबान तारों में कुछ धुन यूं ही बजने लगती है। जो कोई हुक हो जी मैं तो गूंज उठेंगे, ये विरही सुर कोशिशों साधे नहीं जाते। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है, आज गीत की धुन के साथ विविध आवाजें भी अपने अस्तित्व का परिचय करवाएंगी। इस अनोखी सुंदर थीम को आज गणपति बप्पा का आशीर्वाद भी है, गणराज रंगी नाच। तो इस मराठी गीत में बाल गणेश जी ने पैरों में पहनी यानी घुंघरू की रुनझुन रुनझुन, ये बेहद सुरीली आवाज दिल को मोह लेती है। और आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र भी किया है, हो सकता है आपकी पसंद हमारी आज की लिस्ट में शामिल हो। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बिल्कुल नवीन है लेकिन बहुत ही रोचक है। गीतों में संगीतकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोग, उनकी कल्पनाशीलता जिससे गीत शानदार हो गए। तरह तरह की बीट्स के प्रयोग ने गीत को कर्णप्रिय बना दिया है। ऐसे ही बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मुझे चिड़िया या कोई भी गीत में पक्षियों की आवाज बहुत प्यारी लगती है, जैसे कोयल बोली दिल कहे रुक जा रे रुक जा, पंछियों की आवाजें और चुन चुन करती आई चिड़िया, इस तरह की आवाजें इन्हें बहुत पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में सभी तरह के वाद्य यंत्रों के साथ ही आसपास मौजूद आवाज का प्रयोग कर गीतों की प्रस्तुति को लाजवाब बनाया गया है। पंख होते तो उड़ाती रे गीत में पंछी की मधुर आवाज के साथ पंछी की तरह उड़ते हुए पंख फैलाते हुए किया गया नृत्य बहुत ही आकर्षक भी लगता है। साथ ही संगीत का लाजवाब धुन आसपास के वातावरण को गुंजायमान भी कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सफर में आज गीतों में छुपे एहसास और दिल में भावों को जगाते हुए उन आवाज को सुनना, जैसे हवा की सरसराहट, दरवाजे की आवाजें, सांसों की धड़कन, कुछ मंदिरों की घंटियां, बांसुरी की, समुद्र की डरावनी लहरी, लहरों की आवाजें और धीरे धीरे गुनगुनाने की आवाजें, ये सभी आवाजें मन के हर भाव को जीवंत कर देती हैं। जीवन का सुख दुख, हंसना रोना, डरना सहम जाना आदि सभी नव रसों जो जीवन में समाहित है वो सभी हमारे साथ है और ये सभी हमें प्रभावित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इन गीतों के साथ हम भी खो जाते हैं उन खास संगीत की ओर जो हमारे संगीतकारों ने प्रयोग के तौर पर डाले होते हैं। जैसे कि अगला गीत हम सुनने वाले हैं फिल्म शोले से किशोर कुमार की आवाज में, और इनका साथ दे रही हैं हेमा मालिनी जब वो कहती हैं चल धन्नो। तो अब आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और राहुल देव बर्मन का संगीत है। इस गाने में आपको चाबुक की आवाज, घोड़े की टापों की आवाज, धर्मेंद्र के गिरने पर साइकिल की आवाज, साइकिल की घंटी की आवाज, बहुत सारे प्रयोग इस गीत में किए गए हैं और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी इन गीतों में ये सभी धुनें सुनाई देंगी।

जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब स्टेशन से गाड़ी छूट जाती है तो फिर 1 2 3 हो ही जाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको जाना है कहीं और आप भागते दौड़ते स्टेशन पहुंचे हैं और आपके सामने से ट्रेन निकल गई है? और वही हुआ जो इस गाने में कहा जा रहा है कि 1 2 3 हो जाती है। हमारे सवाल एक बार फिर से, हमने आपसे पूछा था कि आपकी पसंद के वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, जो रूटीन के वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि अगर आप हारमोनियम, तबला और बांसुरी, बहुत सारे माउथ ऑर्गन, सितार, गिटार, बांसुरी, क्या क्या पसंद करते हैं अगर आप बजाते हैं या बजाना पसंद करते हैं, संगीत के शौकीन हैं तो? लेकिन इसके अलावा कई बार हर आदमी अपने जीवन में जब कोई गाना गाना पसंद करता है, बाथरूम में, कमरे में, एकांत में, तो टीन कनस्तर जो हाथ में आता है, बाल्टी, झाड़ू, उसे भी वाद्य यंत्र बनाकर हम गाना गाने लगते हैं। भाई हमने तो ऐसा कई बार किया है कि टीन कनस्तर बजाकर ही ताल मिला ली है और गाना गा दिया है। तो आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। याद कीजिए उन पलों को, या आपके बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो वो बात हमें बताइए, कम से कम शब्दों में लेकिन रोचक तरीके से। और हाँ, जब बात चली है ध्वनियों की, तो आपको अपने आसपास की कौन सी ध्वनियाँ प्रभावित करती हैं, यानी कौन सी ध्वनियाँ जो पसंद आती हैं और कौन सी ध्वनियाँ आपको परेशान करती हैं आपके घर के आसपास की? हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज आपने बहुत ही खूबसूरत विषय उठाया है, संगीत में आवाजों की मौजूदगी को महसूस करने का। गीत की दुनिया में सुर और साज की अपनी खूबसूरती है, लेकिन कभी कभी कोई अनगढ़ सी जानी पहचानी आवाज भी गीत को ऐसी आत्मीयता दे जाती है कि वो बरसों तक दिल में बसी रहती है। कदमों की आहट हो, घोड़े की टाप हो, या रेल की चुक चुक, घड़ी की टिक टिक हो, या पायल की रुनझुन, जब ये ध्वनियां किसी धुन में शामिल होती हैं तो गीत सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। हर आवाज अपने साथ कोई दृश्य, कोई मौसम, कोई स्मृति ले आती है। संगीत केवल वाद्य यंत्रों से नहीं बनता, वो तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के शोर में भी कहीं चुपचाप सुर तलाशता रहता है। बस उसे पहचानने के लिए कान नहीं, एक संवेदनशील दिल चाहिए। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय सिनेमा के संगीतकारों की ये सबसे बड़ी खूबी रही है कि उन्होंने स्टूडियो की चारदीवारी से बाहर निकलकर हमारे दैनिक जीवन के शोर को सुर में तब्दील कर दिया। जब किसी गीत में कोई सहज आवाज, चाहे वो खेल की हो, रसोई की हो, किसी वस्तु

की वो शामिल होती है तो वो केवल एक धुन नहीं रहती बल्कि दृश्य को श्रोता के जहन में जीवंत कर देती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी शॉप रोड टच है तो पूरा दिन वाहनों की आवाजाही रहती है, तो आवाजें आती है, अच्छा भी लगता है। हमें रेडियो सुनने का शौक नहीं है तो पूरा दिन वाहनों की आवाज से हम तंग आ जाते हैं। और अच्छा, आपका कहना है कि आपके आसपास जो ये शोर आता है उससे आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल होते हैं, इस शोर से हम परेशान। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीत संगीत केवल सुरों का संगम नहीं बल्कि हमारे आसपास की जीवंत ध्वनियों का खूबसूरत विस्तार है। फिल्मों में संगीतकारों ने अपनी अद्भुत कल्पनाशीलता से घड़ी की टिक टिक, खेल के मैदान की हलचल या कदमों की आहट जैसी रोजमर्रा की आवाजों को धुनों में ऐसा पिरोया कि वे गीत की धड़कन बन गई। चाहे वो टिक टिक टिक मेरा दिल बोले हो या दिल की धड़कन बना हुआ कोई गीत, घड़ी की आवाज हो या ढल गया दिन, हो गई शाम में बैडमिंटन की रैकेट शटल की लय, ये ध्वनियां संगीत से अलग नहीं बल्कि उसका प्राण महसूस होती हैं। सच ये कि संगीत सिर्फ वाद्य यंत्रों से नहीं हमारे परिवेश की हर धड़कन में छुपा है, बस उसे महसूस करने वाले कान और सुनने वाले बुनने वाले दिल की जरूरत है। बहुत सुंदर इबारत हमारे श्रोताओं ने लिखी है, तो चलिए सुनते हैं ऐसा ही गीत जिसका जिक्र हमने भी अपनी इबारत में किया था और अभी अभी इन श्रोता ने भी किया है। फिल्म हमजोली का गीत है, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है और इस गीत में क्या है ये आप जानते हैं। रैकेट और शटल की आवाज, है ना, सुना है आपने कितने तरीके से संगीतकार ने इस गाने में इस धुन को पिरोया है।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि संगीत में साज तो कई तरह के होते हैं, लेकिन जब रोजमर्रा की कोई साधारण सी आवाज किसी गीत में ताल बन जाती है तो गीत यादगार बन जाते हैं। आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और वही बात आपने भी कही है कि पूरा दृश्य चलने लगता है और सच्ची धुनें बाहर से नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की रोजमर्रा की टिक टिक, चुक चुक और छम छम से ही छुपी होती है। बस उन्हें सुनने और महसूस करने के लिए एक संगीत प्रेमी दिल और दिमाग चाहिए होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि नित्य नवीन विषय निर्मात्री का नवीनतम अध्याय प्रशंसनीय, उल्लेखनीय और विचारणीय है। सुरीला सफर मंदाकिनी जी के निर्देशन में नई ऊर्जा से संचालित हो रहा है। नियमित श्रोताओं को स्फूर्तिवान रखने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। चित्र विचित्र वस्तुओं के ध्वनियों से गूंजती आज की सुरीला सफर का संगीतमय आनंद बना रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय हिंदी फिल्मों के संगीत में अलग अलग संगीतकारों ने पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों के अलावा दूसरी अलग अलग चीजों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को अपनी संगीत रचनाओं में इस तरह पिरोकर ऐसा तिलिस्म रचा जो कि कालजी रचनाओं में शामिल हो गया। आपने भी कुछ गानों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी ये पंक्तियां संगीत को देखने का एक बेहद जादुई और अलौकिक नजरिया देती हैं। ये इबारत हमें एहसास कराती है कि महान संगीतकार केवल वाद्य यंत्रों के मोहताज नहीं थे बल्कि वे हमारे आसपास बिखरी रोजमर्रा की आम आवाजों में भी संगीत ढूंढ लिया करते थे। घड़ी की सुइयों के टिक टिक को दिल की धड़कन बना लेना या खेल के मैदान की टुक टुक को धुन में ढाल देना उनकी अद्भुत कल्पनाशीलता और रचनात्मकता की पराकाष्ठा है। संगीत सिर्फ कानों से सुना नहीं जाता बल्कि वो हमारी जिंदगी की हर हलचल में छुपा होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि महान संगीतकार ओपी नैयर साहब ने अपने बनाए बहुत से गीतों में घोड़ों की टापों की आवाजों को शामिल किया और वो प्रयोग भी कामयाब रहा। और आर डी बर्मन साहब ने तो कंगी, टिन का डिब्बा, शीशे का गिलास, झाड़ू सभी बजाकर मधुर संगीत का निर्माण किया और वो भी सफल हुए। जितना हमें पता है वो सब आप सभी से साझा किया। अब देखना यह है कि आप अपने पिटारे में से कौन सी जानकारियां लेकर आती हैं। भाई हमारी भी जानकारी वही है जो आपकी है, लेकिन हाँ हम इधर से आप तक पहुंचा रहे हैं और आप उधर से हम तक पहुंचा रहे हैं। तो चलते हैं अगले गीत की ओर। मन्ना डे की आवाज, फिल्म का नाम सफर, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन और यहाँ पर आपने देखा होगा चप्पू की आवाज आती है, पानी की आवाज, किस तरह से नाव चल रही है और ये आवाज हमें साफ साफ सुनाई देती है इस गीत के जरिए।

श्रोता लिख रहे हैं कि आज की उद्घोषिका मंदाकिनी जी और सभी को नमस्कार। आज का विषय बिल्कुल नवीन लेकिन बहुत ही रोचक है, हमें पसंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमने बचपन में परात को डफली बनाकर डफली वाले डफली बजा गीत की नकल की जब मम्मी घर में नहीं होती थी, बस एक प्यारी सी दोस्त और हम होते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि डीजे की आवाज मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। अच्छा, एक श्रोता कहते हैं हमारे घर के पास ही दुर्गा मंदिर है, सुबह सोकर उठने से पहले ही मंदिर की घंटियां हमें जगा देती हैं। बहुत ही मधुर स्वर में घंटियों की आवाज आती है और हम उठते ही ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर, यानी हमारे सवालों का जवाब हमारे श्रोता दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि चाय के होटल पर पहले बैठते थे तो चाय आने में समय लगता था, तो टेबल बजाना चालू कर देते थे और उसके साथ गीत भी गाना शुरू हो जाता था। बिल्कुल ये होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो दो डब्बे रखकर तबला बजा लेते हैं, वीणा के तंतुओं द्वारा उत्सव उत्पन्न झंकृत ब्रह्मांडनीय नाद अति सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि ढोलक बजाना आए या न आए, पर ढोलक देखने के बाद तो दो चार थाप हम भी लगा ही लेते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पूरब और पश्चिम फिल्मों में ओम जय जगदीश हरे आरती में घंटी और शंख ध्वनि, ये आवाज हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बांसुरी की आवाज मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती है, उसमें न जाने कैसी सादगी और मिठास है कि मन को बिना कुछ कहे छू जाती है। जब बांसुरी बजती है तो लगता है जैसे हवा भी कोई मीठी सी धुन लेकर हमारे पास से गुजर गई हो। उसकी आवाज में एक अपनापन सा है, न कोई शोर न कोई बनावट, बस कुछ सुर और ढेर सारा सुकून है। शायद इसलिए बांसुरी की धुन सुनते ही मन कुछ पल के लिए ठहर जाता है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। बहुत सुंदर बात आपने अपने मन की हम तक पहुंचाई है। एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो अकॉर्डियन विशेषकर इन्हें पसंद

क्षण में ढोलक एक आम बात हुआ करती है और कुछ लेडीज एक इकट्ठी होकर भजन कीर्तन या अन्य किसी प्रकार का कार्यक्रम करती हैं। ढोलक उसमें जरूर बजती है, उसमें मन भी लग जाता है और ढोलक बजाने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही हमारे रोजमर्रा के वाद्य यंत्र भी होते हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप अपनी बाइक पर गए हों या गाड़ी में गए हों, दोपहिया वाहन पर गए हों या साइकिल पर गए हों और टायर पंचर। तो ऐसा ही गीत आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं फिल्म टैक्सी ड्राइवर से, जहां किशोर कुमार और साथियों ने इस गीत को गाया है। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, सचिदेव बर्मन की धुन है, और इसमें यही होता है कि टायर पंचर होता है और फिर उसमें हवा भरी जाती है। बहुत ही ध्यान से जब आप इस गीत को सुनेंगे तो ये संगीत भी आपको सुनाई देगा।

0: अरे तेरी की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ। किक किक किक किक। टेपनिंग पहिया। अरे पंपिंग।

जी तो ये मस्ती भरा गीत अभी आपने सुना। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो हमें प्रॉपर ढोलक बजाना नहीं आता, लेकिन फिर भी हम तबला और डोर बजा लेते हैं, ढोलक बजा लेते हैं। इसके अतिरिक्त कुकर की कुकर की जब सीटी आती है या टॉवल से भी गिटार बजाने का अभिनय कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि इन्हें गिटार और बांसुरी जो है बहुत पसंद आती है। वही एक श्रोता को हारमोनियम, ढोलक, तबला, मजीरा मंदिर में सत्संग में बहुत साल तक बजाया है। अभी ही 2 महीने पहले रामकथा का आयोजन किया था, तब स्टेज पर पूरे 9 दिन पखावज मंजीरे बजाई, क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे बांसुरी और सैक्सोफोन वाद्य यंत्र बहुत पसंद है। और एक श्रोता को मुझे सभी वाद्य यंत्र पसंद है, लेकिन सैक्सोफोन और सितार को जिस तरह हमारे फिल्मी गानों में बजाया गया है तो वो कालजयी बन गए हैं और सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि मुझे गानों में बांसुरी की आवाज बहुत अच्छी लगती है। पक्षियों का कलरव बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जब ज्यादा चींची करती है तो गुस्सा भी आने लगता है। अरे क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखती है कि मैं हारमोनियम बजाता हूँ, चूंकि ये रीड वाला वाद्य यंत्र है अतः इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड भी बजाता हूँ।

वैसे मुझे संतूर की आवाज भाती है, दिल दिमाग को झंकृत कर देती है। वहीं एक श्रोता को घोड़े की टापों की आवाज अच्छी लगती है और एक श्रोता ने लिखा है कि बांसुरी की आवाज और टेबल को बजा के हम यूं तो गीत गा लेते हैं और कभी कभी ढोलक की आवाज के साथ भजन भी हम गाते हैं जो कि अच्छे लगते हैं। एक श्रोता को प्रकृति को सुकून देने वाला संगीत सुनना है तो सुबह 5 बजे उठकर बाहर चले जाइए, वहां बहुत सारे पेड़ और चारों तरफ हरियाली होगी, पानी से भरा तालाब फिर नदी होगी, तो आपके मन को कितनी शांति मिलेगी ऐसा जानते हुए जब आप संगीत सुनेंगे तो उस संगीत का तो कहीं उदाहरण दूसरा मिलेगा ही नहीं, ऐसा आप लिखती हैं। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम पाकीज़ा, गीतकार कैफी आजमी हैं, संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब हैं। इस गाने के अंत में जो गाड़ी की आवाज है यानी सीटी जो बजती है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है और दिल को एक अलग ही भाव पैदा कर देती है हमारे दिल में।

दोस्तों, समय अभाव के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए और इसी कारण गाने के अंत में जो ट्रेन की आवाज हमें सुनाई देती है वो आपको नहीं सुनवा पा रही है। फिलहाल सुरीला सफर कार्यक्रम का अब वक्त खत्म हो चला है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

सभी साथियों को सलमा का सप्रेम नमस्कार। कोटि कोटि कंठों की भाषा, जन जन की अभिलाषा, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी हम सब की परिभाषा। आज संसार में करीब 7,000 भाषाएं और अनगिनत बोलियां हैं, जिसमें हिंदी संसार की दूसरी बड़ी भाषा है, जिसका उपयोग हम सब करते हैं। हिंदी अपने विपुल वैभव और समृद्ध शब्दकोश के कारण राजभाषा के पद पर सुशोभित है। इसमें अपनेपन की सुगंध, सरलता और मधुरता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। साथियों, जयशंकर प्रसाद का हिंदी भाषा और साहित्य में अतुलनीय योगदान है। उन्होंने हिंदी को किताबी रूप से मुक्त कर आम आदमी की भाषा बनाया। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की लिखी एक रचना।

भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, वो हमारी भावनाओं की आवाज होती है। किसी भाषा का विस्तार तभी होता है जब वो लोगों के दिलों तक पहुंचती है। हिंदी भी ऐसी ही भाषा है, सरल, सहज और अपनापन लिए हुए। देश में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं और बोलियों के बीच हिंदी संवाद का एक सुंदर सेतु बनकर सामने आती है, और जब कोई भाषा सहजता से हमारे मन की बात कह देती है तो वो अपनी सी लगती है। दिलों को जोड़ने वाली सरल भाषा हिंदी का प्रचार प्रसार किसी दूसरी भाषा को पीछे करना नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं की समृद्ध परंपरा के साथ हिंदी को भी आगे बढ़ाना है। भारत अनेकताओं का देश है। यहाँ भाषाएं, बोलियां, पहनावे अलग अलग हैं, लेकिन इन विविधताओं के बीच एकता की जो डोर हमें बांधती है उसमें भाषाओं की भूमिका बहुत अहम है। हिंदी ने देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों को एक दूसरे से संवाद करने का अवसर दिया है। ये संवाद आगे चलकर अपनापन बनता है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। साथियों, अमृता प्रीतम की प्रसिद्ध कविता अंबर की एक पाक सुराही उनकी अत्यंत भावपूर्ण और रोमानी रचनाओं में से एक है। तो आइए सुनते हैं यही सुंदर गीत।

हिंदी को संविधान ने राजभाषा के रूप में स्थान दिया है। साथ ही भारत की हर भाषा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हिंदी का सम्मान तभी पूरा होगा जब हम भारत की सभी भाषाओं का सम्मान करें, क्योंकि देश की असली सुंदरता यही तो है, अनेक स्वर लेकिन भावना एक। हिंदी की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी सहजता है। उसमें संस्कृत की गरिमा, उर्दू की चाशनी, लोक भाषाओं की मिट्टी की खुशबू और बोलचाल की आत्मीयता है। यही कारण है कि हिंदी में प्रेम भी बड़ी सुंदरता से व्यक्त होता है और जीवन दर्शन भी। हिंदी को केवल बोलने की भाषा नहीं बल्कि जोड़ने, समझने और दिल से दिल तक पहुंचने वाली भाषा बनाएं। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का एक विशेष स्थान है। आइए सुनते हैं उनकी एक रचना।

हिंदी की सरलता को अपनाएं, उसकी सुंदरता को महसूस करें और हिंदी भाषा के माध्यम से भारत की एकता के स्वर को और मधुर बनाएं। अब आज की त्रिवेणी होती है संपन्न। अब दीजिए सलमा को आज्ञा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान। देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। एक रिपोर्ट।
1: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने त्रिकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स की विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट आई है और पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर

0: प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा LSC और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार के बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है, जिससे स्थिरता आई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया।
1: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
0: गृहमंत्री ने वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
1: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से एक बार पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोह में गाने का काम किया।
0: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र के समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
2: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें, बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें, क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था।

0: भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित 6 में आगे है, जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। यह संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड इन 5 तटीय और अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मानसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है, जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 पान अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
2: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूँ। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
0: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद है। कमोडिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।

अथवा नमस्कार। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुना। स्वर मोहम्मद रफी का था, फिल्म आरजू के लिए। यह आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीत

0: गीत शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।
1: आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है, बाहों में बाहें ना डालो मुझे कुछ होता है, बाहों में बाहें ना डालो मुझे कुछ होता है। आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है, आंखों में आ...

मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है। आंखों में आंखें ना।

0: मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है। आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गड्डी ले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हम आपको शैलेंद्र का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम संगम, आवाज मुकेश की।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत राजा मेहदी अली खां का लिखा हुआ, संगीत में ढाला है मदन मोहन ने, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है आपकी परछाइयां।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गाना मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आरती से हमने लिया है। इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन रोशन की है।

सदाबहार नगमी कार्यक्रम का आप सुनिए ये आखिरी गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस।

इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों को सभी सहेलियों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और दीपा आपको भी नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां।
2: जी बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं स्वीकारते हैं और अपनी सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को और चंचल आपको भी नमस्कार, हेल्दी नमस्कार। हाँ। और बहुत सारी शुभकामनाएं क्योंकि बहुत खास दिन है आज।
1: बिल्कुल, मुझे इंतजार था कि आपका हेल्दी नमस्कार क्यों नहीं आया।
2: वो कैसे छूट सकता है, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। सब चीज चलती रहेंगी, मतलब हर चीज, परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, कभी खुशी वाले दिन होंगे जैसे आज का दिन है।
1: हाँ।
2: त्योहार आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन
1: और इनमें सेहत बड़ी जरूरी है, इसीलिए आपके हेल्दी नमस्कार का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। तो चलिए विषय बताते हैं आज के। आज कथा सुधा में हमारी सखियां और सखा सुनेंगे कहानी बड़े भाई साहब, इसका पहला भाग
2: जी।
1: इसके अलावा आज प्रादेशिक व्यंजनों में हम कश्मीरी व्यंजन की बात करेंगे, नदरी यखनू यानी कमल ककड़ी, उसे कश्मीरी भाषा में नदरी यखनी नदरू यखनी कहा जाता है। तो इससे क्या क्या बन सकता है, इसके क्या क्या व्यंजन बनते हैं, हमारी सखियां हमारे साथ जरूर साझा करेंगी। और खुशी का दिन है भाई, स्पेशल दिन है, खास दिन है, वो क्या है आप बताइए।
2: देखिए आज है हिंदी दिवस और सुबह से हमारे सभी श्रोता सुन भी रहे हैं कुछ खास हिंदी के, हिंदी से, शुद्ध हिंदी से भरपूर वाले शब्दों से भरपूर वाले गीत हम भी यहाँ पर कुछ आपके लिए प्रस्तुत करेंगे और जानेंगे कि क्या इसकी विशेषता है और साथ में और भी एक खास बात है जो सारी दुनिया
1: भाई, पूरा देश
2: हाँ रहा है,
1: क्योंकि आज बहुत खास दिन है ना दीपा, और ये मेहमान तो हम सबके घर में आते हैं, लेकिन आज जो आने वाले हैं वो सबसे खास मेहमान है, क्योंकि वो है विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति, हमारे गणपति बप्पा, आज उनके आगमन का दिन है।
2: बिल्कुल, और चंचल सच कहूं तो गणपति उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो पल है जब हम अपने घर में सिर्फ बप्पा की मूर्ति नहीं लाते हैं, हम लाते हैं खुशहाली, तो वो जो हंसी पूरे साल घर में गूंजती रहती है, हम लाते हैं मंगल कामनाएं कि हमारा घर, हमारे अपने, हमारे खुश रहें, सलामत रहें, गणपति उत्सव में हम खुशहाली और मंगल कामनाएं घर पर लेकर आते हैं।
1: बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो एक रीति रिवाज जिसे हम कहें कि सब लोग छोटी छोटी सी मूर्तियां अपने घर में लेकर आते हैं और बप्पा आते हैं तो सिर्फ उनकी एक मूर्ति नहीं आती है, घर में खुशियों की रोशनी आती है, भरोसा आता है कि अब जो होगा सब ठीक होगा, बप्पा सारी कहते ना कि तकलीफों को परेशानियों को हर लेंगे, आंगन में रोशनी आती है, दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता है बप्पा के आने से,
2: ये बात तो
1: बच्चों की जो हंसी है वो थोड़ी तेज हो जाती है, और फिर भाई बच्चों की हंसी या खुशी है या हम सब बड़ों की भी, वो इसलिए भी तेज होती है कि रसोई से मोदक की खुशबू आने लगती है, और ये कह सकते हैं कि एक खासियत है इस पर्व की और असली रोशनी भी है। तो हम सभी बोले ना, दिल से सब मिलकर बोलते हैं ना, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।
2: और बप्पा के आने का मतलब सिर्फ दिए या लाइटें, मतलब कि घर में रोशनी है, सिर्फ ये नहीं, जब मन रोशन होता है ना चंचल, तब हमारी पुरानी नाराजगी भी हम भूल ही जाते हैं कहीं, है ना, सही बात। और जब पूरा परिवार एक साथ आरती में खड़ा होता है या हमारे सोसाइटी में जब सब एक साथ खड़े हाँ। होते हैं, तो सच में ऐसा लगता है पप्पा हमें यही सिखाने आए हैं कि शुरुआत करने से कभी मत डरो और हर नया काम शुभ है अगर आपकी नीयत साफ है।
1: तो बस बप्पा के आज का जो दिन है इसमें हमने घर को तो खूब सजाया ही है, क्यों ना अपने मन का भी कोना हम थोड़ा सा साफ कर लें, उसे सजा लें प्रेम की भावना से, अच्छाई से, और पुराने जितने भी मतभेद हैं उसे भुलाकर हम भी इस खुशी के उत्सव में शामिल हो जाएं। और महाराष्ट्र में तो 11 दिन तक ये उत्सव चलने वाला है, हम भी शामिल होते हैं।

भाई तो ये तो हुआ गणपति उत्सव के रंग में डूबा हुआ गीत, और अब बारी है कार्यक्रम में कथा सुधा की। तो सुनते हैं कहानी

0: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
2: मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द का वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिनमें ना कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर वार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोष मिश्रित शब्दों में मेरा सत्कार करें।
3: अरे इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, एरा गैरा नथू खैरा सभी अंग्रेजी में विद्वान हो जाते हैं। यहां रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा।

0: और मैं कहता हूं तुम कितने घोंगा हो भाई कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, तुम अपनी आंखों से देखते हो मगर नहीं देखते जो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहा हूं, उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूं। फिर तुम कैसे आशा कर सकते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो?
1: मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं? जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। छटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे हाथ मुंह धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वो दांव घात, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वो घोर तपस्या कहां गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में प्रथम भी हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हां, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने

0: मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी ससहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े।
1: देखता हूं, इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजों को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया, कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो चाहे करे, पर अभिमान ना करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, उसे यह अनुमान था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरुम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके, ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर ना जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा, जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं, आठ आठ हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी सातवें की जगह हेनरी आठवां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट। सिर्फ भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते, एक ही नाम के पीछे दोयम तेयम चहारम पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिरपिर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर वो लंब गिरा तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना तो ये सब खुराफात याद रखनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो चार पन्नों से कम ना हो। अब कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। और जरा सी बात पर चार पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे चार पन्ने में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं। ये तो समय की किफायत नहीं बल्कि दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। हम जो चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। मगर नहीं, आपके पन्ने चार रंगने पड़ेंगे चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? उल्टी बात या नहीं? मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे।
0: स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है।
2: कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है। छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: इस संदेश से पहले सखियों आपने कथा सुधा में सुना बड़े भाई साहब की पहली कड़ी और अब एक अंतराल का समय हो चुका है।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और इस अंतराल से पहले हमने सुनी कहानी, और उससे पहले हमने बात की गणपति उत्सव की। बहुत सारे संदेश हमारी सखियों ने भी भेजे
1: जी,
0: हैं,
1: बहुत सारे आए हैं,
0: तो उनके संदेश भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक गीत सुन लें।
1: चलिए।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत और वैसे ही खूबसूरत संदेश भी हमें मिले हैं अपनी
1: बहुत सारे
0: सखी।
1: संदेश, और पुनः हम सभी अपनी सखियों को, श्रोता भाइयों को गणेश चतुर्थी और ये आने वाले 10 दिनों तक जो आप हर्षोल्लास के साथ मनाने वाले हैं इस त्योहार को, उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। और ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं कि गणपति की स्थापना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि घर आंगन में खुशियों, शांति और समृद्धि के आगमन का शुभ अवसर है। बप्पा के स्वागत के साथ वातावरण भक्ति और उल्लास से भर उठता है, और साथ में ये भी लिखते हैं कि उनके आगमन से परिवार में प्रेम, एकता, उत्साह की नई रोशनी फैलती है। और आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ बप्पा का हम स्वागत करें। इसी भावना के साथ बहुत सारे संदेश
0: हाँ, और हमारे एक श्रोता भाई ने या सखी है, उन्होंने ये भी लिखा है कि महाराष्ट्र में ये उत्सव बड़े हर्षोल्लास से, जोरों शोरों से और बहुत बहुत विशाल तरीके से मनाया जाता है। बड़े बड़े पंडालों में गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती है, लोग अपने परिवारों के साथ इस मंडप में भी जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपने पूरे परिवार के लिए मंगल कामनाएं मांगते हैं। और हमारे एक संदेश में हमारे श्रोता बहन लिखती हैं कि हमारे बेटे बहू ने भी गणपति महाराज की स्थापना की है, गणपति भगवान सभी की मनोकामना पूरी करें।
1: बिल्कुल, और इसी तरह की बातों के साथ एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बहुत जरूरी है कि हम सब इको फ्रेंडली गणपति का इस्तेमाल करें और जितना हो सके इस बार अपने घर को इको फ्रेंडली अपने घर पर लेकर आए उनकी मूर्ति, और उसी तरह से सजावट भी करें। तो भाई ये बात पे ध्यान रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
0: तो आपने बात पर ध्यान देने की बात की, मेरा ध्यान गया एक ऐसे संदेश पर जिसमें लिखा गया कि पिछले कई सालों से गणेश चतुर्थी के दिन हम घर पर ही मिट्टी लाकर गणपति जी की मूर्ति बनाते हैं।
1: क्या बात है।
0: और ये अजमेर के श्रोता भाई हमारे श्रोता हैं, और इन्होंने बताया है कि पूजा के रूम में उनको विराजमान करते हैं, 11 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है, मोदक का भोग लगाया जाता है और पूरे विधि विधान से अनंत चतुर्दशी के दिन उनका हम घर में ही अपने बगीचे में विसर्जन भी करते हैं।
1: कितनी अच्छी बात है। देखिए हमारे ही बीच में अगर एक कोई बात समाज समझा रहा है तो एक और हमारे घर सखी है या श्रोता है जो हमें उस बात को करके भी दिखा रहे हैं। तो अपना परिवार इसी तरह से सखी सहेली का समृद्ध परिवार है।
0: और लगभग ये मिली जुली बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है कि

0: कितने अच्छे शब्द थे इस गीत के और बहुत सुंदर हिंदी का लालित्य इसमें देखने को मिला। और आज 14 सितंबर है और ये सिर्फ एक तारीख नहीं होती दीपा कि बस कैलेंडर पे हमने जो तारीख देखी उस तरह से नहीं है, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को याद करने का भी बहुत सुंदर अवसर होता है। और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं।
1: बिल्कुल, हिंदी यानी एक ऐसी भाषा जिसमें अपनापन है, भावनाओं की गर्माहट है और दिल की बात को सहजता से कह देने की ताकत भी होती है।
0: बिल्कुल,
1: कभी ये माँ की लोरी बन जाती है और अपने कानों में उतरती है, कभी कविता बनकर मन को छू जाती है और कभी किसी कहानी के किरदारों में हमें अपना जीवन दिखाई देने लगता है, या कभी किसी गीत के बोल जैसे सीधे अपने दिल को उतर जाते हैं ना, बस कुछ ऐसी ही है ये भाषा।
0: और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस ऐतिहासिक दिन की याद में ही हर साल 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में हम मना लेते हैं। और हिंदी बहुत खूबसूरती सिर्फ उसके इतिहास में नहीं है इसकी, बल्कि उसकी क्षमता में है जो अलग अलग लोगों को एक दूसरे से जोड़ देती है।
1: बिल्कुल, और हिंदी ने दूसरी भारतीय भाषाओं से बहुत कुछ ग्रहण भी किया है और बदले में उन्हें भी अपने शब्दों और अभिव्यक्तियों से समृद्ध किया है। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है चंचल, कि यहाँ भाषाएं अलग हो सकती है लेकिन भावनाएं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहती है।
0: और हिंदी का स्तर पता है हमारे फिल्मी गीतों से भी बड़ा गहरा है।
1: हाँ।
0: अभी जो हम गीत सुन रहे थे उसमें बड़ा अच्छा लालित्य था कविता का। और रेडियो पर जैसे ही कोई पुराना गाना बजता है, चाहे उसमें प्रेम हो, विरह हो, जीवन की उम्मीद हो, मतलब हर भावना को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने परोसा जाता है।

0: और बहुत मधुर संगीत होता है। बरसों पुराने गीत जब हम सुनते हैं ना तो हमें हमेशा अपने से लगते हैं।
1: बिल्कुल, ये बात तो
0: क्योंकि मिट्टी से जुड़े हुए लगते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हिंदी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है चंचल, दुनिया के बहुत सारे देशों में हिंदी बोली पढ़ी और समझी जाती है। इंटरनेट हो या सिनेमा, टेलीविजन या सोशल मीडिया ने हिंदी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में एक नई भूमिका इन सब ने निभाई है।
0: तो देखो एक कितना सुंदर संदेश हमें मिला है, हिंदी महज भारत की नहीं बल्कि दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी भारत की पहचान भी है और सम्मान भी है। और जो अन्य भारतीय अन्य देशों में बसे हुए हैं उनको जोड़ने का एक काम करती है। वैसे तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन उन्होंने 10 जनवरी गलत तारीख लिखी है। आगे लिखते हैं कि लेकिन भारत में हिंदी दिवस को एक खास दिन तय किया गया है। भारत में 22 भाषाएं और 72,507 लिपि हैं। बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, उन्होंने लगभग कि हम कह सकते हैं कि ऐसा है। और इतनी सारी भाषाओं की विविधता के बीच हिंदी ऐसी भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ देती है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस दिन हिंदी भाषा के सम्मान, उसके प्रचार प्रसार और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए ये दिन समर्पित है। शिक्षण संस्थाओं में इस दिन हिंदी दिवस पर भाषण होते हैं, निबंध लेखन, वाद विवाद और कविता पाठ जैसी प्रतियोगिताएं ये आयोजित की जाती हैं संस्थानों में। और भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं।
0: और दीपक, कोई भी भाषा तब तक जीवित या समृद्ध रह सकती है तब तक उसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में सम्मान के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दूसरी भाषाएं सीखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अपनी भाषा से जुड़े रहना ये बहुत जरूरी चीज है।
1: बहुत ज्यादा जरूरी है। हम विदेश की भी कई भाषाएं सीखते हैं क्योंकि काम काज के चलते आजकल वैसी भी जरूरत हो गई है। लेकिन बाहर जो देश के विदेश में रहते हैं हमारे परिवार के कोई जन, तो ये देखा सुना है कि वो लोग घर में हमेशा कहते हैं कि नहीं, हमारी जो भाषा है, जो हमारे घर की जो भाषा है हिंदी भाषा, वो अपने बच्चों को आना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, हमारी स्मृतियां होती हैं और हमारे संस्कार होते हैं। और देखिए संदेश भी बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। कितनी सुंदर दो पंक्तियां लिखी हैं हमारे किसी श्रोता ने, निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय की सूल। और आगे इन्होंने सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं, बहुत सारे संदेश हैं। लेकिन पहले एक गीत सुन लेते हैं जो इसमें भी हिंदी का बड़ा सुंदर लालित्य देखने को मिलता है।
1: चलिए

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
1: तो भाई अब हम थोड़ी सी व्यंजन की बात कर ले, खाने पीने की बात। भाई मोदक की बात अलग हुई लेकिन कुछ अलग व्यंजन भी तो होना चाहिए, और क्योंकि अभी श्रृंखला कश्मीरी व्यंजन की है तो कश्मीर में ना कमल ककड़ी बहुत होती है।
3: बहुत होती है और बहुत प्रकार से वो बनी जाती है।
1: हाँ,
3: लेकिन आज जो हम बात कर रहे
1: मतलब
3: हैं,
1: इसका सूप भी बना सकते हैं, पकौड़े भी बना सकते हैं, इवन सब्जियां भी बहुत सारे तरह से लोग बनाते हैं अपने अपने तरीके से।
3: और खासतौर पर चंचल जिनको जिनके घर में प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता है, नहीं पसंद कर रहे या किसी कारण से कुछ दिनों के लिए बंद है, तो वो नदरू यखनी बना सकते हैं
1: जी।
3: ये जो कश्मीरी का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है, ये दही की ग्रेवी में बनाया जाता है जो कि बिना प्याज लहसुन के, जैसे अभी हमने आपको बताया। क्या लेना है इसमें, 500 ग्राम आप नदरू यानी कमल ककड़ी लीजिए, दही लेना है 500 ग्राम अच्छा सा फेटा हुआ, घी या तेल ले सकते हैं 3-4 बड़े चम्मच, हींग लेना है थोड़ा सा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, हरी इलायची, ये सब दो तीन लौंग, 4-5, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, सौंठ का पाउडर लेना है छोटा सा चम्मच 1, और सौंफ पाउडर अगर आपको पसंद है तो 2 बड़े चम्मच ले लीजिए, बेसन 1 बड़ा चम्मच, दही को फटने से बचाने के लिए, जो दही को हमें फटना है ना, तो फटे ना इसलिए हमें उसमें डालना है। अब बनाने की विधि यूं
1: और
3: है,
1: जो भी हम सामग्री हमने बताई है अपने स्वाद के अनुसार आप इसे थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं।
3: बिल्कुल। अब सबसे पहले नदरू को साफ करना होता है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है।
1: हाँ।
3: तो इसको छील करके अच्छे से धो लीजिए, और इसे तिरछा या गोल टुकड़ों में अगर काटते हैं ना तो पूरी अंदर तक की मिट्टी,
1: उसके छेद में अंदर तक मिट्टी घुस जाती है, चिकनी मिट्टी होती है,
3: चिकनी होती है, तो वो सब बाहर निकल
1: आसानी से निकल जाएगी।
3: अब उबालना है इसे, तो कटे हुए नदरू को पानी में 10 मिनट तक उबाल लें, इसके बाद इन्हें पानी से निकालकर छान लेना है। अब एक कुकर या कढ़ाई में घी गर्म करें, इसमें हींग और सारे खड़े मसाले जो आपके घर में पसंद किए जाते हैं वो सब डाल लीजिए। फिर मसाला मिलाना है, तो उबले हुए नदरू को घी में डालें और 2 मिनट तक भून लीजिए। अब इसमें सौंठ पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ा सा नमक मिलाकर अच्छी तरह चला लीजिए। थोड़ा पानी डालकर कुकर की 2-3 सीटी आने तक बनाए पका लीजिए, या तब तक की जब तक की कमल ककड़ी थोड़ी
1: नरम ना हो जाए
3: जी। जो दही का मिश्रण अब तैयार करना है, 1 कटोरे में फैटा हुआ दही और बेसन को थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छी तरह फैट लेना है ताकि कोई गांठें उसमें ना पड़े। उसके बाद ग्रेवी बनानी है, तो कुकर का प्रेशर जब खत्म हो जाए तो ढक्कन खोल लीजिए और गैस को धीमा करें या चालू रखें, और लगातार चलाते हुए दही का मिश्रण इसमें धीरे धीरे कढ़ाई में या कुकर में, अगर आप बना रहे हैं तो कुकर में ही डालना है, लगातार चलाते रहना है ताकि दही इसमें फटे ना। और जब ग्रेवी में उबाल आ जाए और ऊपर घी या तेल ऊपर तैरने लगे, तब 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर और पकने दीजिए, आपकी नदरू यखनी तैयार है।
1: एक और कश्मीरी व्यंजन हमारे पास आई है विधि इसकी। इसमें बताया गया है कि कमल ककड़ी एक
3: इंग्लिश में लोटस स्टेम भी बोलते
1: हैं। हाँ, और वहां की ये पारंपरिक शाकाहारी डिश है और इसे दही की ग्रेवी में पकाया जाता है अक्सर।

0: प्रेम पुजारी फिल्म के लिए इस गीत को गाया था किशोर कुमार ने, और इस गीत को लिखा था गोपाल दास नीरज ने। और जब मैं इस गीत को सुन रही थी ना, तो मुझे याद आया कि आज हिंदी दिवस है, और हमने भी कोशिश की कि हम कुछ ऐसे गीत बजाएं जिसमें हिंदी का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया। ऐसा ही ये गीत था।
1: बिल्कुल
0: और गोपाल दास नीरज ने बहुत सारे गीत ऐसे लिखे हैं ना जिसमें हिंदी की इतनी सुंदर शब्द रचना है, और बाद में उन शब्द रचनाओं के, यानी कि जो भी उनके लिखे गीत थे या कविताएं थी, उन्हें इतने सुंदर तरीके से गीतों में ढाला गया ना, वो गीत आज भी यादगार बन गए
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और नीरज जी के साथ और भी फहरिस्त में लंबी लंबी फहरिस्त है, जैसे कि भरत व्यास, पंडित नरेंद्र शर्मा, कवि प्रदीप, शैलेंद्र, वसंत देव, ये सारे वो गीतकार हैं जिन्होंने हमारी हिंदी फिल्मों के लिए सुंदर रचनाएं दी हैं। चंचल,
0: तो भाई इन रचनाओं को तो हमने सुना, और इतना समय नहीं कि बहुत सारी रचनाएं हम सुना सके, लेकिन कुछ चुनिंदा गीत हमने शामिल किए। और बहुत सारी बातें करते, गीत सुनते, कार्यक्रम का समय पूरा हो गया, और घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि हमारे जाने का समय हो गया। तो बस लेते हैं विदा,
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: और चंचल वर्मा का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

श्रोताओं नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत, और इस बातचीत की दूसरी कड़ी लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए सुनते हैं।

0: अदिति जी, ये जो कार्यक्रम है, हमारे बहुत सारे श्रोता सुनते हैं, ग्रामीण श्रोता भी सुनते हैं और शहरी श्रोता भी सुनते हैं। पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो पोषण सप्ताह आप अपने पैमाने पर भी मनाती होंगी, क्या कुछ शामिल करती हैं इसमें, किस तरह से लोगों को जोड़ पाती हैं?
1: पोषण सप्ताह सितंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, 1 से 7 तारीख के बीच में, और ये कई सालों से चल रहा है।
0: जी
1: और इस सप्ताह में हम बहुत जनहित के लिए प्रचार करते हैं, बहुत ज़्यादा रोड स्किट्स होते हैं ग्रामीण लेवल पे या आदिवासियों के लेवल पे, हम जाके वहाँ पे कैंप्स करते हैं या हेल्थ कैंप्स होते हैं सोसाइटीज़ में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। हर डाइटिशियन अपने तरीके से कुछ ना कुछ करती रहती है, वो चाहे अपने क्लिनिक में थोड़े से छोटे मोटे कैंप हो या कॉलेज में जाके सिखाना हो या कॉरपोरेट जॉब्स हैं जहाँ पे वहाँ पे जाके आहार के ऊपर बातें करनी हो, ताकि लोगों को आहार के बारे में और आहार के महत्व के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और उनको ये पता चले कि कहाँ और किसके पास जाना है
0: जी
1: सही जानकारी मिलने के लिए। ये इस चीज़ के लिए हम ये पूरा सप्ताह इस्तेमाल करते हैं। ये हम कई सालों से कर रहे हैं, मगर पिछले कई सालों से पोषण माह ज्यादा करके मनाया जाता है, जो कि सितंबर का पूरा महीना होता है। इसका मतलब अब हम एक हफ्ता नहीं, पूरा महीने भर हम कुछ करते रहते हैं, जैसे कुछ छोटा मोटा कुछ भी हो जो
0: जी
1: जनरल पॉपुलेशन या लोगों के लिए फायदेमंद हो, ये हम ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं।
0: जी बिल्कुल। भारत सरकार की ओर से एक मुहिम चलाई जाती है, बहुत सारी कार्यशालाएं
1: जी
0: आयोजित की जाती हैं, क्योंकि बहुत सारा वर्ग कुपोषण का शिकार है आज भी, तो उन्हें पोषक तत्व मिले और कुपोषण से रहित अपना देश हो जाए,
1: जी
0: ये एक मुहिम है। और अब हमें बताइए कि ये जो वर्किंग वुमेन होती हैं और जो हाउसवाइफ होती हैं, तो उनके लिए किस तरह के पोषक तत्व जरूरी हैं, किस तरह के न्यूट्रिशन उन्हें लेने चाहिए?
1: अगर हम पोषण के बारे में बात करें और औरतों के बारे में बात करें, तो मेरी हमेशा एक बड़ी शिकायत होती है कि औरतें जो होती हैं वो सबका करने में इतनी मशरूफ हो जाती है, वो
0: बिल्कुल
1: हमेशा खुद को भूल जाती है।
0: हाँ
1: भले आप हाउसवाइफ हैं या भले आप जॉब करते हैं, दोनों तरीके से आप बहुत ज्यादा काम करते हो,
0: जी
1: कोई भी किसी से कम नहीं होता। बहुत बार हमें लगता है अरे ये कुछ नहीं कर रहे, ये तो हाउसवाइफ है, इनको घर संभालना है।
0: जी
1: नहीं, अगर आप देखें कई बार हाउसवाइफ जो है पूरे दिन में इतना काम करती है, उनको
0: जी
1: अलग से वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
0: जी बिल्कुल
1: और दोनों के लिए अपना सही वक्त पे खाना, सही मात्रा में खाना बहुत जरूरी हो जाता है।
0: जी
1: अगर आप वर्किंग हैं तो अक्सर ये दिक्कत आती है कि सुबह उठे, डब्बा बनाया तो अपना नाश्ता भूल गए, तो अपने नाश्ते का समय निकाल के फुर्सत से बैठ के नाश्ता करना जरूरी है। फिर उसके बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा सही है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। और पूरे दिन में पानी के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वैसे ही घर की जो औरतें हैं जो घर संभालती हैं, उनको ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो वक्त पे खा रही हैं, या क्योंकि वो किचन में काम कर रही है बहुत बार छोटा मोटा खाया जा रहा है और उसके वजह से भी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि
0: जी
1: हमें चखने की तो बहुत आदत होती है,
0: हाँ
1: चलो ये खा लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, इसमें दिक्कत हो जाती है।
0: जी बिल्कुल
1: तो औरतों को अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, उनको ये देखना जरूरी है कि क्या उनको 7 से 8 घंटे नींद मिल रही है, 2 से 3 लीटर उनका पानी दिन का जा रहा है, क्या उनका शारीरिक काम हो रहा है, जैसे चलना हो गया, जिम जाना जरूरी नहीं है बट कोई तो एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो भले 10-15 मिनट हो मगर खुद के लिए वक्त निकालना उतना जरूरी है। और उसके अलावा सही वक्त पे खाना और संतुलित खाना, जहाँ पे वो ध्यान दे कि उनके खाने में प्रोटीन हो, फाइबर हो, आयरन युक्त जैसे मोरिंगा हो गया या फिर हलीम या अलीव के बीज हो गए या फिर अनार हो गए, ये थोड़ी सी चीज़ें आपको खाने में होनी चाहिए, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद ठहरता है।
0: जी आपने कहा पानी पीना चाहिए प्रचुर मात्रा में। कुछ लोगों को देखा पानी एक साथ गट गट गट गट पी लेते हैं, एक बोतल या 2-3 गिलास पानी, तो
1: जी
0: ये तरीका सही है? थोड़ा तरीका भी बताइए किस तरह से पीना चाहिए पानी।
1: कुछ लोग बहुत जल्दी में पानी पी लेते हैं, कुछ लोग

0: सुबह उठ के पानी पी लेते हैं और पूरा दिन पानी नहीं पीते, हमारा शरीर इस तरीके से काम नहीं करता।
1: जी सही
0: उसको
1: तरीका।
0: सही वक्त पे पानी की जरूरत होती है। आपको प्यास लग रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, मतलब पानी की मात्रा आपके शरीर में कम हो गई है। प्यास लगने तक राह ना देखिए,
1: बिल्कुल
0: धीरे धीरे थोड़े थोड़े वक्त पे थोड़ी थोड़ी घूंटों में पानी पीजिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ, पानी हमेशा ग्लास में लेकर पीजिएगा,
1: जी,
0: ना
1: बैठकर
0: बॉटल से। आप बैठकर पियो, खड़े रहकर पियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्लास में, इसलिए ताकि आपको एक क्षण की क्यों ना हो, थोड़ी सी एक पॉज मिल जाए, एक ठहराव मिल जाए,
1: सिप
0: जो कि
1: सिप करके
0: आपके लिए
1: पानी।
0: बहुत जरूरी हो जाता है भाग दौड़ की जिंदगी में, कि आप वो 1-2 सेकंड का काम है कि थोड़ा सा रुक लो, थोड़ा ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दो, आप किस तरीके से पूरे दिन में सांसें अंदर बाहर कर रहे हैं, थोड़ा सा ठहराव आने दो, पानी पी लीजिए और फिर अपने काम पे आगे बढ़ जाइए।
1: जी
0: कहीं अगर हम देखें तो, अगर हम 2-3 लीटर की बात करें पूरे दिन में, तो आपको 1 ग्लास 1 घंटे में धीरे धीरे करके पी लेना चाहिए, धीरे धीरे,
1: जी
0: ये जरूरी है।
1: जी
0: गर्म पानी पिए, ठंडा पानी पिए, वो आपके ऊपर है।
1: जी
0: आप
1: बिल्कुल
0: बैठकर पियो, खड़े रह के पियो, वो आपके ऊपर है, मगर धीरे धीरे पीना बहुत जरूरी है।
1: जी, बहुत भ्रांति थी, बहुत बड़ी आपने दूर की। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
0: जी

0: के मरीज बढ़ रहे हैं और थायराइड की समस्या ज्यादातर हो रही है, तो क्या आहार के जरिए, सही न्यूट्रिशन के जरिए क्या इस पर नियंत्रण किया जा सकता है?
1: अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो अगर आपके फैमिली में या आपके परिवार में माता पिता को, चाचा चाची को, जो इमीडिएट फैमिली होती है, तुरंत आपके माता पिता, भाई बहन, किसी को भी डायबिटीज़ है, आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको ये जानकारी है तो आपको आपके आहार या पोषण का ध्यान पहले से रखना शुरू कर देना चाहिए। आपके खाने में क्या होना चाहिए ये आप समझ गए तो आप अपने ब्लड शुगर को आराम से मैनेज कर पाओगे, आपको डायबिटीज़ के लेवल पे आप पहुंचोगे नहीं। अगर आप प्री डायबिटीज़ के लेवल पे किसी वजह से पहुंच गए, सही आहार से आप उसको रिवर्स कर सकते हो। अगर आपका लेवल डायबिटीज़ में चला गया और आपको डॉक्टर ने डायग्नोज कर लिया कि आपको डायबिटीज़ है या आपको शक्कर की बीमारी लग गई है, तो उस वक्त के बाद से आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब वो चला जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। उस लेवल के बाद से आप बस वो शक्कर की मात्रा को कंट्रोल में रख सकते हैं, तब भी आपको आहार की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो टाइप का आपको डायबिटीज़ है, भले वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि प्रेगनेंसी में होता है, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, उसके हिसाब से, और आपको कौन सी दवाई दी जा रही है और आपका करंट ब्लड शुगर कितना है, उस हिसाब से आहार को डिज़ाइन किया जाता है, ताकि आपका जल्द से जल्द शुगर कंट्रोल में आए, आपको दवाइयाँ कम लेनी पड़े, या अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो वो अच्छे से आपके ऊपर काम करे कम से कम डोज में। तो आहार इतनी आपकी हेल्प कर सकता है कि आपका 16-15 ऐसा HbA1c है तो वो 7-6 पे भी लेकर आ सकते हैं 3 से 4 महीने में।
0: जी बिल्कुल।
1: बट लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट, दवाई ले लेंगे मगर खाना नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ पे दिक्कत आती है। बिना खाने को ठीक किए आपकी दवाई काम नहीं करने वाली है या कम काम करेगी।
0: बिल्कुल सही बात है। मतलब कि हमारे जीवन में सही और संतुलित आहार का बहुत महत्व है।
1: बहुत महत्व है।
0: अदिति जी, हमें बताइए कि सप्लीमेंट की कितनी जरूरत होती है पोषक तत्वों के साथ साथ? कई बार लोग खाना पीना तो ठीक ठाक रखते हैं, उसके बावजूद उन्हें विटामिन्स की कमी होती है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो सप्लीमेंट किस तरह से लेना चाहिए और कितना इसका महत्व है और कितनी हानि है?
1: सप्लीमेंट कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, कुछ लोगों के लिए वो जरूरी नहीं है। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं, आपका रहन सहन सही है, नींद ठीक है, पानी ठीक है, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो अक्सर आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं या आपके रिपोर्ट्स में आ गया कि आपको कोई विटामिन या मिनरल की कमी है, तो कभी कभार आपको वो लेने पड़ते हैं।
0: जी
1: जो भी आप सप्लीमेंट ले वो हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ले, और डाइटिशियन आपको दवाई नहीं दे सकते हैं, डाइटिशियन आपको विटामिन मिनरल के बारे में जरूर बता सकते हैं, मगर ये विटामिन और मिनरल भी एक समय के लिए लेना चाहिए, एक
0: जी
1: उसका विशिष्ट रूप होता है जिस तरीके से लेना चाहिए, और विटामिन मिनरल्स ऐसी चीज है जिसका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है सप्लीमेंट में, तो वो पेशेंट की जरूरत के हिसाब से हम देते हैं, बिना किसी की सलाह के, बस इसलिए क्योंकि विटामिन मिनरल मिल रहा है और किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने बता दिया आपको विटामिन ये लेना है, कैल्शियम ये लेना है, आपको वो अवॉइड करना चाहिए। अगर सलाह दी है तब भी ले लीजिए, और उतने वक्त के लिए ही लेना जितना बताया गया है,
0: बिल्कुल
1: वो सही वक्त पे लेना, सही तरीके से लेना जरूरी है। अभी कौन से विटामिन मिनरल ज्यादातर लगते हैं? अगर आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, मतलब आपके शरीर में कोई भी विटामिन या मिनरल की कमी बहुत ज्यादा है, तब आपको सप्लीमेंट की जरूरत लगती है। उसके साथ साथ आपको आहार को भी आपके ठीक करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो रोज का आहार है वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी जरूरतें पूरा करेगा। सप्लीमेंट जो कि आपका बैकलॉग है, जो कि आपके शरीर में ऑलरेडी कम है, वो चीजें को भरेगा, तो वो सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही जैसे विटामिन डी की बात करें, तो विटामिन डी का मेन तो धूप से मिलता है, मगर हम आजकल धूप में ज्यादातर जाते नहीं हैं,
0: जी
1: या
0: बिल्कुल
1: फिर हम पूरे कपड़े पहनते हैं, या ऐसे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स या कुछ भी शरीर पे, जिससे विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता।

0: और खाने में विटामिन डी की मात्रा कम है तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप विटामिन डी बहुत, क्योंकि कम है, सबको कम होता है, हम हर रोज लेंगे या हर हफ्ते लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्यूबल है, उससे आपकी बॉडी में विटामिन डी स्टोर हो सकता है और आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो बिना सलाह किए कभी भी उनको नहीं लेना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: दूसरी चीज, आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कोई डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, एक चिट्ठी पे लिख के उन डॉक्टर को थमा दीजिए कि मैं ये ऑलरेडी ले रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है, आप एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी कैल्शियम दिया, किसी और ने भी कैल्शियम दिया, और आपने उनको बताया नहीं, तब भी ज्यादा हो सकता है आपके लिए। तो सप्लीमेंट कभी भी, कितने भी आसानी से मिले, कितने भी करीबी रिश्तेदार ने आपको बताए हो, बिना जांच पड़ताल या बिना कोई प्रोफेशनल सलाह के नहीं लेने चाहिए।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर, कौन
0: जी,
1: सा गाना आपके पसंद का?
0: आजकल तेरे मेरे प्यार।
1: जब सेहत सही रहती है तो भाई जाहिर सी बात है मन ठीक रहता है,
0: हाँ
1: मन
0: जी,
1: में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो प्यार की भावना भी उपजती है। सुनते
0: एब्सोल्युटली।
1: हैं ये गाना।

0: अदिति जी, हमें बताइए कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने से पहले एक गिलास पानी पी लो, खासतौर से वो लोग जो वजन घटाने की मुहिम चला रहे होते हैं, और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने के बीच बीच में पानी पीते जाओ थोड़ा थोड़ा, और कुछ लोग ये मानते हैं कि खाना खाने से पहले ना तो पानी पीना है, ना खाने के दौरान, ना खाने के बाद। ये जरा स्पष्ट कीजिए, क्या करना चाहिए?
1: इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, और मैं वही सोच रही हूँ कि सही अल्फाज क्या है इसके लिए, थोड़ा स्पष्टीकरण देने के लिए, क्योंकि ये सब विचारधारणा है, ये किसी किसी को आप अप्लाई कर सकते हो, हर किसी के लिए नहीं है। सीधी बात है, आपको पानी लगता है आप पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप

0: खाने के पहले एक ग्लास पानी पियोगे क्या हो जाएगा, आपके खाने पे असर पड़ेगा,
1: भूख कम हो जाएगी
0: आपकी
1: तुरंत।
0: भूख कम तो हो जाएगी, मगर ऐसा भी हो सकता है आप कम भूख के कारण खाने की कोई विशिष्ट चीज जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है आप
1: जरूरी
0: उसी को निकाल दो।
1: जी जी
0: जैसे भूख कम हो गई तो आपने रोटी सब्जी कर ली, दाल छोड़ दी, तो आपको दिक्कत देगा। अगर आप कर रहे हो तो उसके पीछे का शास्त्र समझ लो कि आप पानी पी रहे हो ताकि आपकी थोड़ी भूख कम हो जाए, मगर ऐसा करने के बाद अगर आपको 4 बजे बड़ी जोर की भूख लग रही है तो फिर क्या ही फायदा उस चीज करने का।
1: बिल्कुल।
0: वैसे ही आप पानी आधा घंटे पहले मत पियो, आधा घंटे बाद मत पियो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पानी किसको संभाल के पीना चाहिए, कुछ लोग जो होते हैं ना जो खाना खाने के वक्त पे कम चबाते हैं या उनको चबाना पसंद नहीं आता, तो ऐसे लोग जो है थोड़ा चबा लेते हैं खाना, बाकी पानी पी के उसको थोड़ा सा गटक लेते हैं, मुझे उसका सही अल्फाज नहीं पता, बट उसको पूरा स्वॉलो कर लेते हैं,
1: जी जी जी
0: तब आपके खाने की मात्रा बहुत कम हो जाती है और आप पानी से ही आपके खाने को अंदर ढकेल रहे हो, तो ये आपको तकलीफ देगा और बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, आपके डाइजेशन के हिसाब से भी तकलीफ देगा और आपको भूख के हिसाब से भी तकलीफ देगा। ऐसे वक्त पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सिप सिप करके पानी पी रहे, घूट घूट लेके पानी पी रहे खाने के दौर में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
1: जी बिल्कुल। और एक सवाल और है, वो ये कि एक वक्त में दो अनाज खाएं, एक अनाज जैसे कि या तो दाल चावल खाएं या फिर रोटी सब्जी खाएं, रोटी सब्जी शाम को खा लें, दिन में दाल चावल खा लें, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी थाली, जैसे पुराने जमाने में पूरी थाली सजा के खाई जाती थी, तो आपका क्या कहना है?
0: इसमें सीधी सी बात है, धान धान होता है, आपको आखिर में देखना है धान की मात्रा आपकी थाली में कितनी है। आप अगर रोटी भी कर रहे हो और चावल भी कर रहे हैं और आपकी आधी थाली उसी से भर रही है तो उसमें दिक्कत है। हमने क्या बात की थी कि थाली में 1/4 धान होना चाहिए, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप रोटी सब्जी अलग करें, दाल चावल अलग करें या साथ में करें। प्रॉब्लम ये आती है या दिक्कत ये आती है जब आप उसका प्रमाण बदल देते हो। अगर आपकी थाली में रोटी सब्जी है मगर आप सब्जी को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो और दाल चावल है मगर आप दाल को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो कम मात्रा में,
1: जी
0: तब आपकी थाली का संतुलन बदल जाता है।
1: जी
0: और 90% लोगों का यही इशू होता है कि उनकी थाली में आधे से ज्यादा धान होता है, एक छोटी मात्रा में सब्जी होती है और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है।
1: जी खाने का सही तरीका बहुत जरूरी है, और जिसको पित्त की समस्या, एसिडिटी की समस्या हो, तो उसे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत गलत फहमी है लोगों में कि कब क्या खाएं, दो भोजन के बीच में कितना गैप होना चाहिए।
0: इसका कोई एक सरल फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। किसी किसी को दिन में 3 बार खाने की आदत होती है, किसी को 5 बार खाने की आदत होती है। मुझे ऐसे लगता है और मैं हमेशा पेशेंट्स को भी यही बताती हूँ कि आपकी जो जिंदगी है, आपका जो रूटीन सेट है, आप उस तरीके से काम करो। अगर आप 3 बार खाते हो 3 बार खा लीजिए, मगर ये देखिए कि वो आहार संतुलित हो। अगर हम बात करें भूख की, दिक्कत ये है शहर में आजकल लोगों को यही समझ नहीं आता भूख कब लग रही है और प्यास कब लग रही है, बस 1 बज गया है तो अभी लंच करने जाना है ये समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को समझना जरूरी है कि मुझे भूख कब लग रही है, मुझे प्यास कब लग रही है।
1: तो क्या जब भूख लगे तभी खाना चाहिए या
0: ऐसा
1: टाइम?
0: जरूरी नहीं है, शरीर को जरूरत है उसकी समझे और आप अपना रूटीन सेट करें उस हिसाब से। मैं ये कहूंगी पहले तो रूटीन सेट करिए और उस वक्त पे आपके बॉडी को ट्रेन करिए कि आपको उस वक्त पे भूख लगे, मगर भूख लगना उस वक्त पे जरूरी है। बस 1 बजा है इसके लिए मुझे खाना है ये नहीं होना चाहिए, मुझे 1 बजे भूख लगनी चाहिए क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ये होना चाहिए। जब आपको भूख लगेगी वही अनाज वही थाली आपको अच्छे से शरीर आपका उसको एब्जॉर्ब करेगा। आपके दो खाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए ये निर्भर करता है आप कितनी मात्रा में खाते हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्वांटिटी में ज्यादा खाते हैं, खाने की मात्रा उनकी ज्यादा होती है, और कुछ लोग होते हैं जो एक वक्त पे एक रोटी या दो रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। जो कम खाते हैं उनको कई बार थोड़े थोड़े अंतर पे खाना जरूरी है, तो 2-3 घंटे के अंतर पे आप थोड़ा थोड़ा खा लेंगे अच्छा रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी खाने की मात्रा ज्यादा है तो आप दिन में 3 बार खा लोगे आप ठीक है।

0: रहोगे। अगर आपको जैसे एसिडिटी या गैस की दिक्कत है तो आपको थोड़ा थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। आपको ब्लड शुगर की इश्यू है तब भी आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए ताकि आपका शुगर स्टेबल रहे। अगर आप दिन में 3 बार खा रहे हो जस्ट इसलिए कि अभी ट्रेंड चल रहा है दिन में 1 बार खाने का, आप डायरेक्टली 3 से 1 पर आ गए, वो दिक्कत करेगा
1: जी, अभी 2 टाइम का भी चल रहा
0: बहुत
1: है फैशन
0: ज्यादा।
1: कि सिर्फ 2 टाइम खाना खा रहा है। यहाँ पर एक जरूरी बात जहन में आई है, वो ये कि कई बार लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो सलाद भी रख लिया, दही भी रख लिया, फल भी रख लिया काट के, और पूरी थाली भी।
0: हाँ
1: तो क्या फल और खाना एक साथ खाना चाहिए या उसे बीच में गैप देना चाहिए?
0: हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि फल ऐसी चीज है जो हमारे पूरे खाने में हम उसे बिना पकाए खाते हैं,
1: जी,
0: तो उसे ऐसे वक्त पे खाएं जहां आप उसका मजा अलग से ले पाए। जहां पका हुआ खाना जा रहा है वहां पे वो होना चाहिए। सलाड आपके खाने में जा सकता है, वो कच्चा होता है, मगर सलाड हर किसी को सूट करता है ऐसा नहीं है। इसका मतलब कच्चा खाना सबके लिए है नहीं,
1: बिल्कुल,
0: आपकी सेहत के हिसाब से, आपके पेट कैसा काम कर रहा है उस हिसाब से आपका सलाद पका हुआ हो या कच्चा होना चाहिए, ये देखना आपको जरूरी होता है। फल आपको हमेशा अलग से ही खाने होते हैं, और कभी भी फल के साथ आपके नट्स जाने चाहिए। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि नॉर्मली लोग 8-9 बजे नाश्ता कर लेते हैं, 1 बजे खाना खाते हैं, और जो रात का खाना होता है वो अक्सर 8-9-10 बजे चला जाता है, तो आपके दोपहर के खाने और रात के खाने में बहुत बड़ी गैप हो जाती है। तो ऐसे वक्त पे इसके बीच में वहां पे फल और आपका जो नट्स है वो बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। अभी आपको ये भी देखना है कि 5 से 7 के बीच में ही आपको समोसे चाट की जरूरत पड़ती है, तो वो भूख लगने के पहले और आपके दोस्त आपको बताने के पहले कि चलो हम जाके समोसा
1: जी
0: खाते, उस वक्त पे आपका फल और नट्स खा लीजिए और
1: हाँ
0: आपकी सेहत बढ़िया रहेगी।
1: जी, एक गाना सुने,
0: जी
1: कौन सा?
0: क्यों ना, ये जीवन है
1: इस
0: पिया
1: जीवन
0: का घर,
1: जी इस जीवन का यही
0: इस
1: है
0: जीवन
1: रंग रूप।

उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण।

0: और कुछ लोगों का ये भी मानना है रोटी के मामले में कि गेहूं की रोटी नहीं पचती है, देर से पचती है, और मोटा अनाज ज्वार बाजरा और नाचनी, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: अगर हम गेहूं की बात करें, एक ट्रेंड चल रहा है जहां पे लोग बोलते हैं कि गेहूं बहुत बुरा है। गेहूं हर किसी के लिए बुरा नहीं है। अगर आपको एलर्जीज हैं या IBS IBD जैसे कोई मेडिकल कंडीशन है, तब आपको, या आप गेहूं जब भी खाते हो आपको थोड़ी बहुत डाइजेशन की इश्यू होती है, गैस की इश्यू होती है, तब गेहूं दिक्कत दे रहा है आपको, और तब आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
0: तो वहां
1: मतलब
0: पर
1: आपकी थाली में गेहूं नहीं होना चाहिए या कम मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि वो आपको तकलीफ दे रहा है। बाकियों को गेहूं से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। कि आप गेहूं कौन से तरीके का यूज कर रहे हो ये देखिए,
0: जी।
1: जिसमें आपके पास खपली गेहूं है जो सबसे बेहतर है, उसके बाद आपके पास अलग अलग तरीके के गेहूं हैं, आप कौन सी वैरायटी यूज कर रहे हो ये भी देखिए, और उसमें आप जो गेहूं के ऊपर का छिलका होता है, ब्रान होता है, वो इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं खाने में, रोटी में, ये देखिए आप सही रहोगे। रोटी गलत नहीं है, रोटी हर किसी को तकलीफ देती है ऐसा भी नहीं है। अगर हम ज्वार बाजरा की बात करें, मिलेट्स बहुत ज्यादा चर्चा में है एक दो
0: बिल्कुल
1: सालों से, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मिलेट्स हम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में, आज उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है, मगर लोगों को उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आज भी नहीं आता है। ये जो मिलेट है या मोटे अनाज है, ये बहुत बार आप देखोगे थोड़े सूखे या ड्राई टेंडेंसी के होते हैं। ये कम खाएंगे तब भी आपको एकदम ऐसे लगेगा कि भरा भरा पेट लग रहा है, या पेट बहुत टाइट हो रहा है, या आप और एक ज्वार की रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। अच्छे हैं मगर वो भी सही मात्रा में आपके दिन में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको थायराइड जैसा इशू हो और आप पूरी तरीके से मिलेट्स पे रह जाए, आपको दिक्कत होगी। तो एक संतुलन गेहूं और मिलेट्स के बीच में रखना, चावल के बीच में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो संतुलन जमा लिया तो आपका पेट सही रहेगा। दूसरी चीज मुझे ये हमेशा दिखती है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, आंकड़ों के पीछे पड़े रहते हैं। इसका
0: जी
1: मतलब क्या होता है कि उनकी प्लेट में उनको या थाली में उनको दो रोटी चाहिए होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो गेहूं की है, ज्वार की है, बाजरा की है। अभी ये दिक्कत है कि एक फुल्का या एक रोटी जो है 20 से 30 ग्राम आटे की बनती है, और एक ज्वार की रोटी जो है 50 से 60 ग्राम आटे की बनती है।
0: बिल्कुल
1: तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने ज्वार बाजरा जो भी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया, जहाँ कि आप रोटी एकदम हल्के फुल्के में काम चला लेते हैं।
0: तो पाचन पर असर पड़ेगा।
1: जी, तो ये लोग सोचते ही नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं है। तो ये आपको देखना जरूरी है कि आपकी पाचन क्रिया कैसी है, आपका पेट कैसा है, क्या आप मिलेट्स को डाइजेस्ट कर पा रहे हो, और अगर आप मिलेट्स को आपके खाने में, रोजमर्रा की जिंदगी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो या डालना चाहते हो, आप किस तरीके से डाल रहे हो।
0: जी
1: आप अगर मिलेट्स बिल्कुल भी नहीं खा रहे तो तुरंत से पूरे हफ्ते मिलेट्स ना करें, हफ्ते में एक दो बार करें, फिर 3-4 बार करें, धीरे धीरे मिलेट्स की आदत लगाएं। और ज्वार बाजरा नाचनी के आगे भी हमारे पास धान है, उसका
0: जी
1: भी इस्तेमाल करें, जैसे कोड़ो हो गया, कांग हो गया, पोर्सो हो गया, महाराष्ट्र में वरी हो गया, ये सारे भी तो धान हैं, वो भी तो
0: जी
1: इस्तेमाल कर सकते हैं। सूडो मिलेट्स हैं जैसे कि किनवा हो गया, कुट्टू हो गया, बकवीट जिसे बोला जाता है। किनवा को तो हिंदी मराठी नाम है नहीं, किनवा को किनवा ही बोलते हैं।
0: सावा।
1: नहीं,
0: अच्छा
1: सामा है जो कि होता है महाराष्ट्र में वरी।

0: बार्नयार्ड मिलेट,
1: जी
0: तो ये
1: जी
0: सारी चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमें सिर्फ रोटी और उसके आगे ज्वार बाजरा नाचने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें बस कुछ चीजें पता नहीं है और कुछ चीजें हमें इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो आप सही तरीका सीख लो तो हो जाएगा। जब भी आप मोटे धान की बात करें और आप अगर अक्खा धान यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से 4 से 6 घंटे भिगो के रखना बहुत जरूरी है, और सही मात्रा में पानी डाल के उसको पकाना बहुत जरूरी है। उसके साथ आप किस तरीके की सब्जी खा रहे हो, अगर आप मोटा धान इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ जो सब्जियों में पानी का अंश ज्यादा होता है, जैसे दूधी हो गया, कद्दू हो गया, पेठा हो गया, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें, तो वो आपका सूखी रोटी और उसके साथ गीली सब्जी, ये थोड़ा सा बैलेंस आपके पेट के लिए बहुत अच्छा ठहरता है।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: तो
1: ये
0: ये
1: तो
0: थोड़ा संतुलन आपको समझना चाहिए और आपको धीरे धीरे अपने खाने को उस तरीके से बदलना जरूरी है।
1: एक गाना सुने,
0: जी
1: कौन सा
0: आप भी बता दीजिए कोई गाना।
1: सुनते हैं ये गाना।
2: एक बार

0: तो जो आप धान की बात कर रही थी, धान में ये सारी चीजें आती हैं।
1: जी
0: धान में सिर्फ वो चावल जो हम रोज खाते हैं वो नहीं, बल्कि
1: हाँ,
0: ये कोदो और जो नाम
1: बहुत
0: आपने
1: ज्यादा।
0: बताया।
1: और आप अगर चावल की ही बात करें तो भारत ऐसा देश है जहाँ हमारे पास 150-200 तरीके के चावल है,
0: बिल्कुल,
1: मगर हम एक ही चीज जानते
0: सिर्फ
1: हैं,
0: खुशबूदार
1: सफेद
0: चावल।
1: चावल,
0: बिल्कुल, और खुश।
1: खुशबूदार चावल, बासमती चावल, इतना ही जानते हैं। थोड़ा हमारे जो चावल के अनाज है जो हमारे पास है, जैसे अंबे मोहर है, मट्टा है केरला का, या असम का ब्लैक राइस है, जो आपके यहाँ है, या कृष्ण कमोद है, आप वो चावल का
0: ब्राउन
1: इस्तेमाल
0: राइस
1: करें।
0: भी एक आता है।
1: ब्राउन राइस आता है, मगर उससे अच्छा हमारे पास बहुत सारे चावल है, अनपॉलिश्ड वैरायटी का चावल इस्तेमाल करें या सेमी पॉलिश्ड वैरायटी इस्तेमाल करें। बहुत खुशबूदार, बहुत फ्लेवरफुल चावल आते हैं हमारे पास। सफेद चावल में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहता है, उसका
0: अच्छा,
1: सब कुछ निकाला हुआ होता है, बस हल्का सा बी विटामिन आपको मिल जाएगा, बाकी सब वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट है।
0: क्या बात है, बहुत सही जानकारी आपने दी है। पहले ग्रामीण इलाकों में आज भी
1: आज भी वही
0: धान को
1: इस्तेमाल,
0: उबालकर चावल

0: बनाया जाता है, वो उसको उसना चावल कहते हैं,
1: हाँ,
0: वो बहुत
1: हमारे यहाँ
0: मोटा होता
1: उकड़ा
0: है।
1: तांदूल बोलते हैं
0: हाँ
1: महाराष्ट्र में, जहाँ हम वही राइस को यूज़ करते हैं,
0: जी जी जी
1: जिसमें अच्छा ब्रान भी होता है, विटामिन भी होते हैं,
0: हाँ
1: वो मोटा होता है तो आप कम भी खाते हो।
0: अदिति जी, बहुत जरूरी मुद्दा है आजकल तेल के बारे में, कि पुराने जमाने में तो हम सबको याद है कि सरसों का तेल सब्जियों में इस्तेमाल होता था, और कुछ जगहों पर नारियल का तेल, साउथ में खास तौर से, अलग अलग जगहों पर। और आजकल तरह तरह के तेल हैं, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर, राइस ब्रॉन, तो बताइए कि कौन सा तेल सब्जियों के लिए सही होता है इस्तेमाल करना।
1: आप जिस जगह रहते हो उस जगह आपके आजू बाजू में कौन से पेड़ ज्यादा है, उस हिसाब से उस इलाके में वो तेल ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की बारे में बात करें तो वहाँ पे आपको सरसों का इस्तेमाल ज्यादा मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें या साउथ की बात करें तो नारियल का तेल ज्यादा मिलेगा। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो ये सारे तेल अभी हम सबको मिल रहे हैं। कोई तेल बुरा हम नहीं बोल सकते, हर तेल अपने तरीके से सही है। किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वो बुरा हो सकता है। मुख्य क्या होता है कि आपके खाने में तेल की मात्रा कितनी है। आप अगर आपके खाने में, जैसे एक इंसान को पूरे दिन में तेल की मात्रा 3 से 4 चम्मच रखनी चाहिए,
0: ओ
1: छोटे चम्मच,
0: हो
1: 5 ml के चम्मच, उसके ऊपर नहीं।
0: जी
1: मगर हम कभी गिन के थोड़ी ना तेल इस्तेमाल करते, अंदाजे से भिंडी की सब्जी को थोड़ा ज्यादा तेल डाल दिया, कोई पत्ते की सब्जी है तो उसमें कम तेल डाल दिया, हम स्वाद अनुसार तेल इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अगर हम तेलों की बात करें कि कौन सा सबसे अच्छा होता है, सबसे पहले आप देखिए कि आपको मेडिकल इश्यूज है या नहीं। कुछ मेडिकल इश्यूज में कुछ तेल हम मना कर देते हैं, बाकी केस में अगर आपको कोई इश्यूज नहीं है, आप सेहतमंद है, आपको बस आपकी तबीयत का ख्याल रखना है, तो इसका सिंपल तरीका यह है कि आप पारंपरिक तौर से आप जो तेल खा रहे हो उसका इस्तेमाल करें, बाकी तेल भी अपने रूटीन में रखें, उसको थोड़ा सा साइकिल करें। मतलब अगर 1 महीना आप सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिर राइस ब्रैन को लेकर आए, फिर आप सरसों पे चले जाए, फिर सनफ्लावर का इस्तेमाल करें, ऐसे थोड़े आप बदलाव लेकर आ सकते हैं। आखिर में आपकी तेल की मात्रा कितनी है ये मायने रखता है।
0: जी
1: कुछ तेल होते हैं जिनको बहुत बुरा नाम पड़ा है, जैसे पाम ऑयल है, क्योंकि ये ज्यादा करके पैकेज फूड बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: तो हाँ, ये बुरा है क्योंकि उसकी जो गुणधर्म है वो आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पैकेज फूड और प्रोसेस फूड कितना खा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल
1: आखिर में गिन के आप पूरे दिन में तेल कितना खा रहे हो। और तेल भी दो तरीके से हम देखते हैं, नॉर्मल लोग सिर्फ तेल को गिनते हैं, हम डाइटिशियंस दो तरीके से देखेंगे,
0: जी
1: विजिबल सोर्सेस जो कि दिखते हैं, मतलब आपका तेल, घी, बटर, चीज, और दूसरा होता है इनविजिबल सोर्सेस, मतलब दूध में से आने वाला फैट, आपके नट्स में से आने वाला फैट, ये भी तो जरूरी है।
0: जी जी
1: तो अगर आप पूरे दिन में 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट ही खा रहे हैं और आपकी सब्जी तेल में तैर रही है
0: बिल्कुल
1: तो आप ज्यादा तेल खा रहे हो, आपको तकलीफ
0: होनी
1: होने
0: होनी
1: ही
0: है
1: वाली
0: बिल्कुल
1: है। आखिर में तेल की मात्रा कितनी है वो ज्यादा मायने रखती है, और अपने तेल को बदलते रहिए। कौन सा तेल अच्छा है, क्या केमिकली रिफाइंड तेल अच्छा है, फिजिकली रिफाइंड अच्छा है, वुड प्रेस्ड अच्छा है, कोल्ड प्रेस अच्छा है, तो फिजिकली रिफाइंड या घानी, वुड प्रेस, कोल्ड प्रेस, ये अच्छे हैं। जितना हो सके केमिकल जो फिल्टर्ड होता है वो थोड़ा सा दूर रखें। अगर शहर में रह रहे हैं या आपको दिक्कत है, आपको एक्सेसिबिलिटी या फाइनेंस का इशू है, तो आप जो भी तेल मिल रहा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली अफोर्डेबल है तो घानी का तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल, वुड प्रेस ऑयल, इसकी तरफ थोड़ा सा मुड़ जाइए। वो तेल थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, तबीयत के लिए भी अच्छा होता है, और उसमें गुणधर्म भी अच्छे खासे होते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: वो
0: जी
1: इस्तेमाल आप कर सकते हो।
0: जी बिल्कुल घानी का तेल, यानी जो कोल्हू के बैल से निकाला जाता है ताजा
1: जी
0: तेल, सरसों का तेल खास तौर से होता है। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
1: जी

0: और घी के बारे में भी बताइए। घी के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां, लोग चुपड़ के घी खाते हैं कुछ लोग, कुछ लोग कहते हैं कि अरे इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी खाते ही नहीं। तो घी क्या है बताइए।
1: घी भी फैट का एक ही रूप है। आप तेल खाओ, घी खाओ, बटर खाओ, चीज खाओ, उसके रूप अनेक है।
0: अच्छा।
1: आखिर में मात्रा आपकी मैटर करती है। जो कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि दिन में आपकी 3 से 4 चम्मच तेल होना चाहिए, उसमें घी भी आता है। आप 4ों चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो या उसमें से 1 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या घी खाने से फायदा है? हाँ, पेट के लिए अच्छा है, तबीयत के लिए अच्छा है। आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हो तब भी आपको फायदेमंद ठहरेगा। अगर आपको ब्लॉकेज इश्यूज है, हार्ट इश्यूज है, या आपको कोई मेडिकल बाकी के कंडीशन है, तो आपको घी को थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी है। अगर आप घी नहीं खाते हो, क्या आपको कोई नुकसान है? नहीं, बिना घी खाए भी आप अच्छे खासे जिंदगी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको घी खाना जरूरी है जिंदगी में। तो आखिर में आप कितनी मात्रा में खा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है।
0: जला हुआ घी नहीं खाना चाहिए
1: नहीं
0: पराठे के रूप
1: जी,
0: में, पूड़ी और पराठे के रूप
1: बहुत ज्यादा
0: में। अदिति जी, घी तेल सब कुछ शामिल हो गया, और हर खाने में मिठाई भी शामिल होता है। कुछ लोगों के साथ तो ये दिक्कत है कि हर खाने के बाद उनको मीठा चाहिए, तलब होती है। तो ये मिठाई के खाने के बारे में बताइए कि खाने के बाद, खाने के साथ खाना जरूरी है, खाने से पहले या बाद में, या नहीं खाना चाहिए?
1: अगर आप मिठाई खाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको।

0: हेल्दी रूप थोड़े से देख लीजिए, जैसे आपको खजूर मिल जाएगा, या आपने थोड़ा चना और गुड़ ले लिया, या आपने छोटा चिक्की चिक्की का टुकड़ा ले लिया, आप इसका इस्तेमाल करें, ना कि गुलाब जामुन या और कोई तली हुई मिठाई, मावा जलेबी, इसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा, आखिर में पूरे दिन में आपने कार्बोहाइड्रेट कितने खाए हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग जो है खाने में भी शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो मतलब आप चाय में शक्कर गुड़ खा रहे हैं, आपके खाने में गुड़ और शक्कर जा रहा है, और फिर आपकी मिठाई में भी शक्कर है। तो आपने यहाँ फॉर्मूला बना लिया आपका ब्लड शुगर बढ़ाने का। इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा क्योंकि आप हर जगह पे मिठाई खा रहे हो। अभी कुछ लोग बोलेंगे हमें तो ब्लड शुगर नहीं है, हम तो जिंदगी भर खा रहे हैं। अच्छी बात है, हो गए, आपकी तबीयत उतनी अच्छी है, हो गया। मगर क्या ये हर कोई कर सकता है? नहीं, वो हर किसी को तकलीफ दे सकता है। तो मिठाई भी आखिर में आपको ये देखनी है कि क्या ये मेरे को फायदा देने वाली है। आज के टाइम में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मिठाई आ रही है जो कि आपकी तबीयत को भी संभाल सकती है और मीठे की क्रेविंग को भी संभाल सकती है। जैसे डार्क चॉकलेट हो गया, या आप छेना इस्तेमाल करो, रसगुल्ले का छेना वो आप यूज करो। खीर
1: खीर घर में बना के।
0: भी आखिर में दूध और शक्कर ही आई, और उसमें अगर आपने साबुदाना डाल दिया तो खत्म। तो आपने एकदम एकदम ऐसा फॉर्मूला बना दिया जहाँ पे शुगर बढ़ जाएगा। तो ये कितने मात्रा में खा रहे हैं, पूरे दिन में कितनी शक्कर गुड़ जा रही है, और ओवरऑल आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है, इस पे निर्भर करेगा कि क्या आप मिठाई खा सकते हो या नहीं। दूसरी चीज ये होती है कि बहुत ज्यादा मीठा खाने से ना कुछ लोग कई सालों तक उनको आदत होती है मीठा मीठा खाने की, कार्बोहाइड्रेट खाने की। इसकी वजह से उनकी टेस्ट बड्स जो है ना वो भी थोड़े चेंज हो गए। उनको हर चीज उस तरीके से टेस्ट नहीं आती, तो जब वो मिठाई थोड़े दिन के लिए निकाल लेते हैं तब उनको वही मिठाई कितनी मीठी है वो पता चलेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो मिठाई बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो फटक से बोलेंगे आपकी 1 चम्मच शक्कर भी बहुत ज्यादा है। वो क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि उनके टेस्ट बड अभी वापस ट्रेन हो गए कि जो निसर्ग में जो चीजें जैसी हैं वो उनके फ्लेवर्स का मजा उस तरीके से ले ले। तो
1: बिल्कुल,
0: हमें उस चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है।
1: मतलब ये भी है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम खाना कम खा लें, मिठाई ज्यादा खा लें,
0: हाँ,
1: तो वो भी ठीक नहीं है,
0: ठीक नहीं है।
1: क्योंकि मीठा तत्व तो आपके शरीर में
0: हाँ,
1: जा रहा
0: और
1: है जो
0: कुछ लोग ऐसे
1: हानिकारक
0: बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, डाइट भी कर रही हूँ, मगर वेट लॉस नहीं हो रहा है, या मेरी शक्कर कम नहीं हो रही है, तभी भी अक्सर गुनहगार वो मिठाई ही होती है।
1: बिल्कुल। तो अब इस मिठाई के साथ ही मीठी मीठी बातों को हम विराम दे रहे हैं। अदिति जी, बड़ी ढेर सारी जानकारी आपने साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। एक गाना सुने
0: जी।

पोषण माह के उपलक्ष्य में सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपने सुना न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा साया साथ होगा।
4: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी।

शाम का वक्त हो, चाय की प्याली हो और सामने अपने युवा दोस्त हो, तो बातचीत में अपनापन अपने आप खुल जाता है। ऐसी ही छोटी छोटी चर्चाओं को हम जागरूकता का माध्यम बना सकते हैं। बात शुरू हो किसी खबर से और पहुंच जाए पर्यावरण, साइबर सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों तक। जरूरी नहीं कि हर बात में तर्क वितर्क हो, कभी दोस्ताना अंदाज में कही गई एक छोटी सी बात भी सोच हमारी बदल सकती है। हम एक दूसरे को टोकने के बजाय समझाएं, सवाल पूछें और अच्छे काम के लिए प्रेरित करें। आखिर बदलाव हमेशा बड़ी आवाज से नहीं आती, कई बार दोस्तों के बीच हुई मीठी सी बातचीत भी नई सोच की शुरुआत बन जाती है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युवाणी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो हम सफर रानी राजश्री। दोस्तों, कार्यक्रम में चर्चा के साथ आगे बढ़ते हैं और चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिंदी दिवस के बारे में, क्योंकि आज है 14 सितंबर। दोस्तों, हिंदी दिवस हमारे लिए सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि अपनी भाषा, अपनी पहचान से जुड़ने का एक खूबसूरत अवसर है। हिंदी वह भाषा है जिसमें हम अपने सुख दुख, अपने रिश्तों और अपने अनुभवों को

0: बहुत सहजता से व्यक्त कर सकते हैं। घर में माँ की आवाज से लेकर दोस्तों के साथ होने वाली बातचीत तक हिंदी हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। यह भाषा देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों को एक साथ एक दूसरे से जोड़ने का काम भी करती है। दोस्तों, हिंदी की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी सहजता और इसका अपनापन है। इसमें नए शब्दों को अपनाने और समय के साथ बदलने की अद्भुत क्षमता है। आज हिंदी केवल किताबों और कक्षाओं तक सीमित नहीं है। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट पर हिंदी की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। लोग अपने विचार, अपनी कहानियाँ, कविताएं और जानकारी हिंदी में दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। तकनीक ने तो हिंदी को आगे बढ़ने के और भी नए रास्ते दिए हैं। अब मोबाइल पर हिंदी में लिखना, बोलना और जानकारी हासिल करना पहले से कहीं आसान हो गया है। दोस्तों, चलिए इसी क्रम में अब वार्ता सुनते हैं, जिसका विषय है हिंदी के साथ बढ़ता युवा, बढ़ता भारत। और वार्ताकार हैं गायत्री पाल।
1: आकाशवाणी के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम गायत्री पाल। कहा जाता है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा पीढ़ी होती है, और जब यही युवा अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़कर आगे बढ़ता है, तो उसकी प्रगति केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता नहीं रहती, बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति बन जाती है। तो आइए आज इसी बात पर विचार करें कि हिंदी के साथ हमारे युवाओं की प्रगति किस प्रकार भारत की प्रगति को नई दिशा दे सकती है। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ युवा आधुनिक भी है और अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ भी। उसके हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन दिल में मिट्टी की खुशबू भी है। वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझता है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से बात कर सकता है, नई तकनीक सीख सकता है, अंतरिक्ष की बातें कर सकता है। लेकिन जब वह अपनी भावनाएं व्यक्त करता है तो अक्सर उसकी सहज भाषा हिंदी ही बन जाती है। लेकिन जब वह अपनी भावनाएं व्यक्त करता है तो अक्सर उसकी सबसे सहज भाषा हिंदी ही बन जाती है। यही हिंदी और युवा का रिश्ता आज भारत के भविष्य की एक बड़ी ताकत बन सकता है। सिर्फ हिंदी बोलने या लिखने की भाषा नहीं है, यह करोड़ों लोगों के सपनों की भाषा है। यह वह भाषा है जिसमें माँ बच्चे को पहली बार पुकारती है, जिसमें दोस्त अपने दिल की बात कहते हैं, जिसमें किसान अपनी मेहनत का हिसाब करता है और जिसमें एक युवा अपने भविष्य के सपने बुनता है। हिंदी हमारे लिए केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि संवेदनाओं, अनुभवों और विचारों को जोड़ने वाला एक पुल है। आज का युवा उस दौर में जी रहा है जहां दुनिया उसकी हथेली में है। इंटरनेट ने सीमाएं छोटी कर दी हैं। पढ़ाई के लिए दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों की सामग्री उपलब्ध है। नौकरी के लिए नए अवसर हैं। कारोबार शुरू करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सोशल मीडिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पूरी डिजिटल दुनिया में हिंदी के लिए भी उतनी ही जगह है? मेरा जवाब है, बिल्कुल है। और इसे और बड़ा करने की जिम्मेदारी भी हमारे युवाओं की है। आज हिंदी में ब्लॉग लिखे जा रहे हैं, पॉडकास्ट बन रहे हैं, चैनल चल रहे हैं, डिजिटल समाचार मंच तैयार हो रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा के पाठ्यक्रम बन रहे हैं और लाखों लोग हिंदी में अपनी बात दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। यानी हिंदी अब केवल किताबों और कागजों की भाषा नहीं रही, वह स्क्रीन पर आ चुकी है, मोबाइल पर आ चुकी है और डिजिटल दुनिया के नए बाजार में अपनी पहचान बना रही है। यहीं से एक नया अवसर पैदा होता है। जिस युवा के पास हुनर है और जो हिंदी में अपनी बात प्रभावी ढंग से कह सकता है, उसके सामने संभावनाओं की कमी नहीं है। कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पत्रकारिता, अनुवाद, वॉइस ओवर, पॉडकास्टिंग, शिक्षा विज्ञापन और मनोरंजन जैसे कितने ही क्षेत्र हिंदी के माध्यम से युवाओं को नए अवसर दे रहे हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम हिंदी को सीमित न समझें। कई बार हमारे मन में एक अजीब सी धारणा बैठ जाती है कि आगे बढ़ने के लिए केवल अंग्रेजी जरूरी है। अंग्रेजी सीखना निश्चित रूप से उपयोगी है। दुनिया से जुड़ने के लिए जितनी भाषाएं सीखें उतना अच्छा है, लेकिन किसी दूसरी भाषा को

सीखने के लिए अपनी भाषा को पीछे छोड़ देना समझदारी नहीं है। असली ताकत तब आती है जब युवा कई भाषाएं जानता हो लेकिन अपनी जड़ों से उनका रिश्ता मजबूत बना रहे। हमें ये समझना होगा कि भाषा किसी प्रतियोगिता का विषय नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी को आमने सामने खड़ा करने के बजाय हमें दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। अंग्रेजी हमें दुनिया से जोड़ सकती है और हिंदी हमें अपने लोगों से गहराई से जोड़ सकती है। दूसरी भारतीय भाषाएं हमें देश की विविधता से परिचित करा सकती है। यही तो भारत की खूबसूरती है, एक देश, अनेक भाषाएं और फिर एक साझा भावना। हमारे साहित्य ने युवाओं को हमेशा आवाज दी है। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिर्फ कविता की पंक्ति नहीं लगती बल्कि युवा चेतना का आवाहन सुनाई देती है। यह याद दिलाती है कि परिवर्तन किसी दूर बैठे व्यक्ति के आने का इंतजार नहीं करता। परिवर्तन तब शुरू होता है जब युवा खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्ति, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, युवा मन को जैसे भीतर से आवाज देती है कि रास्ते कठिन हो तो भी कदम रुकने नहीं चाहिए। यही जिद, यही आत्मविश्वास और यही सकारात्मक संघर्ष भारत को आगे ले जाने वाली ऊर्जा बन सकता है। आज भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है उसमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। विकसित भारत का सपना केवल सरकार की योजनाओं से पूरा नहीं होगा, उसके लिए ऐसे युवा चाहिए जो नौकरी तलाशने के साथ साथ नौकरी देने का भी सपना देखें, जो समस्या देखकर शिकायत करने के बजाय समाधान खोजें, जो तकनीकी का इस्तेमाल केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान और नवाचार के लिए करें। और इस पूरी यात्रा में हिंदी की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। मान लीजिए किसी छोटे शहर या गांव का कोई युवा नई तकनीक सीखना चाहता है लेकिन उसे जानकारी अपनी भाषा में आसानी से नहीं मिलती। अगर वही जानकारी सरल और सहज हिंदी में उपलब्ध हो जाए तो कितनी ही युवाओं के लिए अवसरों के दरवाजे खुल सकते हैं। यही भाषा की असली ताकत है। वह ज्ञान को कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहने देती बल्कि उसे समाज के बड़े हिस्से तक पहुंचाती है। आज हमें हिंदी में विज्ञान चाहिए, हिंदी में तकनीक चाहिए, हिंदी में स्टार्टअप की जानकारी चाहिए, हिंदी में कानून और वित्त की समझ चाहिए, हिंदी में स्वास्थ्य और शिक्षा की विश्वसनीय सामग्री चाहिए। क्योंकि जब ज्ञान अपनी भाषा में समझ आता है तो वह केवल सूचना नहीं रहता, वह आत्मविश्वास बन जाता है। एक युवा जब अपनी भाषा में सोचता है तो वह अपनी बात ज्यादा सहजता से रख पाता है, उसकी कल्पना को शब्द मिलते हैं, उसके विचार को पहचान मिलती है। इसलिए हिंदी को केवल भावनाओं की भाषा मानना भी उचित नहीं होगा। हिंदी विचार की भाषा है, विज्ञान की भाषा भी बन सकती है, रोजगार की भाषा भी और उद्यमिता की भाषा भी। हमें अपने स्कूलों और कॉलेजों में भी भाषा को लेकर सोच बदलनी होगी। हिंदी में बोलने वाले विद्यार्थी को कमतर समझना या अंग्रेजी बोलने वाले को अपने आप अधिक योग्य मान लेना सही नहीं है। योग्यता किसी भाषा की मोहताज नहीं होती, भाषा तो उस योग्यता को व्यक्त करने का माध्यम है। आज जरूरत इस बात की है हमारा युवा अपनी भाषा में आत्मविश्वास महसूस करे, वह हिंदी बोलते समय झिझके नहीं, हिंदी लिखते समय संकोच न करे और हिंदी में नया प्रयोग करने से डरे नहीं। अगर युवा अपनी भाषा में तकनीक की बात कर सकता है, कारोबार की बात कर सकता है, अंतरिक्ष की बात कर सकता है और विश्व के मुद्दों पर विचार रख सकता है तो हिंदी की दुनिया अपने आप बड़ी होती चली जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम हिंदी को केवल गर्व का विषय बनाकर छोड़ दें। भाषा से प्रेम का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे उपयोग में लाया जाए। अच्छी हिंदी लिखें, सरल हिंदी बोलें, नए शब्द सीखें, साहित्य पढ़ें और डिजिटल माध्यमों पर गुणवत्तापूर्ण हिंदी सामग्री तैयार करें। हिंदी दिवस पर हिंदी की बातें करना आसान है लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदी के लिए जगह बनाना असली काम है। युवा अगर चाहे तो सोशल मीडिया की दुनिया को भी सकारात्मक दिशा दे सकता है। कुछ मिनट का एक अच्छा वीडियो किसी विद्यार्थी को नई जानकारी दे सकता है, एक छोटा सा पॉडकास्ट किसी युवा को नई प्रेरणा दे सकता है, हिंदी में लिखा गया एक अच्छा लेख किसी व्यक्ति की सोच बदल सकता है। यानी आज एक युवा के हाथ में सिर्फ मोबाइल नहीं है, उसके हाथ में प्रभाव पैदा करने की शक्ति है और यही शक्ति जिम्मेदारी भी मांगती है। डिजिटल दुनिया में भाषा का इस्तेमाल करते समय हमें अफवाहों, गलत सूचनाओं और नफरत फैलाने वाली सामग्री से बचना होगा। हिंदी में सामग्री बढ़े लेकिन उसके साथ उसकी गुणवत्ता भी बढ़े।
हमारी भाषा जितनी व्यापक

0: होगी, हमारी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होगी। भारत की असली प्रगति तब होगी जब दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के साथ साथ छोटे शहरों और गांवों का युवा भी डिजिटल भारत की कहानी का हिस्सा बनेगा। जब कोई विद्यार्थी अपने गांव में बैठकर हिंदी में ऑनलाइन सीख सकेगा, अपने हुनर का डिजिटल व्यवसाय खड़ा कर सकेगा और दुनिया के किसी भी ग्राहक तक पहुंच सकेगा, तब भाषा और तकनीक का मिलन वास्तव में परिवर्तन की कहानी लिखेगा। हिंदी के साथ बढ़ता युवा दरअसल केवल हिंदी का विकास नहीं है, वह उस भारत की तस्वीर है जहां ज्ञान किसी एक भाषा का वर्ग की सीमा में कैद नहीं रहेगा, जहां प्रतिभा को अपनी बात कहने के लिए किसी दूसरी पहचान की जरूरत नहीं होगी, जहां युवा अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आसमान छू सकेगा। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां युवा आधुनिकता को अपनाए लेकिन अपनी पहचान न खोए, तकनीक को अपनाए लेकिन संवेदनाएं न भूले, दुनिया से जुड़े लेकिन अपनी मिट्टी से रिश्ता न तोड़े, क्योंकि जड़ें मजबूत हों तो पेड़ जितना ऊंचा बढ़े उतना ही सुंदर लगता है। आज भारत के युवा के सामने अवसरों का एक विशाल आकाश है। सवाल सिर्फ ये है कि वह उस आकाश की ओर देखता है या उड़ान भरने की साहस भी रखता है। अगर उसके पास ज्ञान है, मेहनत है, तकनीक है, अपनी भाषा का आत्मविश्वास है और देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो फिर भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी हम सोचते हैं कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन शायद सवाल थोड़ा बदलना चाहिए। हम अपने रोजमर्रा के काम को देश के काम से कैसे जोड़ सकते हैं? एक युवा ईमानदारी से अपना काम करे, नई चीज सीखे, किसी जरूरतमंद को सिखाए, अपनी भाषा में उपयोगी ज्ञान बांटे, स्थानीय प्रतिभा को मंच दे, नए रोजगार पैदा करे और समाज में सकारात्मक सोच फैलाए, तो यह भी राष्ट्र निर्माण ही है। भारत की कहानी केवल बड़े शहरों, बड़ी कंपनियों और बड़े प्रोजेक्टों से नहीं लिखी जाएगी, यह कहानी उन करोड़ों युवाओं के छोटे छोटे प्रयासों से लिखी जाएगी जो अपने अपने क्षेत्र में बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस कहानी की भाषा हिंदी भी होगी, वह हिंदी जो युवा को उसकी जड़ों से जोड़ेगी और दुनिया से संवाद करने का आत्मविश्वास भी देगी। क्योंकि जब युवा बढ़ता है तो केवल एक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, उसके साथ एक परिवार बढ़ता है, एक समाज बढ़ता है और अंततः पूरा देश बढ़ता है। इसलिए हिंदी के साथ बढ़ता युवा, बढ़ता भारत केवल एक विचार नहीं बल्कि आने वाले भारत की तस्वीर है। ऐसा भारत जहां युवा अपनी भाषा पर गर्व करे, दूसरी भाषाएं भी सीखे, ज्ञान की कोई सीमा न माने और अवसरों का इंतजार करने के बजाय उन्हें पैदा करे। आखिर भारत की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा शक्ति है, और अगर इस युवा शक्ति के हाथ में आधुनिक ज्ञान हो, मन में आत्मविश्वास हो, सोच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो और शब्दों में अपनी मिट्टी की खुशबू हो, तो भारत केवल विकसित होने का सपना नहीं देखेगा, वह उस सपने को अपनी मेहनत से हकीकत में बदल देगा। तब सचमुच कहा जा सकेगा, हिंदी आगे बढ़ रही है, युवा आगे बढ़ रहा है और उसके साथ भारत भी नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। हम अपनों के साथ और अपनी भाषा के साथ गर्व से आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास और संकल्प के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी आप वार्ता सुन रहे थे जिसका विषय था हिंदी के साथ बढ़ता युवा, बढ़ता भारत। वार्ताकार थी गायत्री पाल।
2: सत्यनिष्ठा अपनाए, भ्रष्टाचार मिटाए, मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। सत्यनिष्ठा से समृद्ध NTPC रिहंद द्वारा आयोजित त्रैमासिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनहित में प्रसारित।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 बन जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा,
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
1: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समुदेशती आधार पर कंपेयर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
5: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
1: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
5: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
1: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
5: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
1: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
5: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
5: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।
1: गणेश चतुर्थी आते ही वातावरण में एक जैसे अलग ही उत्साह घुल जाता है। घरों और पंडालों में गणपति बप्पा की स्थापना होती है, चारों तरफ सजावट दिखाई देने लगती है और गणेश जी के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो जाता है। दोस्तों, बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इस उत्सव का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन गणेश चतुर्थी की खूबसूरती सिर्फ उत्सव और सजावट में नहीं बल्कि इससे जुड़े संदेशों में भी छिपी है। भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक और शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए किसी भी अच्छे काम की शुरुआत से पहले गणेश जी का स्मरण करने की हमारे बीच परंपरा रही है। दोस्तों, गणेश जी का स्वरूप भी अपने आप में बहुत कुछ हमें सिखाता है। उनका बड़ा मस्तक हमें बड़े विचार रखने की प्रेरणा देता है। बड़े कान बताते हैं कि हमेशा ज्यादा सुनना और सोच समझ कर बोलना चाहिए। छोटी आंखें एकाग्रता का संदेश देती हैं और उनका वाहन छोटा सा मूषक यह याद दिलाता है कि बुद्धि और विवेक से बड़ी चुनौतियों पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। यानी गणेश चतुर्थी केवल पूजा का अवसर नहीं बल्कि जीवन को बेहतर तरीके से जीने की सीख देने वाला पर्व भी है। लेकिन दोस्तों, आज हम कोई भी उत्सव मनाते हैं तो उसमें कई बातों का ध्यान रखना भूल जाते हैं, जैसे कि सुरक्षा या फिर पर्यावरण की सुरक्षा। तो ऐसे में उत्सव मनाते समय हमें पर्यावरण का भी खास ध्यान रखना चाहिए। मूर्ति और सजावट के लिए पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल करें, अनावश्यक प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और विसर्जन के दौरान जल स्रोतों की स्वच्छता का ध्यान भी रखें, क्योंकि ये है हमारी जिम्मेदारी। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का एक सुंदर संदेश यह भी है कि किसी भी शुभ शुरुआत के लिए केवल उत्साह नहीं बल्कि विवेक और धैर्य भी जरूरी है। जीवन में मुश्किलें आएंगी, रास्ते में रुकावटें भी होंगी, लेकिन समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और यही गणेश जी से मिलने वाली सबसे बड़ी प्रेरणाओं में से एक महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, आज के युवाओं के लिए भी यह पर्व बहुत कुछ कहता है। युवा अगर उत्सव की ऊर्जा को

0: सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ दें, तो त्योहार की खुशी और भी सार्थक हो सकती है। स्वच्छता अभियान, पौधरोपण, जरूरतमंदों की मदद और पर्यावरण संरक्षण जैसे छोटे छोटे प्रयास गणेश उत्सव को एक सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। आखिरकार गणपति बप्पा की भक्ति तभी और सुंदर लगती है जब उसके साथ बुद्धि, संवेदना और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी बेशक जुड़ी हो।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे कार्यक्रम युववाणी और मैं हूँ कार्यक्रम में आपके साथ आपकी रेडियो साथी रानी राजश्री। और शाम के 5:24 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं FM 102.7 पर आकाशवाणी ओबरा से कार्यक्रम युववाणी।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति जन कल्याण सेवा समिति की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम आपके लिए ला रहे हैं नमो मैराथन। यह नमो मैराथन विकास का मैराथन है जो न रुकेगा न थकेगा। अगर आपकी उम्र 15 सितंबर तक 18 से 26 वर्ष के बीच है तो इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ दौड़िए। बालकों के लिए दौड़ सुबह 9 बजे से होटल अविनाश से सर्किट हाउस तक और बालिकाओं के लिए सुबह 9:30 बजे से चुर्क बाजार पुराने बस स्टैंड से सर्किट हाउस तक आयोजित की जाएगी। जीतने वालों के लिए प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 5,100 रुपए और 21 विजेताओं के लिए 11,100 रुपए का सांत्वना पुरस्कार। तो फिर 15 सितंबर को बनिए नमो मैराथन की दौड़ का हिस्सा और रजिस्टर करिए विकास की इस यात्रा के लिए। कार्यक्रम संयोजक जन कल्याण सेवा समिति सचिव डॉक्टर धर्मवीर तिवारी। संपर्क नंबर है 7007299898। दूसरा नंबर है 8737981010। तीसरा नंबर है 7007445358।

दोस्तों, दोस्ती का रिश्ता सबसे खास होता है। जिंदगी के बड़े से बड़े दुख आसान लगने लगते हैं, अगर आपके पास अच्छे दोस्त का साथ हो। मित्रों के साथ बिताया गया समय अनमोल होता है और हर अच्छे मित्र हमारे जीवन में नए रंग भरते हैं और हमें सकारात्मक दिशा के लिए प्रेरित हमेशा करते हैं, खुशियों को दोगुना करते हैं और दुखों को हल्का बना देते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे सच्चे और अच्छे मित्र हैं, तो उन्हें अपने जीवन में संजो के रखिए। कोई भी ऐसी बात उनके सामने न करें कि उनका दिल दुखे और वो आपसे दूर हो जाए। तो अपनी दोस्ती को एक मिठास के साथ हमेशा बनाए रखिए। इन्हीं बातों के साथ अपने रेडियो हमसफर रानी राजश्री को कार्यक्रम युववाणी से अनुमति दीजिए। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। शाम के 5:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

बहनों नमस्कार। गृहलक्ष्मी प्रोग्राम में सभी बहनों का स्वागत है। आज प्रोग्राम में मैं हूं आपकी रेडियो सखी साजिदा। तो बहनों आज आपसे ढेर सारी बातचीत होगी, गीत संगीत होगा और कुछ काम की बातें भी होंगी। तो आप सब तैयार हैं कार्यक्रम सुनने के लिए? तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

हम स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा इस मौसम में पौष्टिक और स्वच्छ भोजन करना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। अपने खाने पीने पर खास ध्यान देना चाहिए और सावधानी रखते हुए बाहर का खाना तो एकदम नहीं खाना चाहिए। अपने आहार में खूब ढेर सारी सब्जियां, फल, दही ये सब शामिल करें, लेकिन हरे पत्तेदार सब्जियों से अभी आजकल थोड़ा सा परहेज करिए। मैंने देखिए, बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो है आपका परिवेश। आपके घर के साथ साथ आसपास भी साफ सफाई हो, कहीं पर भी पानी जमा ना हो, क्योंकि इसी में मच्छर पनपते हैं जो कीट जनित बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। आसपास कूड़े कचड़े ना हो, और अक्सर देखा जाता है कि लोग अपना घर तो साफ कर लेते हैं और कूड़ा बाहर फेंक देते हैं जो फिर हवा से उड़कर इधर उधर फैल जाता है और बहुत गंदा लगता है, इसलिए कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालें। बहनों, स्वस्थ रहने के लिए और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। अपनी डेली रूटीन में कम से कम आधे घंटा व्यायाम ज़रूर करें। इसके अलावा योग का भी अभ्यास करें। रोज़ 15 मिनट योग करके आप अपने तनाव को दूर कर सकती हैं। बहनों, अच्छी नींद लेना भी बेहद ज़रूरी है, जो आपके सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब हर रात 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर तक सोएं। अच्छी नींद रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ज़रूरी है, इसलिए पर्याप्त नींद लेना भी ज़रूरी हो जाता है, ख़ासकर बरसात के मौसम में जब बीमार पड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो बहनों, साफ पानी पिएं, गर्म ताज़ा भोजन खाएं और भोजन को हमेशा ढक कर रखें, और खाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं, सावधानी अपनाएं, स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। मैनू देखिए, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के साथ संस्कार भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना संस्कार के बच्चा शिक्षित तो होकर रोज़गार पा सकता है, बहुत अच्छी नौकरी भी पा सकता है, लेकिन इंसानियत का भाव नहीं होता है। इसलिए बहनों, संस्कार में छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे अपने माता पिता का सम्मान करना, टीचरों का सम्मान करना, और इसके अलावा आसपास के लोगों के प्रति भी उदार होना। ऐसा नहीं है कि घर में सबकी इज्जत किए लेकिन बाहर लोगों का एकदम उनकी कोई इज्जत ही नहीं करते, बल्कि ज़रूरी है कि आप अपने घर के साथ साथ बाहर भी लोगों का सम्मान करें, और यही बातें बच्चों को शुरू से ही सिखाना चाहिए। मैंने स्कूल की पढ़ाई के अलावा बच्चों को महापुरुषों की जीवनी, परिवार, समाज और देश के प्रति कर्तव्य का बोध कराना भी ज़रूरी है। व्यावसायिक शिक्षा हमें रोज़गार तो दे सकती है, लेकिन इंसानियत के हुनर सिर्फ संस्कार से ही मिलते हैं। बहनों, देश को सुसंस्कृत और संपन्न बनाने के लिए शिक्षा पहली ज़रूरत होती है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी हो तो वह देश ज्ञान संपन्न होकर विश्व का सिरमौर बन सकता है। इसलिए बहनों, बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी ज़रूर दें। बच्चों का नैतिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो, इसके लिए शिक्षा में संस्कारों को जोड़ करके नए भारत के निर्माण में अपना योगदान ज़रूर दें। बहनों, बच्चों में संस्कार डालने के कुछ बहुत आसान तरीके होते हैं, जैसे कि खुद उनका रोल मॉडल बने, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। इसलिए आप खुद बड़ों का आदर करें और घर में शिष्टाचार को अपनाएं। बच्चों को प्रेरणादायक कहानियां सुनाएं, और इसके अलावा बड़ों को नमस्ते करना, अगर किसी से मदद लिए हैं तो उसका धन्यवाद करना, और गलती होने पर अपनी गलती मान करके उसे सॉरी करना। ये सारी बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें बच्चों को शुरू से ही सिखाना चाहिए। मैंने छोटे छोटे कामों के लिए बच्चों को जिम्मेदार भी बनाना चाहिए, ताकि वे अपने कर्तव्यों को समझें। शिक्षा और संस्कार
देखिए, एक

ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ शिक्षा व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखाती है, वहीं संस्कार उसे सही रास्ता दिखाते हैं। मैं अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं हरितालिका तीज के बारे में। मैंने हरितालिका तीज का बहुत खास महत्व होता है और ये पर्व भगवान शिव और पार्वती से जुड़ा हुआ है। महिलाएं तीज में यानी आज निर्जला व्रत रखती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। और ऐसा माना जाता है कि पार्वती जी ने ही सबसे पहले हरितालिका तीज का व्रत करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। मैंने हरितालिका तीज का व्रत तो मुख्य रूप से सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, उनके अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए मनाती हैं। बहनों, आप सबने भी व्रत रखा होगा, मेहंदी भी लगाई होगी, है ना बहनों? तो चलिए देखिए, बातें और भी होंगी, उससे पहले मनोरंजन हो जाए एक प्यारे से गीत से।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: मैंने इस संदेश से पहले आपने गीत सुना, मनोरंजन तो आपका हो गया। चलिए अब बात करते हैं हिंदी दिवस पर। बहनों, हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी शैली में लिखी हिंदी को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया। यह निर्णय 26 जनवरी को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया और उसी दिन से प्रभावी भी हो गया। इससे हर भारतीय को गर्व महसूस हुआ और हर साल पूरे देश में इस दिन को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। मैंने हिंदी दिवस पर हमारी भाषा हिंदी समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के प्रति देशभक्ति और स्नेह की भावना बहुत होती है। मैंने दुनिया भर में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा होने के अलावा हिंदी सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक है। हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य युवाओं को उनकी विरासत की याद दिलाना है। यह दिन हमें हमारी वास्तविक पहचान की याद दिलाने और हमें हमारे देश के नागरिकों को साथ लाने का काम भी करता है। मानो भारत देश, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ बहुत से धर्म जातियों के लोग रहते हैं और जिसके चलते बहुत सारी भाषाएं और बोलियों का इस्तेमाल भी किया जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उनमें से कुछ प्रमुख बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमिया हैं, लेकिन हिंदी देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और ये बहुत आसान और सरल भाषा है, ताकि लोग बहुत आसानी से समझ भी लेते हैं। भारत देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाली हिंदी को राजभाषा का गौरव भी प्राप्त है। बहनों, हिंदी का बात कर रहे हैं तो चलिए अब वार्ता सुनिए। विषय है हिंदी का महत्व और वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रेम सुंदरी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा।
4: नमस्कार, आज हिंदी दिवस है जिसके उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सबको मालूम होना चाहिए कि 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तभी से लेके आज तक हम आज के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद राजसत्ता जनता के हाथ में आई और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह आवश्यक हो गया कि देश का राजकाज लोक की भाषा में हो। अतः राजभाषा के रूप में हिंदी को एक मत से स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को यह मान्यता दी गई। तब से राज्य कार्यों में इसके प्रयोग का विकास क्रम प्रारंभ होता है। भारतीय संविधान के भाग 17वें में, जिसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित बहुत सारे प्रावधान किए गए। धारा 343 के अंतर्गत हिंदी के संदर्भ में कहा गया कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया, लेकिन संविधान लागू होने की तिथि से 15 वर्षों तक के लिए अंग्रेजी का उपयोग आधिकारिक रूप से होता रहेगा। धारा 344 के अंतर्गत प्रत्येक 10 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन कर हिंदी का क्रमिक विकास कर उसके द्वारा सिफारिशों की जांच की जाएगी। धारा 345 से लेके 347 तक ये प्रावधान किया गया कि राज्य विधान मंडलों को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए राज्य में प्रचलित किसी भी भाषा या हिंदी को अपनाने का अधिकार देता है। 346 धारा के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच संचार के लिए अधिकृत भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा। धारा 347 के अंतर्गत राष्ट्रपति की मांग पर किसी राज्य की आबादी के एक बड़े हिस्से द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी जाएगी। 348 धारा के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी में हो तब तक जब तक राष्ट्रपति की सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही हिंदी या अन्य राजभाषा में अधिकृत न हो। धारा 349 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति पर विधायी व न्यायिक मामलों में प्रयुक्त भाषा को बदलने वाले कानून से प्रतिबंधित हो। धारा 350 के अंतर्गत व्यक्ति संघ या राज्य की किसी भी भाषा में अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकता है। धारा 350A के अंतर्गत मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। धारा 351 के अंतर्गत संघ को हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने हेतु इसे भारत की मिश्रित संस्कृति के माध्यम के रूप में विकसित करने और 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हिंदुस्तानी और अन्य भारतीय भाषाओं के रूप में अभिव्यक्तियों

0: के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को तीन भागों में बांटा गया। वो तीन भाग हैं समूह क, जिसमें हिंदी क्षेत्र के सभी प्रांत हैं, समूह ख के अंतर्गत केंद्र शासित राज्यों के साथ साथ पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र हैं, तो समूह ग के अंतर्गत द्रविड़ भाषी यानी हमारे दक्षिण भारतीय भाषाएं और पूर्वोत्तर की भाषाएं शामिल की गई हैं। 1976 के बाद राजभाषा विभाग की स्थापना होती है और हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु कार्य होने लगता है। स्वतंत्रता आंदोलन के से ही हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनकी मंडली के द्वारा और साथ ही महात्मा गांधी, तिलक, जो भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हमारे महान सेनानी थे, उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर एक जोर शोर से कार्य किया। हिंदी की प्रगति और विकास के लिए यही कहूंगी कि हर भारतीय की शक्ति है हिंदी, हर भारतीय की शक्ति है हिंदी, एक सहज अभिव्यक्ति है हिंदी। भारतेंदु जी ने भी कहा था कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान की मिटी नहीं है के सुन। और हमारी हिंदी में वो सारी सामर्थ्य है, सारी क्षमता है, जिसके चलते वो एक राजभाषा पद की अधिकारिणी है। क्योंकि विविध कला शिक्षा अमिट ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हूँ भाषा माही प्रचार, भाषा माही प्रचार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। जय हिंद।
1: बहनों, अभी आपने वार्ता सुनी, विषय था हिंदी का महत्व और वार्ताकार थी डॉक्टर प्रेम सुंदरी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा से। तो बहनों, चलिए अब कुछ बातें हो जाएं दूरदर्शन दिवस पर। बहनों, एक समय था जब घर में टीवी होना बहुत बड़ी बात होती थी, और जब कार्यक्रम आता था तो घर के सारे लोग, अगल अड़ोस पड़ोस के भी लोग टीवी के आगे बैठ जाते थे। और बहनों, घर घर की पसंद बने दूरदर्शन की शुरुआत भारत में 15 सितंबर 1959 को राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन का परीक्षण शुरू हुआ। दूरदर्शन का नाम पहले टेलीविजन इंडिया था। शुरुआत में दूरदर्शन पर हफ्ते में 3 दिन ही प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए जाते थे। बाद में यह घर घर की पसंद बन गया और आम लोगों की जिंदगी से जुड़ता चला गया। बहनों, राष्ट्रीय कार्यक्रम के शुरू होने के साथ ही इसका पहला रंगीन प्रसारण 15 अगस्त 1982 को हुआ। नए नए प्रोग्राम बनने लगे। शाम को कृषि दर्शन, हफ्ते में 2 बार चित्रहार, रंगोली, फिल्में और खेलों से दूरदर्शन की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। और आज भी हम लोगों को वो दिन याद आते हैं जब चित्रहार या रंगोली शुरू होता था तो हम सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाते थे। तो बहनों, देखिए बातें और भी होंगी, उससे पहले मनोरंजन हो जाए एक प्यारे से गीत से।

मैनू हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति परंपरा और पहचान का भी प्रतीक है। यह भाषा देश के विभिन्न हिस्सों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। हिंदी ऐसी भाषा है जो ज्यादातर लोग बोलते हैं, समझते हैं और यही वजह है कि हिंदी को जन जन की भाषा कहा जाता है। हिंदी को अपना कर ही हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रह सकते हैं। हिंदी सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि भाषा के प्रति सम्मान प्रेम प्रकट करने का अवसर भी है। बहनों इसी के साथ ही गृहलक्ष्मी कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तो अब बहनों से विदा लेते हैं, चलते चलते सभी बहनों को साजिदा का नमस्कार।

अभी बहने सुन रही थी कार्यक्रम गृहलक्ष्मी एफएम 102.7 पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार।

0: नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश के लोकायुक्त संगठन के 50वां स्थापना दिवस समारोह में शामिल भइले। लखनऊ में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री लोकायुक्त प्रशासन के स्मारिका आ सूचना पुस्तिका का विमोचन कैले। ए मौका पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री कहने कि जन विश्वास पर खरा उतरल लोकतंत्र का सबसे बड़हन कसौटी होला।
1: हमें याद रखना होगा, लोकतंत्र के जो सबसे बड़ी ताकत है वह किसी भी संवैधानिक संस्था में एक सामान्य नागरिक का विश्वास। जिस संस्था ने आम जन के विश्वास पर जो खरा उतरेगी लोकतंत्र में, उस संस्था को आगे बढ़ने से और उस संस्था के महत्व को कोई कम नहीं करके आंक सकता।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होके आयल युगांडा का उपराष्ट्रपति जेसिका रोज एपेल अलुपो आज आगरा दौरा पर पहुंचलिन। ओजा वहां के ताजमहल देखलनी आ डायना बेंच पर फोटो खिंचवौनी। एगो रिपोर्ट।
2: युगांडा के उपराष्ट्रपति के आगरा पहुंचने पर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच युगांडा की उपराष्ट्रपति ताजमहल परिसर पहुंची, जहां उन्होंने स्मारक की खूबसूरती को निहारा और डायना बेंच पर फोटो सेशन भी कराया। इस दौरान गाइड ने उपराष्ट्रपति को ताजमहल के इतिहास, स्थापित कला और संगमरमर पर की गई बारीकी पच्चीकारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से शुरू हो रहल सेवा संकल्प अभियान के तहत उनकरे कर्म भूमि वाराणसी से लेके उनकरे जन्मभूमि वड नगर ले सेवा यात्रा निकाल जाई। ई जानकारी भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी आज वाराणसी में पत्रकार लोगों से बातचीत में देने। वहां के कहने की यात्रा के फ्लैग ऑफ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही देश और प्रदेश को कई गो वरिष्ठ नेता शामिल हुई हैं। आज गणेश चौथ या कजरी तीज का त्योहार खास उत्साह के साथ मनावल जा रहा बा।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर अपने शुभकामना संदेश में भगवान गणेश से राज्य की सुख समृद्धि की कामना की है। इस अवसर पर आज से ही लखनऊ के झूले लाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। वहां यह उत्सव 25 सितंबर तक चलेगा। अयोध्या के

0: राम जन्मभूमि मंदिर में आज प्रथम पूज्य गणेश जी के मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज ही कजरी तीज पर भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर रही हैं। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: श्रावस्ती जिला का पांडवकालीन ऐतिहासिक विभूतिनाथ मंदिर में कजरी तीज पर खास उत्साह देखे के मिल रहा हो। ओजा भी नहीं से श्रद्धालुअन का भारी भीड़ भगवान शिव के जलाभिषेक कर रहा बा। अयोध्या के शिव मंदिरों में भक्तन के भारी भीड़ भगवान शिव का पूजा अर्चना कर रही हो। देश भर में आज हिंदी दिवस मनावल जा रहा हो। वर्ष 1949 में अजुए के दिन ने संविधान सभा देवनागरी लिप में लिखल हिंदी के देश के आधिकारिक भाषा के रूप में अपनौ ले रहा।
2: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों के हिंदी दिवस का शुभकामना देहले हमें। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री कहने की हिंदी हमनी के सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय एकता आ भारतीय अस्मिता का मजबूत अभिव्यक्ति हो। मौसम विभाग पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कहीं कहीं उही बिहने कुछ जगहिन पर बरखा चाहे गरज चमक के साथ ही बौछार पड़ने का संभावना जतौले हो। विभाग आज व बिहने एह इलाकन में कहीं कहीं गरज चमक के साथ ही बिजलियों गिरले का येलो अलर्ट जारी कैले बा। ई समाचार बुलेटिन हमनी के यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी मौजूद हो। एक रिसत है भोजपुरी समाचारन के बुलेटिन पूरा भेल। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 6:05 हो रहे हैं। श्रोताओं आइए कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की।

शाम 6:10 पर कार्यक्रम होगा ग्राम जगत। फिल्म संगीत ये कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे शाम 6:50 पर, रात्रि 8:15 पर और रात्रि 9:30 पर। ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी हम लेकर हाजिर होंगे रात्रि 10:00। कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:00 और रात्रि 8:30 पर। श्रोताओं भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 9:15 पर, और सबरस ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:31 पर। श्रोताओं ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। श्रोताओं खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार पवन कुमार पुत्र भोला प्रसाद केशरी निवास ग्राम सिरसोती थाना बीजपुर जनपद सोनभद्र ये दिनांक 1/8/2015 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है। उम्र 26 वर्ष लगभग, लंबाई 5 फीट 1 इंच, हुलिया सांवला रंग, गोल चेहरा, इकहरा मजबूत जिस्म, बाएं गाल पर तिल का निशान, पहनावा है पूरे बांह की शर्ट, फुल पैंट और पैर में हवाई चप्पल। श्रोताओं एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुज पुत्र गोरालाल निवासी ग्राम खिरीहटा

0: थाना घोरावल जनपद सोनभद्र। ये दिनांक 25/8/2015 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 22 वर्ष, लंबाई 162.5 सेंटीमीटर, हुलियार सांवला रंग, लंबा चेहरा, इखरा बदन और मंद बुद्धि, पहनावा है जीन्स पैंट, चेकदार शर्ट और पैर में जूता। श्रोताओं, इन दोनों के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। FM 102.7 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

एफएम 102.7 पर ये आकाशवाणी का उभरा केंद्र है। शाम के 6:10 हो रहे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम। भोला भैया देखा तोरो के राम राम और पंच भैया लोगन के भी राम राम।
1: राम राम भगेलू भैया, हिंदी दिवस के हार्दिक शुभकामना आपके भी और सभी श्रोता लोगन
0: पंच
1: के
0: भैया
1: भी।
0: लोगन के भी।
1: और भैया देखा भारतेंदु हरिश्चंद्र के कहावत भी है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। निश्चित रूप से तमाम प्रेरणादायक बात के माध्यम से भी आज सबके संबोधन भी कर जाला और याद भी दियावल जाला। हालांकि हम लोग के तो मुख्य भाषा ही है हा। लेकिन हिंदी है, हम हिंदी हमारी पहचान, हिंदी से ही हिंदुस्तान, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। तो भैया आज हिंदी विषय पर भी एक विशेष, हिंदी के विकास में बोलियन के का योगदान है, ये विषय पर एक शोध छात्र हों अखिलेश कुमार आपसे मुनई भैया के बात बत कही हुई है, कहा तो यहीं शुरुआत कर जाए भैया।
0: तो भैया नेकी और पूछ पूछ चला यहीं से शुरू हो जाए।

0: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले तीन कोस पर वाणी, यानी कि हमारे हिंदी में बोलियों का बहुत बड़ा महत्व है और कहीं न कहीं हमारे हिंदी के विकास में बोलियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज हमने अपनी स्टूडियो में आमंत्रित किया है अखिलेश कुमार मौर्य, जो एक शोध छात्र हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि हिंदी के विकास में बोलियों का क्या महत्व है। अखिलेश जी नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
0: अखिलेश जी, जैसा कि हमारे सभी श्रोता भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हिंदी के विकास में हमारी बोलियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि बोलियों से ही हिंदी का विकास हुआ है। तो सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो हिंदी भाषा के विकास की प्रक्रिया है, वह वास्तव में है क्या?
1: हाँ सर, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हिंदी भाषा का जो

0: विकास है, इसकी
1: जी
0: उत्पत्ति है, वो कहाँ से हुई है। तो सर, भाषा एक सतत प्रवाहमान जो एक प्रक्रिया है,
1: जी
0: और किसी भी भाषा का जो वर्तमान स्वरूप होता है उसकी एक सर लंबी यात्रा होती है। जैसे आप भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि हिंदी का जो विकास है वैदिक काल से प्रारंभ माना जाता है, परंतु समय समय पर इसका नाम बदलता रहा है। कभी वैदिक नाम हुआ, कभी संस्कृत हुआ, कभी प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी आती है।
1: जी
0: तो भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राकृत के अंतिम अवस्था से, अपभ्रंश से, हिंदी भाषा का जो होता है उद्भव होता है, जिसे विद्यापति देसी भाषा कहते हैं।
1: जी जी
0: और इसका समय लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है कि तब से हिंदी भाषा का विकास शुरू हुआ है। और बौद्ध धर्म जो था उसकी ब्रजयान शाखा से जो उसके सिद्ध थे, उन्होंने उस समय लोक भाषा में अपने मत का प्रचार किया था,
1: जी
0: और उन्होंने पुराने हिंदी में अपने साहित्य को लिखा था। और अब्दुल रहमान जो उस समय थे, उन्होंने संदेश रासक लिखा, और जिसमें उन्होंने अपने परवर्ती बोलचाल की भाषा को उन्होंने दिखाया था। और इसी समय जो राजाओं के संरक्षण में जो चारण और भाट थे, उस समय की भाषा में वीर गाथा काल की रचनाएं, वीर गाथात्मक रचनाएं लिखते थे। और इसी दौरान मैथिल कोकिल विद्यापति हुए, जिनकी पदावली में मानवीय सौंदर्य और प्रेम की अनुपम व्यंजना मिलती है। और लगभग यही समय जो है अमीर खुसरो का भी यही समय है, उन्होंने भी ठेठ खड़ी बोली में अनेक पहेलियां, मुकरियां और दो सुखनों की रचना की है।
1: बिल्कुल
0: इनकी दोहों की भाषा ब्रज है, लेकिन बाकी इनकी रचनाएं लगभग हिंदी में ही है। और 13वीं शताब्दी में अगर जब आप आगे आएंगे तो देखेंगे कि धर्म के क्षेत्र में जो अंधविश्वास फैला हुआ था, उससे भक्ति आंदोलन का भारतव्यापी जो आंदोलन शुरू होता है, जिसमें उस समय के सामाजिक एवं व्यक्तित्व मूल्यों की स्थापना होती है। और इसी तरह विभिन्न मतों का आधार लेकर हिंदी में निर्गुण व सगुण नाम की दो धाराएं एक साथ चलती रहती हैं।
1: बिल्कुल
0: फिर 18वीं शताब्दी आते आते कविता में एक नया मोड़ आता है, जो रीति काल के नाम से जाना जाता है। इसे दरबारी संस्कृति और संस्कृत साहित्य से बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल
0: और 19वीं शताब्दी आते आते भारत का संपर्क यूरोप से होने लगता है, और एक नए युग की शुरुआत होती है। उस समय रचनाएं जो है खड़ी बोली गद्य में लिखी जाने लगती हैं, और इसे गद्य युग भी कहा जाता है। तो हम जब देखते हैं कि फिर जब आजादी के बाद हम देखते हैं, तो उसके बाद हिंदी का विकास बहुत तेजी से होता है। माना जाता है कि आजादी के आसपास हमारे पास जो हिंदी के प्रामाणिक शब्द थे वो लगभग 5 से 7 हजार थे, और
1: बिल्कुल
0: अब वर्तमान समय में देखेंगे तो लगभग इसकी संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है।
1: बिल्कुल अच्छा अखिलेश जी, हिंदी भाषा के विकास में जो हमारी बोलियां रही उनको आगे बढ़ाने में उनका क्या योगदान रहा?
0: हाँ सर, बोलियों ने हिंदी भाषा का सर बहुत बोलियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि बोलियों ने हिंदी भाषा को समृद्ध और विविध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे बोलियों से हिंदी भाषा में सर शब्दावली आते हैं,
1: जी
0: और उसके शब्दावली शामिल करने से हिंदी भाषा समृद्ध हुई। बोलियों से सर हिंदी भाषा में भाषाई विविधता को बढ़ावा मिला, क्योंकि तरह तरह के व्याकरण सर मिले, वहां के उच्चारण वहां से आए। जैसे अवधी भाषा है तो वहां से आते हैं सर, मैथिली हो गए, मगही हो गए, तो उससे सर आते हैं। फिर वहां की जो सर लोक साहित्य है, लोक परंपरा है बोलियों की, उससे हमें फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो साहित्य में आकर हिंदी भाषा को समृद्ध करने का काम करता है। और लगभग माना जाता है कि भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि हिंदी भाषा की 17 बोलियां हैं।
1: अच्छा
0: तो 17 बोलियों में सबसे ज्यादा योगदान अगर आप देखेंगे तो खड़ी बोली, अवधी और ब्रज भाषा का रहा है।
1: अच्छा
0: इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि खड़ी बोली का जो रहा है, तो खड़ी बोली का जो सर अर्थ माना जाता है कि खड़ी बोली नाम क्यों पड़ा, तो कुछ लोग कहते हैं मतलब प्योर खड़ी जो है, खरी खरी जो प्योर होता है उससे बनना। कुछ लोग कहते हैं इसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, इससे इसका नाम खड़ी पाई मतलब होता है। और ये जो भाषा है ये लगभग दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद के आसपास बोली जाती है।
1: जी
0: और इसमें हम देखते हैं कि इसमें लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा मिलते हैं, अमीर खुसरो से लेके खड़ी बोली का होता है। फिर 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जब होती है तो उसमें खड़ी बोली का योगदान बना जाता है। और फिर हम आगे देखते हैं तो भारतेंदु युग में देखते हैं, फिर द्विवेदी युग में जो खड़ी बोली का विकास होता है, और धीरे धीरे खड़ी बोली का विकास सर होते होते पूरा उत्तर उत्तर इसकी वृद्धि होती जाती है।
1: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अखिलेश जी। अच्छा हिंदी भाषा की जो इस समय स्थित है तो यह वैश्विक परिवेश में अपने आप को कहाँ स्थापित करती है?
0: हाँ सर, हिंदी सर भाषा अगर पहले भारत में अगर हम देखें तो भारत में मानी जाती है कि मतलब 40 करोड़ लोगों की प्रथम बोली हिंदी है भारत में। अगर हम वैश्विक स्थिति की बात करें तो विश्व में लगभग 150 से ज्यादा देशों में जो 2 करोड़ भारतीय फैले हुए हैं उनके द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा 40 देशों के 600 से ज्यादा विश्वविद्यालय, उनके कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई जाती है। और एक सर्वेक्षण कहता है कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है मंदारिन।

0: मैंडरिन है, उसके बाद दूसरा स्थान हिंदी भाषा का है, एक सर्वेक्षण ये कहता है, और दूसरा सर्वेक्षण ये कहता है कि पहला मैंडरिन का स्थान है, दूसरा अंग्रेजी का, तीसरा हिंदी का। अगर हम दोनों में से कुछ भी मानते हैं, फिर भी अगर हमारी टॉप थ्री में अगर हम देखें तो हिंदी का स्थान है। इसके अलावा यह भारत और फिजी की राजभाषा है।
1: जी
0: सर, हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि यह फिजी की भी राजभाषा है। भारत की तो राजभाषा है ही, इसके अलावा फिजी की भी यह राजभाषा है। और ब्रिटिश भारत में यहाँ से बहुत ज्यादा श्रमिक, हम लोग गिरमिटिया मजदूर कहते थे, भारत से बाहर जाते थे काम करने के लिए, जैसे मॉरिशस में, सूरीनाम में, गुआना में, तो वहाँ भी हिंदी बोलने वालों की संख्या, हिंदी बोलने वालों की संख्या भी है। और मॉरिशस में तो विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई है, और अभी वर्तमान समय में यह मांग की गई है कि संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषा में हिंदी शामिल नहीं है, हिंदी को भी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा में शामिल किया जाए, उसे भी दर्जा दिया जाए। तो यह मांग चल रही है वर्तमान समय में।
1: बिल्कुल। और अगर देखा जाए कि आज का जो समय है, यहाँ अंग्रेजी की अधिक मांग है, लेकिन वर्तमान समय में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर हैं, इसमें हमारी हिंदी जो है वो कहाँ पर स्थित होती है, खड़ी होती है?
0: हाँ सर, सर वर्तमान समय जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर है, कि विकास को गति देने और लोगों को बेहतर सुविधाओं के लिए प्रत्येक क्षेत्र में तकनीक का उपयोग हो रहा है सर। तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, इसका प्रयोग आज शिक्षा में, स्वास्थ्य में, वाणिज्य में, मनोरंजन, परिवहन, लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता सर विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत मशीनें ही इस प्रकार से व्यवहार करती हैं जिस प्रकार से मानव अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। तो इसका अर्थ यह है कि मशीनें जब समय और परिस्थिति के अनुसार कोई निर्णय लेने लगे, जब मनुष्य अपनी स्थिति के अनुसार निर्णय लेता है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अभी तक जो थी मशीनें वो अपनी स्थिति के अनुसार कोई फैसला नहीं ले पाती थी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से मशीन इस तरह सक्षम हो गई है कि वह स्थिति के हिसाब से और जो भावात्मक जो जरूरत है उसके हिसाब से वह अपना फैसला ले पाता है। और सर इसके मदद से भाषा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य हो रहा है और आगे भी हो सकता है सर। जैसे हमारे यहाँ सर, हमारा इतना बड़ा हिंदी साहित्य है, रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् भागवत गीता है, वेद पुराण जो हैं, इनका जो सर क्या है कि जो गैर हिंदी पाठकों तक पहुंचाने के लिए अनुवाद की जरूरत है, और इतने बड़े मात्रा में अनुवाद करने के लिए मनुष्य अभी तक उसके काफी श्रम की जरूरत होती है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से इसका जो अनुवाद सर बहुत आसानी से हो रहा है, और इसको आगे और बढ़ाने की जरूरत है। और इससे ज्यादा सर जरूरत है कि जो विश्व के ज्ञान है उनको हम अपने अगर हिंदी भाषा में पढ़ना है तो उसके द्वारा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा से उनका आसानी से अनुवाद करके विश्व के ज्ञान को हम हिंदी भाषा में सीख सकते हैं। तो सर इसकी एक जरूरत तो है। अगर हम उसके बाद देखें तो जैसे आजकल सर स्कूल है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, वहाँ सर हिंदी में हमारे पास संसाधन की कमी है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उनको सर अनुवाद के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से सर एक अच्छा अनुवाद करके बच्चों को हिंदी भाषा में ही जो अंग्रेजी में मटेरियल उपलब्ध है उसको हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसके माध्यम से जो है बच्चों को भी काफी सहूलियत हो जाएगी पढ़ने के लिए, और महाविद्यालय में भी काम आसान हो जाएगा उनका भी, और हिंदी में अच्छा उच्च स्तरीय जो है सुविधा मिल पाएगी सर।
1: बिल्कुल। सिर्फ हिंदी दिवस या हिंदी पखवारे पर हम हिंदी को महत्व न दें, बल्कि अपने जीवन में हिंदी को अपना कर अपने महत्व को सार्थक करें, और अगर हम हिंदी को लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही पूरे विश्व में एक अपनी पहचान बनाएंगे। अखिलेश कुमार मौर्य जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी आपने दिया हिंदी के विकास में बोलियों का महत्व, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति, जन कल्याण सेवा समिति की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम आपके लिए ला रहे हैं नमो मैराथन। यह नमो मैराथन विकास का मैराथन है जो न रुकेगा न थकेगा। अगर आपकी उम्र 15 सितंबर तक 18 से 26 वर्ष के बीच है तो इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ दौड़िए। बालकों के लिए दौड़ सुबह 9 बजे से होटल अविनाश से सर्किट हाउस तक, और बालिकाओं के लिए सुबह 9:30 बजे से चुर्क बाजार पुराने बस स्टैंड से सर्किट हाउस तक आयोजित की जाएगी। जीतने वालों के लिए प्रथम पुरस्कार 21,000 रूपए, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रूपए, तृतीय पुरस्कार 5,100 रूपए, और 21 विजेताओं के लिए 11,100 रूपए का सांतावना पुरस्कार। तो फिर 15 सितंबर को बनिए नमो मैराथन की दौड़ का हिस्सा और रजिस्टर करिए विकास की इस यात्रा के लिए। कार्यक्रम संयोजक जन कल्याण सेवा समिति सचिव डॉक्टर धर्मवीर तिवारी। संपर्क नंबर है 7007299898। दूसरा नंबर

0: है 8737981010, तीसरा नंबर है 7007445358।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: भोला भैया,
4: भैया
3: देखा कितना बढ़िया हम लोगन के संदेश से पहले की जानकारी सुने के मिलल। अखिलेश कुमार भैया रहलन जो उनके शोध छात्र रहलन, और मुन्ने भैया एकदम फरिया फरिया के पूछलन के हिंदी के विकास में बोलियन के का योगदान बा, कोनो कोर कसर छोड़लन नहीं। तो देखा यही तरीके से एगो बात याद आ गई हो, जवन तू कहत रहला कि बोली भाषा के बात, तो देखा आज जौन बा 14 सितंबर बा, आज हर ओर हिंदी दिवस मनावल जा रहा बा।
4: बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल।
3: और ये दिना देखा बरिस 1949 में जौन संविधान सभा देवनागरी लिपि में लिखल हिंदी के जो भारत के राज्य भाषा के रूप में स्वीकार करल गई रहे, तो यही से हर ओर मनावल जा रहा बा। और एकर देखा कुछ हिंदी के ऐतिहासिक महत्व बा, जैसे कि देखा हम लोगन अपन हिंदी के पहचान रखेला, और हर जगह देखा कहल भी गई बा कि कोस कोस पर बोली, एक कोस पर बोली और चार तीन कोस पर वाणी वाला कहावत जानते हो।
4: बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो हिंदी वास्तव में खाली एक भाषा नहीं है बल्कि संस्कार भी है भैया। तो हम लोग के ये तरीके से जन बाकी जिस तरीके हिंदुस्तान में रह करके हिंदुत्व हिंदी के जौन हम लोग के महत्व देवल जा रहा है, जौन आप राजभाषा के बात कलन कि जौन बाकी हर कार्यालय में भी जौन बाकी हिंदी के प्रयोग करल जाए, जौन से कि जौन बाकी सुगमता से सरलता से लोग के पढ़ पावे, लिख पावे और समझ सके। तो यही के क्रम में हम लोग के जौन अपने धरती के एक संस्कार है भैया खेती पाती के भी, वह पर भी हम लोग के चर्चा हो, चूँकि हम लोग के ग्रामीण अंचल के रहे वाला सब लोग खेतीहर आदमी हैं हम लोग। तो इसके वजह से जौन बाकी आजकल देखा खेती पाती भी बड़ा खर्चीला हो गया भैया है। तो अब जौन बाकी शून्य बजट पर प्राकृतिक खेती हम लोग के का कुछ सिखा वाला भैया, ये पर भी हम लोग के बड़ा कुछ ध्यान देवे के होखल हन। तो भैया देखा जौन बाकी शून्य बजट के जौन बात कल जाला कि जौन बिना खर्चा कैले, बिना जौन बाकी खरीदारी कैले अपन खेत में अच्छा उत्पादन कर सकें, जैसे मान लो कि आज जैविक खाद के प्रयोग ना करके बल्कि रासायनिक खाद, रासायनिक दवा, कीटनाशक वगैरह आदमी लेवत बा, बहुत अधिक कीमत चुकता करे पड़ा भैया।
3: और भैया देखा उकर हम लोगन के नतीजा आज अपन खेत में देखे के मिल रहा बा।
4: बिल्कुल, बिल्कुल,
3: कि हम लोग रसायन खाद खेत में डालत है, आज हम लोगन के उत्पादन में के तरीके से दिक्कत परेशानी हो रहा बा। अब देखा ढेर तो नहीं भैया, अब यह समय देखा अपन खेत में जौन मकई के फसल खड़ा बा, भैया जब खेत तरफ गयी तो हर लोगन के मुँह से यह सुने के मिले कि हमार मकई तो खड़े के खड़े रह गयी, और डांठ जौन रहे भैया गलन हो गयी, सूख गयी, अपने आप गिर जात बा। तो भैया एकर नतीजा तो यह बा कि हम लोग जौन अंधाधुन रसायन खाद डाल
4: भाई शरीर में ताकत नहीं रही भैया, कितना दिन दवाई खा खा के आप रही है।
3: तो ऐसे हम लोगन के ऐसे नाता धीरे धीरे तोड़ले के जरूरत बा, और अपन गोबर आधारित खाद जौन जैविक खाद बा एकरे तरफ नाता बढ़ावले के जरूरत बा। और जब हर तरफ ध्यान रखे के बात कहत हुआ, देखा आज के जौन हम लोगों के न्यूनतम तापमान बा 24 डिग्री सेल्सियस बा, और अधिकतम तापमान 31 डिग्री बा।
4: क्या बात हो गया।
3: तो ये हिसाब
4: से हम लोग खेती किसानी पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और जौन अपन अंचल के लोग जो अपन पशु लोन के गाय भैंस बकरी जौन भी है रात भर तरखे हैं अपन घरे भैया, और सुबह जौन बाकी जंगल में डहरा दिला लो, अब पता चल कि दिन भर जौन बाकी हमारे जौन खेत में गोबर पड़े के चाहिए वो जौन बाकी जंगल में पड़ी, तो ओके कहाँ हम लोग पूरा पूरा लाभ ले पाए। तो उन लोग केहू तरीके जौन बाकी अपने निवास के आसपास अपने खेत खलिहान के आसपास उनके रखे के जुगत अपनाएं, जैसे कि अधिकाधिक गोबर के जौन बाकी हम लोग रख करके ओकर वर्मी कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट बना करके, और ऐसे भी जहाँ पर जौन बाकी गाय छान बांध

0: देवल जाए, वहाँ अच्छा खासा उत्पादन होए की संभावना हो जाला, और उसे जो बाकी तनिक भी हम लोग खर्चा करे के नहीं पड़ी
1: और
0: बा।
1: भैया एक बात हम और कहल चाहते हैं कि जैसे हम लोग देखा अपन माल मवेशी के चारा दहीला तो जवन ठूठ बच जाला
0: हाँ भैया,
1: तो ओके देखा हम लोग जला दहीला धुआं।
0: कितना खराब बात बा।
1: भैया हम लोगन के जलौले की जरूरत नहीं बा, हम लोगन के गोबर के साथे ओके जवन
0: सड़ावे की जरूरत हो।
1: हाँ सड़ौले के जरूरत बा, तो हम लोगन के दो तरह के फायदा हो जाला देखा। उससे हरी खाद भी मिल जाला, गोबर के खाद तो मिलवे करी लेकिन हरी खाद भी मिल जाला,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: ये हम लोगन के जुगत अपनौले के जरूरत बा। और कम से कम लागत में हम लोगन के खेती कैले के जरूरत बा। तो आज देखा पंच भैया लोगन के बीच में ना ऐसने मिलल जुलल बात शिव प्रकाश सिंह भैया से जानल जाई,
0: हाँ, मुन्ना
1: और
0: भैया बात बताए कि ले हम
1: हाँ कि खेती में लागत कम करे के सफल तकनीक का बा।
0: क्या बात।
1: तो ये तरीका से बातचीत हम लोग जानल जाई,
0: हाँ,
1: लेकिन उसे पहले भी कुछ संदेश बा तो
0: अच्छा
1: ओके
0: भैया,
1: सुन लिया जाए।
0: तो संदेश तो भैया सुन ले जाए, और जो है कि लेकिन हमें यो हो कि आज एक बाजार भाव भी आयल हो,
1: अच्छा अच्छा
0: तो ओहू के जोन बाकी तब तक तैयारी करते हैं लोग कि कौन कौन जोन बाकी बाजार भाव कहाँ के हो, तो उस समय से बाजार पहुँची हैं लोग, तो काहे ना हम लोग बातचीत ही पहले सुन लो ले भैया,
1: हाँ हाँ तो चला सुनी लिया
0: तो
1: जाए।
0: खेती की काय लागत जोन कम करे का कुछ सफल तकनीकी है, शिव प्रकाश जी से जोन मुन्ना भैया की बात बत कही है, ओके सुनल जाए।
2: किसान भाई देखें, हम लोग खेती बारी से जुड़ल हैं जा, और बराबर ही सोचल जाला कि ऐसा कौन काम करल जाए जैसे कि हम लोगन के आमदनी बढ़े, और आमदनी बढ़े से सीधे मतलब होला कि हम लोगन के जो कृषि लागत बा यानी खेती करे में जो लागत बा अगर एके हम कम कर दी जो भी तरीका हो, तो अपन आमदनी अपने आप बढ़ जाए। तो खेती के लागत के हम कैसे कम करी, इस बारे में और अधिक विस्तार से चर्चा करे के खातिर आज अपने साथ स्टूडियो में हूँ चतरा ब्लॉक के बंजरिया से शिव प्रकाश सिंह। आप एक प्रगतिशील किसान हुआ, खेती के नया तौर तरीका इस्तेमाल करेलन, और प्रकृति से जुड़ल जितना भी चीज बा ओके भी इस्तेमाल करेलन, जोन व्यवहारिक गुण बा ओके भी इस्तेमाल करेलन। तो शिव प्रकाश जी, सबसे पहले तो अपने किसानवाणी कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। सबसे पहले तो हम और अपने किसान भाई ये जानल चाहिए कि आज के दौर में जबकि इतना हर चीज महंगा हो गई बा, और अपन इलाका जंगल पहाड़ के इलाका बा, वर्षा आधारित खेती होला, कई तरह के जटिलता बा, इतना विषम परिस्थिति में भी खेती करे के होला, तो अपने लागत के कम करे के जोन सोच उपजल बा ई कितना हद तक जोन बाकी ठीक बा, का ए पे हम लोग कायम रह जा सकला।
3: जी निश्चित रूप से पा कायम रहल जा सकला। और खेती में अधिकतम उत्पादन किसान ले चुका है। आज खेती का उत्पादन तो नहीं बढ़ावल जा सके लेकिन अपन आय बढ़ावे बदे सरकार के जो मंशा बा कि दूनी आय हो, एकरे बदे हम अपने लागत में कमी करब तब्बे हुई, एकरे बदे हमें करे के पड़ी। जैसे धान के खेती खरीफ में बा मुख्य फसल
2: जी,
3: सोनभद्र में, और पहाड़ी क्षेत्र में मक्का बा, उड़द बा, तिल बा, ये सब के खेती बाई। तो हम लोग जहाँ हमार विषय जहाँ तक बा हमारे क्षेत्र के बा धान के खेती जो हम लोग लेव लगाए कर या नर्सरी डाल कर खेती करीला, ओकरे जगह पर अगर हम सीधी बोआई करी डायरेक्ट सोइंग हो तो लागत तो हमार काफी वहाँ बचल है।
2: जी
3: जैसे आप जून के महीना में मानसून अले के बाद धान के खेत के जोन बा जुताई कैके ओकरे बाद वहाँ जोन बा हम धान छिड़क दही, और अपने यहाँ से जैविक खेती का बड़ी मांग इस समय बा। और पुरानी वरायटी जो हमन के हैं बा पुराने प्रजाति के धान बाया जैसे आदम चीनी है, बसंत बहार है, गोविंद भोग है, जीरा बत्तीस है, ये सब के रासायनिक खाद में जो बा नाइट्रोजन की जरूरत ही नहीं पड़े। जो हमने यहाँ गाय के गोबर बा, भेड़ के लेड़ी बा, या हम बेस्टी कंपोजर से खाद कंपोस्ट खाद तैयार करी उतने में ही तैयार हो जाला भैया। तो लागत तो पहले ये कम भयल लागत के प्रयास के बाद एक मांग भी बाजार में बहुत अच्छी बा। तो एक बदे आपके करे पड़ी कि अपने घर में जो पशु पालन करे तो पशु के गोबर अपने पास बा, हम जो पुआल तैयार करीला ओकर धान के पुरेसी पशुन के जो जूठा काठा गिरता उनका जौन बा एक हम एक बीस डी कम्पोजर आवला, एकर जौन बा एक बार तो कीमत लगी 20 रुपया।
2: जी
3: ओकरे बाद हमरे घर के ही गुड़ बा, गन्ना के थोड़ा हम खेती करब, वो घरे के गुड़ में 200 लीटर के प्लास्टिक के ड्रम में ओके

0: देब हम तो ओकर बैक्टीरिया एक हफ्ता में तैयार कर देना ओके एकदम, और ओके जब हम डालब कोने फसल पर उसे बीज शोधन करब तो बीज के जमाव बेसी होला, और कूड़ा करकट पर जब ओके डालल जला तो उसे कंपोस्ट जौन बा 45 दिन में तैयार हो जला, और खेत में भी जौन हम जलाई तो नहीं पराली के ऊपर भी स्प्रे कैले के बाद ओके सड़ा के एकदम कंपोस्ट के रूप में परिवर्तित करके पौधा के देला, जिससे कि हमार रासायनिक खाद खरीदे वाली लागत घटल है।
1: जी जी यानी अभी तक जैसे आपके कहानगी से दो चीज आयल कि एक तो जो बीज हम लोगन के अपन घर के बा ओके इस्तेमाल कैल जाए, और दूसर जोन बा कि खाद के खातिर अपने आसपास के जितना संसाधन बा चाहे कृषि अवशेष बा या फिर पशुअन से निकलल चारा बा ओके खाद बनावल जाए, तो दोनों तो अपने पास में बा, यानी ये पे अगर अमल में लियावल जाए तो थोड़ा सा लागत हम लोगन के कम हो जाए या ज्यादा प्रभावित हुई। अब एक बार जैसे मान लें सिंचाई के व्यवस्था बा,
0: सिंचाई के साथ साथ पहले आपके एक चीज चर्चा करी, सिंचाई तो बटले बा प्रकृति भी पर आधारित खेती जो लोग करा था, सिंचाई बदे हमारे यहाँ आप सरकार के द्वारा एक बार तो खर्च लगी
1: जी,
0: सोलर पैनल को उपयोग करी, सोलर पंप लगाई, और सोलर पंप के सरकार का सुविधा 80% 90% सब्सिडी बा, वोकर अगर एक साल लगाई तो भविष्य में वो लागत सिंचाई के हमारे बची की न बची
1: जी बिल्कुल।
0: और जहाँ नहरी क्षेत्र बा विशेष रूप से सोनभद्र के चतरा और रावर्ट्सगंज विकास खंड में, तो वहां तो सिंचाई के तो खर्चे नहीं बा, वो नहर से पानी मिलला और सरकार के द्वारा सिंचाई कर भी मुक्त बा, तो सोलर का अगर उपयोग हम करब तो सिंचाई का भी खर्च हमार बची, और गांव का स्थानीय बंधी वंधी जोन माई ओकर उपयोग कैल जाये तो सिंचाई खर्च डीजल का खर्च बिजली के बिल ऐसे बचल जा सकला।
1: जी जी अच्छा, जैसे अभी आप चर्चा कर लें कि जो अपने घर के बीज बा परंपरागत ढंग से जो भी पुराने जमाने से जो चलत आ रहा बा ओके अगर इस्तेमाल कर जाए जैविक खेती के तरफ बढ़ल जाए तो का कीट और रोग पर भी जो खर्चा होला ओके बचावल जा सके।
0: जी निश्चित रूप से कीट और रोग पर नियंत्रण कल जा सकला, जौन बेस डिकम्पोजर से तैयार हमारी तरल बा एकरे के 20 लीटर आप अलग ले लें।
1: अच्छा,
0: और 20 लीटर में आम का नीम का पत्ती 2 किलो, बकाई निकावल है ओकर पत्ती ले लें, धतूरा का पत्ती ले लें, और आपके बेहया होला है आपका
1: जी, जी।
0: एकर पत्ती बा, बेल का पत्ती बा, ये सब के मिला के 20 दिन तक ओके ढंग के अगर रख दे, और जब ओकरे बाद ओके मल के छान ले, और छनले के बाद ओकर जो 20 लीटर का 1 लीटर निकली अर्क, वो अर्क के 10 लीटर पानी में मिला के अगर आप स्प्रे करत हो तो निश्चित रूप से कीट न लगी, और कीट जौन बा उनके एक स्वाद होला फसल का, वो जब उनके स्वाद मिलला तब वो फसल के खाना, और अगर वो दवा के ई मना है क्योंकि मार ही देहल जाए उनके जौन बा जब स्प्रे आप करिए एक तो वो स्वाद ओकर न मिली उनके ओके भोजन न करिए तो खेले बिना मर जी,
1: जी, जी।
0: और आज के रासायनिक दवा जौन बा तुरंत मारला लेकिन हमारे स्वास्थ्य के भी खराब कराला।
1: रसायन से बचे के खातिर जैविक रसायन जो आप चर्चा कर लें इस्तेमाल कर जाए, अपने किसान भाई समय समय पर फसल चक्र भी बनावेलन, और फसल चक्र से भी हम लोग कई तरह के फायदा उठावल जा सकला, माटी को उर्वरा शक्ति बढ़िया बन जाई, हर फसल मिल जाई, एकरे बारे में का कहल चाहिए?
0: एकरे बारे में हम ही कहल चाहब कि जैसे हमन का फसल चक्र मात्र ये हवे कि गेहूं धान
1: जी जी,
0: ये गेहूं धान के हम लोग के परिवर्तन करे के हुई, जैसे हम धान के फसल के खेती कैली जहाँ मजबूरी बा कि वहाँ जल भराव वाला क्षेत्र बा धान करे के पड़ी, तो अगली फसल जब हम लेत हई रबी के फसल तो कुछ प्लाट हम गेहूं करी, कुछ चना मसूर करी, तो चना मसूर जब करब तो उनके जड़ में राइजोबियम का गाठ होले जोन हवा से नाइट्रोजन के ले लाए, और जब फिक्स हो जाए मिट्टी में नाइट्रोजन तो वो मजबूत जोन बा हमारे अगले फसल में काम करा ला। वो एक अलावा और भी विषय बा कि कंसोर्टिया वाला है आपके।
1: अच्छा,
0: कंसोर्टिया में 3 तरह के बैक्टीरिया हुआ एनपीके का, हवा से नाइट्रोजन जो ले ला ओके लेके वो नाइट्रोजन दी हाँ, और जमीन में जो आज हम 50 साल से फास्फेटिक खाद देता ही, ये खाद हमारे जमीन में जाके 30% पौधा लेता, 60 से 70% खेत में फिक्स होके ठोस में परिवर्तित हो जाला, तो के घुलनशील में बदल के फास्फेटिक खाद भी पौधा दे ही, और पोटास का बैक्टीरिया जोन बा मट्टी में पोटास यहाँ हम लोग के यहाँ उच्च पोटास हुआ है।
1: अच्छा अच्छा,
0: वो पोटास के घुलनशील में परिवर्तन करके बैक्टीरिया पौधा के दे ही, तो ऐसे भी हमन के लाभ लेहल जा सका।
1: जी जी, यानी अपने फसल चक्र में दलहनी फसल के शामिल कर जाए।
0: हाँ,
1: तो ऐसे जो भी नाइट्रोजन के पूर्ति बा प्रकृति से निशुल्क मिलल बा ओके हम लोग पावल जा सकला। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ल जाए कि अपने किसान भाई

0: समय समय पर अपन खेती करते हुए मन लगा करके खेती करेलन का समय पर बुआई खेत के तैयारी योजना बनावे पर भी कुछ
1: निश्चित रूप से जैसे सरकार के योजना मार्च में बनल है वैसे किसान के जून में ही पूरे साल के योजना का रचना कैल पड़ रहा है कि ये फसल का हम बिजाई करब तो अगली फसल कितने दिन पर हो तब ओकरे बाद हम जो रबी के करब जायद करब ओकरे पर निर्भर कराला। जैसे हम धान का कम समय के बीज लगौली तो हमारे धान जो बा अक्टूबर में तैयार हो गया तो वहां अगर हम दलहनी और तिलहनी फसल के खेती कर दिली तो फरवरी तक दलहन फसल तैयार हो जाये और करे बाद एक छोटी जमीन बा पानी बा हमारे यहाँ तो हम जायद में भी वहाँ सब्जी के खेती मूंग के खेती मूंगफली के खेती कह के हम तीन फसल ले सकीला। तो योजना रचना तो देखी भैया अपन तय करे पड़ी कि हमके कौन सी फसल लगाई तब अगला फसल के का मिली तो इसे अपने जमीन के पार्ट में बांट के ओके के हम करब तब वो लाभप्रद रही। और किसान खेती में बहुत मेहनत करला भैया
0: जी बिल्कुल
1: लेकिन बीजा जब के बिक्री करे को होला तो वहाँ आलस करला। हम ही कहा कि पूरी प्रयास कर के किसान लोग अपन सरकारी खरीद पर बेचे के प्रयास करें और ओकरे में सरकार के भी सहयोग मिली और हम अगर बिचौलिया के बेचत है तो बिचौलिया जौन बा 15 रुपया 16 रुपया खरीदी और उतना ह्रास हमारे 25% जौन बा उत्पादन के बाद भी मूल्य में ह्रास हुई ओकर नुकसान हुए से समर्थन मूल्य का पूरी से पूरी उपयोग करे के कोशिश किसान भाई कर रहे हैं।
0: जी जी जी रबी में आप जो भी दलहनी फसल बा या अन्य जितना भी फसल बा ओके आप जरूर से जरूर अपनी खेती बारी में शामिल करें। किसान भाई देखें आज अपने साथ रहना है चतरा ब्लॉक के बंजरिया से शिव प्रकाश सिंह और हम लोग बातचीत कर रहे थे जा कि अपने खेती के लागत के हम कैसे कम करी और कई बिंदु पर चर्चा भइल चाहे बीज के बात हो खाद के बात हो सिंचाई के बात हो कीट रोग के खातिर जैविक रसायन के बात हो फसल समय से बुआई के बात हो तौर तरीका के बात हो हर पहलू पर अगर विशेष रूप से अगर हम लोग ध्यान दिहल जाए तो निश्चित जोन बाकी आपन लागत कम हुई और जब आपन कृषि लागत कम हुई तो आमदनी आपन बढ़ी। शिव प्रकाश सिंह जी आज आप अपने स्टूडियो में अइले और अपने किसान भाई लोगन के आकाशवाणी के माध्यम से आप इतना बढ़िया जानकारी दे लें एक खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: भोला भैया।
4: हाँ बगलो भैया,
3: देखा कितना बढ़िया हम लोगन के जानकारी मिलल, जो उनके शिव प्रकाश सिंह भैया अपन बात बतावत रहलन और मुन्ना भी एकदम फरिया फरिया के पूछत रहलन कि खेती के लागत के तरीके से हम लोगन के कम करे के बा का ओकर तकनीक बा, इतना फरिया फरिया के हम लोगन के बतौलन, भैया के धन्यवाद दिहल जाए। लेकिन
4: बिल्कुल बिल्कुल भैया, लेकिन झूरे झूरना है और एक कहत जाए और साथ साथ जन बाकी मन मनसायन अभी करावल जाए, लेकिन ऐसे पहले आपके हाथ में जो पाती हो घुरावल मंडी के बाजार भाव इंद्रासन मौर्य भैया भेज ले हूँ, कैसे हो भैया?
3: भैया देखा पसेरी में बा।
4: अच्छा, तो
3: टमाटर देखा 280 से 300 रुपया पसेरी, बैगन 200 से 240, नेनुआ 45 से 50, करेला 130 से 140, भिंडी 80 से 85, खीरा 140 से 160, बोड़ा 170 से 180, बंडा 125 से 130, अरुई 140 से 150,
4: बिल्कुल,
3: और मकई देखा 90 से 100 बा, और लहसुन 550 से 600, और हरा धनिया 310 से 320,
4: अच्छा,
3: हरा मिर्च 160 से 170,
4: पसेरी में
3: हाँ हाँ, लौकी 110 से 115 और

0: कुंदरू देखा 100 से 110वां, परवल 280 से 290, कोहड़ा 90 से 100वां, और खेक्सा 650 से 700,
1: अच्छा अच्छा भैया।
0: कच्चा केला 115 से 125, और चौराई साग 130 से 140, और जो कटहल आवत रहे भैया वो
1: हाँ
0: एक
1: भैया,
0: सौ तीस से 140 बा, और
1: हाँ
0: फूल गोभी देखा 1200 से 1800 रुपया सैकड़ा,
1: सैकड़ा। हाँ
0: और नींबू देखा 600 रुपया सैकड़ा।
1: अच्छा, तो ये रहल घुरावल मंडी के बाजार भाव पसेरी में। तो इतना बढ़िया जानकारी देवत रहलन इंद्रासन मोर भैया, आपके भी धन्यवाद, लेकिन सबके झूरे झूरे धन्यवाद दिया था भैया।
0: तो भैया देखा राम निरंजन भारती उनकर साथी के एक विकास गीत बा, तो ऐसे भैया लोगन के धन्यवाद दिहल जाए।
1: भैया बजवाओ।

0: भोला भैया।
1: हाँ भगेलू भैया।
0: ई देखा राम रंजन भारती उनकर संगतिया भैया गीत गौ सुनावत रहलन।
1: हाँ,
0: और
1: हाँ, हाँ,
0: देखा धीरे धीरे हम लोगन के अपन जोन पंचायती बा
1: बिल्कुल
0: एकर भी देखा समय पूरा हो रहा बा। पंच भैया लोगन से चलत चलावत यही निहोरा करत है कि

0: देखा, हिंदी के व्यवहारगत बनावे के हम लोगन के बहुत जरूरी बा, काहे कि हिंदी हर लोगन के जोड़े के काम करेला, हर कुछ पहचाने के काम करेला।
1: बिल्कुल भैया, कितना लोग जनबा के शुद्ध उच्चारण के चक्कर में चाहे तो जनबा की व्याकरणात्मक ढंग से बोले के चक्कर में और हिंदी के बिगड़ले जरा लोग। अब हमें अपन जो अपने अंचल के बात हो चाहे तो जनबा की हिंदी के मूल जोन आधार हो ओहो के बिगाड़ दे वाला, तो ओके बहुत चक्कर में होवे की जरूरत नहीं है भैया,
0: तो यही से ना
1: व्यवहारगत रखे के हो।
0: यही
1: और
0: से यही से
1: जी
0: कहल गेल बा भैया कि कोस कोस पर पानी बदले तीन कोस पर बानी। तो आपन बानी के देखा भैया, बदला मत, आपन जवन बानी बा वही हिसाब से चले के बा।
1: बिल्कुल
0: तो
1: भैया,
0: अब यही बात के साथ पंच भैया लोगन से विदा लेवल जाए। आज के जवन पंचायती रहल
1: हाँ
0: एकर
1: हाँ
0: समय
1: हाँ
0: पूरा भइल, तो चले के
1: सब पंचन के
0: किनके राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। शाम के 6:50 हो रहे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत था शिवहरी का। चांदनी इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आइए आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म बेताब का ये गीत शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी के और संगीत आरटी बर्मन का।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। शाम के 7:05 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं राम विरंजन भारती और इनके साथी। आइए सुनते हैं इनके स्वर में सबसे पहले कहरवा।

आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीत और हमारे आज के कलाकार हैं राम विरंजन भारती और इनके साथी। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में इनके स्वर में कहरवा।

इसी के साथ कार्यक्रम लोकगीत अब समाप्त होता है और हमारे आज के कलाकार थे राम विरंजन भारती और इनके साथी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। अब से कुछ पलों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: किधर है?
1: बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट, ये तो झटपट काम है।
0: कैसे?
1: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदल

0: और बाकी चेंजेस
1: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
0: आरबीआई कहता है
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए 5,00,000 रुपए सालाना कैशलेस चिकित्सा सुविधा का किया ऐलान। 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट की संगठन के स्वर्ण जयंती समारोह की शिरकत। कहा संवैधानिक संस्था में नागरिकों का विश्वास है लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत। युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका रोज एपल अलूपो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार। स्मारक की खूबसूरती और स्थापत्य कला को सराहा। अश्रद्धा और उल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है हरतालिका तीज का पर्व। गणेश चतुर्थी पर प्रदेश भर में सजाए गए भव्य पंडाल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए 5,00,000 रुपए सालाना कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की है। इसका लाभ हाईकोर्ट और जिला अदालतों में सक्रिय रूप से प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को मिलेगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने 400 राज्य विधि अधिकारियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए टैबलेट देने की भी घोषणा की।
5: आधुनिक तकनीक आज की आवश्यकता है, इस जिससे उन्हें जानकारी मिल सके कि कौन से शासन से जुड़े हुए मामले माननीय न्यायालय के पास आ रहे हैं। इसके लिए 400 ऐसे राज्य विधि अधिकारियों को हम लोग टैबलेट की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। और जो यहाँ पे सक्रिय प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उन सभी अधिवक्ताओं को हम लोग कैशलेस की 5,00,000 रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस की मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम की सुविधा भी उपलब्ध करवाने के लिए यह भी हम आज यहां पे घोषणा कर रहे हैं।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त संगठन के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवैधानिक संस्थाओं में सामान्य नागरिक का विश्वास है। उन्होंने कहा कि अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति भी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास और गौरव की अनुभूति करे, यही लोकतंत्र की कसौटी है।
6: लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है वह किसी भी संवैधानिक संस्था में एक सामान्य नागरिक का विश्वास। गुड गवर्नेंस एक पब्लिक ट्रस्ट पर निर्भर करता है। अगर जनता का विश्वास नहीं है तो हम सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी हमारी विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं पर उसी विश्वास के साथ गौरव की अनुभूति कर सके।
4: आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में ईवीएम वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग एफएलसी की तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज लखनऊ में 33 जनपदों के निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और एफएलसी सुपरवाइजरों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा भी मौजूद रहे। कार्यशाला में अधिकारियों को ईवीएम की जांच से लेकर मॉक पोल और एफएलसी की पूरी प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग आगामी चुनाव की तैयारियों का पहला महत्वपूर्ण चरण है।
7: इस कार्यशाला का उद्देश्य यह है कि अब यहाँ से जाने के बाद कुछ ही दिनों में इन जिलों में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं जिससे चुनाव होता है

0: उनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग FLC शुरू हो रही है। फर्स्ट लेवल चेकिंग पहला कदम है चुनाव की तैयारी का, जहां तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का सवाल है। एक एक मशीन का, चाहे वो कंट्रोल यूनिट हो, बैलेट यूनिट हो या VVPAT हो, विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निकली देखा जाएगा सारे पैरामीटर्स सही है कि नहीं।
1: प्रदेश के नगर विकास व ऊर्जा मंत्री AK शर्मा की अध्यक्षता में आज जौनपुर में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सेवा संकल्प अभियान की रूपरेखा और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इस मौके पर नगर विकास मंत्री ने बताया कि अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के निरंतर सेवाकाल के दौरान किए गए जन कल्याणकारी कार्यों, नीतिगत सुधार का विकसित भारत 2047 के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ना है।
2: जो व्यक्तिगत लाभार्थी वाली योजनाएं हैं, उनका आज इसे दिव्यांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, अनाथ आश्रमों की सेवा है, गौशालाओं की सेवा है, ऐसे तमाम जो हमारे समाज के ऐसे वर्ग हैं जिनकी सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए, उन तक पहुंचने का भी ये अभियान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
1: उधर वाराणसी में आयोजित पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमांग जोशी ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर को वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा का फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होगा। यात्रा के दौरान वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, लाभार्थियों से संवाद, अस्पतालों में फल वितरण, पोषण किट वितरण और क्षय रोग उन्मूलन से जुड़े सेवा कार्य किए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने भारत आई युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका रोज एपल अलूपो ने आज आगरा में ताजमहल का दीदार किया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: युगांडा के उपराष्ट्रपति के आगरा पहुंचने पर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच युगांडा की उपराष्ट्रपति ताजमहल परिसर पहुंची, जहां उन्होंने स्मारक की खूबसूरती को निहारा और डायना बेंच पर फोटो सेशन भी कराया। इस दौरान गाइड ने उपराष्ट्रपति को ताजमहल के इतिहास, स्थापित कला और संगमरमर पर की गई बारीकी पच्चीकारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने ताजमहल की खूबसूरती और स्थापित कला की प्रशंसा की। उपराष्ट्रपति के आगरा दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
1: देशभर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें, क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी।
1: हिंदी दिवस के अवसर पर आकाशवाणी लखनऊ में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुनीश कुमार ने हिंदी के महत्व और वर्तमान में उसके प्रयोग पर जानकारी साझा की। संगोष्ठी में आकाशवाणी लखनऊ की कार्यक्रम प्रमुख सुमोना एस पांडे उपस्थित रहीं। हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुहागिने अपने पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और दांपत्य जीवन की सुख समृद्धि के लिए व्रत रख रही हैं। हमीरपुर में कजरी तीज पर्व पर सुमेरपुर कस्बे में 176 वर्ष प्राचीन तीजा मेले का शुभारंभ मनमोहक झांकियां निकालकर किया गया। गणेश चतुर्थी के पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील की है। वहीं गणेश चतुर्थी पर विभिन्न जनपदों में भव्य पंडाल सजाए गए हैं। इन पंडालों में भगवान गणेश के विभिन्न स्वरूपों की स्थापना की

0: गई है। प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 14 से 18 सितंबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 14 और 15 सितंबर को कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख रुपए सालाना कैशलेस चिकित्सा सुविधा का किया ऐलान। 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट देने की भी की घोषणा। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त संगठन के स्वर्ण जयंती समारोह में की शिरकत। कहा, संवैधानिक संस्था में नागरिकों का विश्वास है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत। युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका रोज एपल अलूपो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार। स्मारक की खूबसूरती और स्थापत्य कला को सराहा। और श्रद्धा और उल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है हरतालिका तीज का पर्व। गणेश चतुर्थी पर प्रदेश भर में सजाए गए भव्य पंडाल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
6: आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है FM 102.7 पर। शाम के 7:31 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कयामत से कयामत तक, आइए इस फिल्म में सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण को। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और संगीत है आनंद मिलिंद का।

सत्यनिष्ठा अपनाएं, भ्रष्टाचार मिटाएं, मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। सत्यनिष्ठा से समृद्ध NTPC रिहंद द्वारा आयोजित त्रैमासिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनहित में प्रसारित

हम तुम्हारे हैं सनम इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल को। प्रवीण भारद्वाज के बोल थे और संगीत था डब्बू मलिक का। आकाशवाणी उपरस इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। दिल है तुम्हारा, आइए इस फिल्म में सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू को। शब्द रचना समीर के हैं और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। दिल है तुम्हारा इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू को। आकाशवाणी ओबरस इस वक्त कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सबरस।
1: युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति जन कल्याण सेवा समिति की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम आपके लिए ला रहे हैं नमो मैराथन। यह नमो मैराथन विकास का मैराथन है जो न रुकेगा न थकेगा। अगर आपकी उम्र 15 सितंबर तक 18 से 26 वर्ष के बीच है तो इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ दौड़िए। बालकों के लिए दौड़ सुबह 9 बजे से होटल अविनाश से सर्किट हाउस तक और बालिकाओं के लिए सुबह 9:30 बजे से चुरक बाजार पुराने बस स्टैंड से सर्किट हाउस तक आयोजित की जाएगी। जीतने वालों के लिए प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 5,100 रुपए और 21 विजेताओं के लिए 11,100 रुपए का सांत्वना पुरस्कार। तो फिर 15 सितंबर को बनिए नमो मैराथन की दौड़ का हिस्सा और रजिस्टर करिए विकास की इस यात्रा के लिए। कार्यक्रम संयोजक जन कल्याण सेवा समिति सचिव डॉक्टर धर्मवीर तिवारी। संपर्क नंबर है 7007299898। दूसरा नंबर है 8737981010। तीसरा नंबर है 7007445358।
0: कार्यक्रम में आइए आपको अगला गीत सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आनंद मिलित के बोल है और संगीत है जतिन ललित का।

0: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
1: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपियर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए

0: महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
1: आवेदन शुल्क 118 रुपए निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
0: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
1: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
0: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखे
1: कार्यक्रम में अब आइए आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है दिलवाले। शब्द रचना समीर के हैं और संगीत है नदीम श्रवण का।

समीर किलखे इस गीत को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। दिलवाले इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू को। और इसी के साथ कार्यक्रम सबरस अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर और रात्रि के 8 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं अनुराधा पौडवाल को।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: तो इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अमित त्रिवेदी को। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और संगीत था अमित त्रिवेदी का।
1: युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति जन कल्याण सेवा समिति की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम आपके लिए ला रहे हैं नमो मैराथन। यह नमो मैराथन विकास का मैराथन है जो न रुकेगा न थकेगा। अगर आपकी उम्र 15 सितंबर तक 18 से 26 वर्ष के बीच है तो इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ दौड़िए। बालकों के लिए दौड़ सुबह 9 बजे से होटल अविनाश से सर्किट हाउस तक और बालिकाओं के लिए सुबह 9:30 बजे से चुरक बाजार पुराने बस स्टैंड से सर्किट हाउस तक आयोजित की जाएगी। जीतने वालों के लिए प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 5,100 रुपए और 21 विजेताओं के लिए 11,100 रुपए का सांत्वना पुरस्कार। तो फिर 15 सितंबर को बनिए नमो मैराथन की दौड़ का हिस्सा और रजिस्टर करिए विकास की इस यात्रा के लिए। कार्यक्रम संयोजक जन कल्याण सेवा समिति सचिव डॉक्टर धर्मवीर तिवारी। संपर्क नंबर है 7007299898। दूसरा नंबर है 8737981010। तीसरा नंबर है 7007445358।

संदीप श्रीवास्तव के लिखे इस गीत को संगीत दिया था मिथुन ने। और आप सुन रहे थे शिवाय फिल्म में मोहित चौहान, सुखविंदर सिंह, मेघा श्रीराम और बादशाह को।

कार्यक्रम के आखिरी में आइए आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है ABCD पार्ट 2। शब्द रचना मयूर पुरी के हैं और संगीत है सचिन जिगर का।

संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं फाल्गुनी पाठक को।

कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक को। आकाशवाणी ओबरस इस वक्त आप सुन रहे कार्यक्रम सुगम संगीत। अब आइए सुनते हैं सोनू निगम को। शब्द रचना नुसरत बत्र के हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक को, और इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के

0: साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की, कहा भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमरीकी विश्लेषक ने कहा दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व की कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 2 दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा हैं। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एकमत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया के नेता शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया। रूस ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के साथ समावेशी विकास उन्मुखी साझेदारी के लिए मॉस्को के समर्पण की फिर से पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सहअध्यक्षता करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
3: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
6: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
7: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि अलवर में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन ने भारत और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते

0: कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
1: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिस्टी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखो स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
2: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग साराजा, गणेश गली, तेजुकाया और जीएसबी जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस, रेलवे और बेस्ट ने खास इंतजाम किए हैं। कई जिलों में एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया। इस साल शोर शराबे वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hails successful conclusion of BRICS summit in New Delhi, says India showed strong convening power. Global leaders praise BRICS summit for strengthening cooperation among developing nations and advancing priorities of Global South.

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: कुछ हमको
4: क्या,
3: कुछ तुमको।
4: हाँ?

अलग अलग इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनाते हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है जमीर।

रात्रि के 9:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए आपको सुनवाते हैं मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। फिल्म का नाम है अमृत, शब्द रचना आनंद बख्शी के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अमृत इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल को। शब्द रचना आनंद बख्शी के थे और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सौदागर इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मुकेशकर को, गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनाते हैं फिल्म प्यासा सावन से। लता मुकेशकर की आवाज है, बोल है संतोष आनंद के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कामचोर इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। इंदिवर के बोल थे और संगीत था राजेश रोशन का। कार्यक्रम में आइए अगला गीत आपको सुनाते हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है आराधना। श्रोताओं, आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है एसटी बर्मन ने।

आराधना इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को, आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत था एसटी बर्मन का। और इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर और रात्रि के 10 बज रहे हैं। श्रोताओं, संगीत की दुनिया में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें न मुलाकात की जरूरत होती है और न पहचान की, बस एक पसंदीदा गीत और बीच की दूरी बस मिट जाती है। और इसी भावना के साथ हम हाजिर हैं आपके ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में, और मैं हूं कार्यक्रम में आपके साथ रानी राजश्री। अगले एक घंटे तक आपकी ईमेल से मिली फरमाइशी गीतों के साथ हम साथ होंगे, और आप भी अगर अपने पसंद के गीत इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं और अपने विचारों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं अपने पसंदीदा गीतों को

तो अपना पूरा नाम, पता और अपने पसंद के गीत के बारे में बताते हुए हमें मेल करें इस आईडी पर akashvaniobra@gmail.com यानी कि akashvaniobra@gmail.com। तो आइए अब शुरू करते हैं गीतों के इस खूबसूरत कारवां को, सुनते हैं फरमाइशी गीतों का ये कार्यक्रम।

श्रोताओं, कार्यक्रम में पहले गीत की जो फरमाइश आई है हमें ईमेल के माध्यम से, वो बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से है और भेजने वाले जो हमारे श्रोता हैं वो हैं रामचंद्र माखीजा। इनके साथ सुनना चाहा है श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही, पूजा, छुटकी, शरद कुमार डुडवानी, प्रदीप कुमार साहू और माखीजा परिवार के सभी सदस्य। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद भी कि आप इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश के गीत सुनने के लिए आज शामिल हो रहे हैं। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, सुरों का यह खूबसूरत सफर जारी है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी केवल आकाशवाणी ओबरा एफएम 102.7 पर। आपकी ईमेल से सजी यह संगीत महफिल आपका ही इंतजार कर रही है, तो अपनी फरमाइश भेजना न भूलिए इस आईडी पर akashvaniobra@gmail.com यानी कि akashvaniobra@gmail.com पर। आप हमारे साथ अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, अपने पसंदीदा गीतों को सुन सकते हैं और साथ ही साथ अपने विचारों, अपने गीतों को किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। तो हमें इस ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सोमवार और शुक्रवार को रात्रि 10 बजे से। श्रोताओं, एफएम 102.7 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण और कार्यक्रम है म्यूजिक गैलरी, जहां आप अपने ईमेल के माध्यम से हमें अपने पसंद के गीतों को बता सकते हैं, अपने परिवार या अपने मित्रों के नाम ले सकते हैं, अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अपने फरमाइश के गीत आप जरूर लिखें, लिखना बिल्कुल न भूलें। और ईमेल आईडी है akashvaniobra@gmail.com यानी कि akashvaniobra@gmail.com। तो श्रोताओं, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने मेल के साथ फरमाइशी गीतों का जिक्र जरूर करें। तो चलिए, अगला ईमेल हम शामिल करने जा रहे हैं, वो आया है कैथल हरियाणा से और हमें मेल किया है जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा जी ने। तो चलिए, आपको हम सुनवाते हैं ये गीत और इन्हीं के साथ इस गीत को सुनना चाहा है अलीका डबवाली से बसंत सिंह चन्न, राजकुमार और कुलदीप गांधी जी ने हमें लिख भेजा है। तो चलिए, आप सभी को सुनवाते हैं ये गीत।

और कार्यक्रम में अगला जो मेल अब हम शामिल करने जा रहे हैं वो आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, और हमें फरमाइश की है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, कैथल डॉक्टर अमनदीप, और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और पिट्टा बजाज। तो चलिए आप सभी को हम सुनवाते हैं ये गीत।

अब हम अगला ईमेल शामिल करने जा रहे हैं जो हमें भेजा है फागुराम यादव जी ने। कार्यक्रम में सर आपका बहुत बहुत सप्रेम नमस्कार। आपने सुनना चाहा है फिल्म डॉन का ये गीत। और ये ईमेल आया है संबलपुर कांकेर से। फागुराम यादव जी ने भेजा है हमें और इनके साथ सुनना चाहा है ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत आपकी रेडियो सेट पर।

और कार्यक्रम में अगला ईमेल अब हम शामिल करने जा रहे हैं, जो आया है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से और फरमाइश की है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। और आपने लिखा है माय रेडियो माय लाइफ। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सुनना चाहा है, फिल्म का नाम है मरते दम तक। इस फिल्म के इस गीत को जो गणपति जी को डेडिकेटेड है, तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

और कार्यक्रम में अगले गीत की जो फरमाइश आई है वो आई है मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज रोहित राज और पीयूष कुमार ने भेजा है और इसी गीत को सुनना चाहा है आसाम से हितेंद्र दास जी ने। आप सभी श्रोताओं को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आकाशवाणी ओबरा की पूरी टीम की ओर से। तो चलिए आपको सुनवाते हैं फिल्म अग्निपथ का ये गीत। और इस गीत को गाया है सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति ने।

और कार्यक्रम में अब जो फरमाइश हम शामिल करने जा रहे हैं वह है फिल्म अग्निपथ के इस गीत की, जिसे गाया है अजय गोगवले और अजय अतुल ने। और इसके लिए फरमाइश आई है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और संजय अंशु वर्मा। और साथ ही सुनना चाहा है गांव बिटोड़ा भोयर तहसील मंगरूल पीर जिला वासिम पश्चिमी विदर्भ से योगीराज मशके, श्रीहरि मशके, इंदुमती गोपाल, कविता मोहन, कुशल विशाल, मल्हार श्याम, गोविंद मशके और सभी साथीगण। और साथ ही इसे सुनना चाहा है एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ के अभय सिल्लोड जिला छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोटके, वैष्णवी घोटके, गायत्री घोटके और यज्ञेश घोटके जी ने। और साथ ही साथ इस गीत के लिए एक और फरमाइश आई है जो हमें भेजा है नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह जिला बेगूसराय बिहार से और संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह जिला मोतिहारी बिहार से। और एक और ईमेल हम इस गीत के लिए शामिल करने जा रहे हैं जो आया है लदावली जिला मुरादाबाद से और हमें भेजा है अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना जी ने। तो चलिए आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं ये गीत।

ईमेल हम शामिल करने जा रहे हैं, वो हमें आया है ओबरा सोनभद्र से और भेजने वाले श्रोता हैं लकी यादव। इन्होंने बहुत खूबसूरत विचार हमारे सामने रखे हैं कि जब तक उम्र है पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे, क्योंकि समय जाने के बाद बस पछतावा होता है और समेटा हुआ ज्ञान जीवन भर काम आता है। बिल्कुल लकी जी, ये बात आपकी हमारे श्रोता सुनेंगे और खासकर वो तमाम विद्यार्थी जो अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं पूरे जोर शोर से। तो चलिए कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म शिकारी से, जिसे गाया है कुमार सानू ने।

कार्यक्रम में अब जो हम ईमेल शामिल करने जा रहे हैं वो हमें भेजा है विवेक कुमार साहनी सेक्टर 10 ओबरा से। सर नमस्कार, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आपने रेडियो के संदर्भ में अपने विचार हमारे साथ साझा किए हैं कि रेडियो सुनना आपको बेहद पसंद है। आकाशवाणी ओबरा के कार्यक्रम और इसके प्रसारण बहुत ही अच्छे से प्रसारित होते हैं। सर आप आकाशवाणी ओबरा के कार्यक्रमों के साथ यूं ही जुड़ाव बनाए रखिए और यूं ही इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देते रहिए। और आपने सुनना चाहा है पिघलता आसमान फिल्म का ये गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और अलका याग्निक ने। तो चलिए आपकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपके मन पसंद गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपकी भावनाओं को नई अभिव्यक्ति दी होगी। यदि आप भी अपने प्रियजनों के लिए कोई पसंदीदा गीत डेडिकेट करना चाहते हो या फिर अपनी यादों से जुड़ा कोई गीत हमारे साथ साझा करना चाहते हो तो हमें मेल करें। हमारा ईमेल आईडी है akashvanioba@gmail.com। आपका हर ईमेल हमारे लिए अनमोल है और आपकी फरमाइश हमारे इस संगीत सफर को और भी आत्मीय बनाती है। अपनी फरमाइश हमें इस ईमेल पते पर भेजिए। हो सकता है अगली बार आपके नाम और आपकी पसंद का गीत इस मंच के माध्यम से आप सुन सकते हैं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपनी रेडियो साथी रानी राश्री को। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ईमेल के माध्यम से आपकी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देश, 10 साझेदार देश, 4 क्षेत्रीय संगठन और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
2: भाषा किसी भी समाज

0: की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रूपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। पिछले सप्ताह हमले में क्षतिग्रस्त हुई सऊदी अरब की एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन मरम्मत के लिए 3 से 5 सप्ताह तक बंद रह सकती है। 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन ले जाने वाली ये पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सऊदी अरब ने गुरुवार के हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमलों को जिम्मेदार ठहराया है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का सबूत है। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के तहत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। टोक्यो में उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।